कुछ अलग तरह के गीत, कुछ हटके और कुछ इनके गीतों के खटके। आपकी आवाज आपकी पहचान, जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से।

तू है कभी जवान कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे दिल दीवाने। तू है कभी जवान कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे

जी हाँ, ये सलाह दे रहे थे हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा पंजाब से। आपकी आवाज, आपकी पहचान और इस सलाह के बाद हवा क्या कहती है, हवा का रुख क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। आपकी आवाज में, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

हवाओं की बातें हवाओं से बातें। जी हाँ, हवाओं की बातें हवाओं से बातें बातें कर रहे हैं आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और तेरी आंखों में क्या है वो भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। आवाज जगदीश अरोड़ा की।

इसमें मेरा कसूर क्या है सनम। आपने सुना हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा जी को। आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम।

आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं जगदीश अरोड़ा पंजाब गोविंदगंज मंडी से, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा के कुछ हटके नए गीत।

0: डीलर वॉइस वर्ल्ड के जब रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार रहे जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ से। आपको जगदीश जी के गीत कैसे लगे हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल हैं, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठे खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठे खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मुंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भाई अब जा

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी बड़े एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है तिरुनेलवेली से ललित।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत

ने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय।

0: माँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेर वाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इस भक्ति धारा की सुरीली सिंगर हैं अलका उपाध्याय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

कोटि कोटि दिगंबरा। आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मन में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में

ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले, सुबह ले चाहे शाम ले। ओम नमः शिवाय ले, इसके सिवाय

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे से शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय।

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

कहत अलका उपाध्याय। दुख हरो, दारिद्र हरो, कष्ट हरो, रोग हरो, पीड़ा हरो, दर्द हरो, हे हरो, सबका भला करो, हे भोले, हे शिव शंकर, आपके सिवा

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

0: बम बम भोले की शरणम, शिव शंकर की शरणम और शिव सदा सहाय रहे। आपने सुना प्रोग्राम शिव भक्ति धारा और इसे अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही थी जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। बहुत आभार धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ।
1: मानसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मानसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जु रानू 16। पहले गीत में अर्जु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें।
1: महान दे रहे थे गीत, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, आप कहीं नहीं होंगे, आपकी जवां आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं इस मंच के अगले सिंगर। आइए सुने अर्चू रानू के संग इस अगले गीत को। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा एपिसोड में, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अरे अरे

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। भक्ति धारा स्पेशल में आज कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल भजन लेके आई हैं नागपुर महाराष्ट्र की साक्षी मेंढकर। आपकी आवाज़ आपकी पहचान का ये मंच, और वेलकम है साक्षी का भजनों के साथ।

सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे, और तीसरा सपनों में आना सच में ये बहाना हो गया। और इस अफसाने को सुना रही थी हमारी आज की सुरीली सिंगर नागपुर महाराष्ट्र से साक्षी मेडकर। आइए सुनते हैं साक्षी का अगला भजन।

श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। और हम तो ये कहेंगे कि मेरी उम्र बीत गई और आप आन बसो मेरे तन मन में। आप सुन रही हैं विशेष स्पेशल प्रोग्राम भक्ति भावधारा, कृष्ण भक्ति स्पेशल प्रोग्राम जन्माष्टमी के अवसर पर, और गा रही हैं इस मंच की सुरीली सिंगर साक्षी मेंढकर नागपुर से। आइए सुनते हैं। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर जाती है। और साक्षी कह रही है तो ये स्वयं साक्षी है, हम क्या कहें, क्योंकि साक्षी का और साक्ष्य का प्रमाण कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही चीज है।

जिसके दर पे आके किस्मत संवर जाती है, उसी का नाम तो कृष्णा है, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को हम माधव माखन चोर कहते हैं, और ये भी कहते हैं जो साक्षी कह रही है।

राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा, और हम कहेंगे कि साक्षी इस मंच से ढूंढ रही है शाम को, और हम उस शाम का, उस रात का, उस अंधेरी रात का इंतज़ार कर रहे हैं शाम को देखने के लिए, जो आएंगे और खुशियां हर हाल लेके आएंगे। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। राधे, कौन से पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे घर आते हैं, तुझसे बतियाते हैं, और आज हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं एक पल, एक क्षण।

राधे को उनसे पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे ही घर आते हैं। और साक्षी मंडेकर हर जन्माष्टमी को इस मंच से रोज भजन सुनाते हैं, तो हम साक्षी को कहेंगे यूं ही गाते रहिए, सुरीले भजनों की सौगात यूं ही लाते रहिए। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम रामचंद्र भजे, साक्षी मेंढकर की आवाज नागपुर से जन्माष्टमी स्पेशल में हमारे संग हमारे साथ जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

राम नारायणम जानकी वल्लभम। आपने सुना साक्षी मेंढकर को, और आइए सुनते हैं एक बार फिर अच्युतम केशवम।

आवाज साक्षी मेंढेकर की नागपुर महाराष्ट्र से, जयपुर रेडियो की सिंगर भक्ति भावधारा की स्पेशल पेशकश में साक्षी मेंढेकर।

आरती से वंदन कर रही हैं और अपनी आवाज से खुशबू का चंदन लगा रही हैं कुंज बिहारी को, मधुसूदन मुरारी को, गोवर्धन गिरधारी को, बांके बिहारी को। आइए आरती का आनंद लेते हैं, सब मिलके गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कुंज बिहारी की आरती।

भारती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की, और इस आरती को साक्ष्य बना रही थी अपने स्वर में साक्षी मेंढेकर, नागपुर महाराष्ट्र से, जयपुर रेडियो की सुरीली भक्ति रस की सिंगर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद साक्षी, हम सबको भक्ति रस में भिगोने के लिए। यूं ही आते रहिए, गाते रहिए और भक्ति गान के स्वर को गुंजायमान करती रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, खंबा खनी केम छो। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंदड़ा आपके साथ, पुनः उपस्थित हूँ एक और सुरीली संगीतमय प्रस्तुति के साथ। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है आओ झूमे गाए समूह की ओर से। दोस्तों, प्रसंग है गोकुलाष्टमी जन्माष्टमी का। जी हाँ, कान्हा के जन्म का उत्सव। तिथि अष्टमी भाद्रपद, जन्मे कृष्ण मुरार, प्रगटे आधी रात को सोए पहरेदार। बेड़ी टूटी हाथ की, खुले बंधन और पांव, प्रभु की लीला देखिए जन्मे गोकुल गांव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कान्हा, जिसके अनेकों नाम है, कोई कन्हैया कहता है तो कोई श्याम, किसी के गोपाल है तो किसी के केशव। नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन जैसे ही कान्हा शब्द हमारे कर्ण पटल पर पड़ता है तो एक नटखट सी छवि नेत्र के आगे तैर सी जाती है। आइए साथ में मनाते हैं, रिझाते हैं, लुभाते हैं और बड़े ही इच्छाओं से उनका जन्मदिन मनाते हैं। पहला गीत प्रस्तुत करने आमंत्रित कर रही हूँ अनिल झुमका वाला जी को, गोविंदा आला रे।

कितना सुंदर आगमन गोविंदा का, साथ ही साथ गोपियों के साथ हंसी ठिठोली और अठखेलिया भी। नन्हे नन्हे पाँव से कर अठखेलिया, नन्हे नन्हे पाँव से कर अठखेलिया, मुख पे माखन लगा शाम इतराए, गली गली घूमत काना मटकी फोड़त, गली गली घूमत काना मटकी फोड़त, गोपियों के संग खूब रास लीला रचाए। हमारा अगला गीत प्रस्तुत कर रही हैं सखी प्रणति कृष

बहुत मधुर प्रस्तुति। कान्हा, गोपियों का प्रिय कहूँ तुम्हें या राधा का प्रियतम कहूँ तुम्हें? यशोदा मैया गोपिका के उल्हाने का उत्तर देती उससे पहले ही कान्हा अपने एक नटखट से प्रश्न के साथ उपस्थित हो गए यशोदा मैया के आगे। क्या था ये प्रश्न? कान्हा बड़े ही प्यार से पूछ रहे हैं मैया से, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं MD त्यागी और श्रुति।

कितना सुंदर है ना ये प्रश्नोत्तर का सिलसिला, और वही यशोदा मैया का नटखट कान्हा को समझाने का भाव भी। एक तरफ जब कान्हा का मिलन होता है तो अजीब सी सुख की अनुभूति होती है, वही विरह के क्षणों में एक रिक्तता सी रह जाती है। कान्हा तेरी याद में नैनन नींद न आए, कान्हा तेरी याद में नैनन नींद न आए, काजल अश्वन बहत है हिया हिलोरे खाए। घनश्याम के दर्शन के अभिलाषी हमारे दो सखा और सखी स्वप्ना मंडल और संजीव नागर जी प्रस्तुत कर रहे हैं राग केदार पर आधारित गीत दर्शन दो घनश्याम।

दोस्तों, श्री कृष्ण का सौंदर्य इंद्रधनुष के समान ही आकर्षित करने वाला है, जिसमें प्रकाश के सभी रंग समाहित हैं। हृदय पर गुंजाओं की माला धारण किए हुए, मस्तक पर मोर के पंखों से सुशोभित मुकुट पहने हुए कान्हा कुंज में बिहार करने वाले श्री कृष्ण के सौंदर्य की व्याख्या इतनी सरल

बहुत मधुर प्रस्तुति। दोस्तों, कहते हैं कलयुग के समय में ईश्वर के नाम के उच्चारण मात्र से ही भव सागर पार हो जाता है। बस ईश्वर देखता है हमारे भावों को। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही बस सार है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही बस सार है। भाव से अर्पण करो तो पुष्प भी स्वीकार है। इसी भाव की महिमा का गुणगान करने आ रही हैं देवयानी और जिनी पटेल।

कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कितना सच है ना। कृष्ण और राधा कहने को तो ये मात्र दो शब्द हैं, लेकिन इन दो शब्दों में समाहित है भक्ति, प्रेम और जीवन का यथार्थ। हमारी अगली सुमधुर प्रस्तुति है सुचित्रा और अभिनव सेना के द्वारा राधे कृष्णा की ज्योत।

राधा और कृष्ण। कृष्ण जहाँ विष्णु जी के आठवें अवतार माने जाते हैं, वहीं राधा जी एक गोपी जो कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी हैं। ये माना जाता है कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती हैं। राधे कृष्णा के प्रीत के चर्चे भला किसने ना सुने होंगे, परंतु यदि कान्हा राधा जी को छोड़ गोपियों की ओर आकर्षित हो जाए तो राधा जी का रूठना और ईर्ष्या करना स्वाभाविक ही है ना। राधा जी के हृदय के इन्हीं भावों को प्रस्तुत करने आ रहे हैं मानस साबू और श्वेता अय्यर।

स्वाभाविक ही है और इस भाव से ईश्वर भी अछूते नहीं है। कृष्ण और गोपियों का प्रसंग चल रहा था। कृष्ण की मनमोहक अदाओं पर गोपियां यानी ब्रजवालाएं लट्टू थीं। कान्हा की मुरली का जादू ऐसा था कि गोपियां अपनी सुध बुध गवा बैठती और मधोशो चल पड़ती कान्हा की ओर खींची हुई। ऐसे कान्हा भी कुछ कम न थे। वो अपनी नटखट अदाओं से गोपियों को यदा कदा परेशान किया करते थे। हमारा अगला गीत सुप्रसिद्ध फिल्म मुगले आजम से। यह गीत आधारित है तीन ताल और दादरा पर। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, और यहाँ इसे प्रस्तुत कर रही हैं सूर्य रेखा और आभा माथुर।

कान्हा के गोकुल से पलायन के बाद भी ब्रजबालाओं ने कान्हा की आस नहीं छोड़ी। ये थी उनके प्रेम की पराकाष्ठा। प्रस्तुत है बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, और प्रस्तुत करता है सज्जाद खान जी।

वाह, बहुत खूब। दोस्तों, राधा कृष्ण के गीत और भजनों की चर्चा हो और मधुबन में राधिका नाचे का जिक्र ना हो, भला ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। चलिए आपको यही गीत सुनाते हैं जिसे फिल्म कोहिनूर से लिया गया है और ये राग हमीर पर आधारित त्रिताल में गाया हुआ गीत है, जिसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र मिश्रा जी अपनी सुमधुर आवाज में।

रे सगर मग पम ध पनि ध सनि रे सारे सनि ध पम प धनि सारे सनि ध पम प गम ध प गम रे समधु बन में साधिका नाचे रे सा सा सनि ध पम प ध प गम रे सनि रे सा।

कितनी मधुर और सुरीली प्रस्तुति। दोस्तों, हम सभी की ओर से कान्हा से प्रार्थना, सुन सुन कान्हा आपके मेरे घर भी आना, अंगना सोना राहत तकू मैं, इनमें खाब कोई भर के जाना। कितना ढूंढूं, कित ढूंढूं, किधर छुपे हो इस बार बताना, ममता माखन लिए खड़ी है आकर इसको अधर लगाना। मेरे कान है तरसे लल्ला, तू मुझको भी तार के जाना। आओ झूमे गाय समूह के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को गोकुलाष्टमी और जन्माष्टमी की अग्रिम बधाइयां। अब इजाजत दीजिए अपनी सखी तनुजा मुंदड़ा को, पुनः उपस्थित होंगी एक और

काल खंबा खानी केम छो जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंदड़ा आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ एक और सुरीली संगीतमय प्रस्तुति के साथ। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, आओ झूमे गाए समूह की ओर से। दोस्तों प्रसंग है गोकुलाष्टमी जन्माष्टमी का। जी हाँ, कान्हा के जन्म का उत्सव। तिथि अष्टमी भाद्रपद, जन्मे कृष्ण मुरार, प्रगटे

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। सुनने वालों को कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्र माह के अष्टमी कृष्ण पक्ष की रात विष्णु ने अवतार लिया, मिले कृष्ण सौगात। कारागृह की काली माँ प्रभु ने की उजियार, माँ देवकी के जन्म ले, माँ देवकी से जन्म ले, धन्य किया संसार। टूटी बेड़ी खुल गए कारागार कपाट, वासुदेव शीश ले चले कान्हा यमुना घाट। यमुना लहरें उछल रही प्रभु के चरण पखार, शेषनाग के छत्रधर किया कृष्ण सत्कार। घनिष्ठा पे गोवर्धन धारण किया विशाल, इंद्र गर्व खंडित हुआ रक्षित वज्र गोपाल। जननी माता देव की वासुदेव हुए तात, नंदलाल बनकर पले हुई यशोदा मात। वृंदावन ब्रज का हृदय बना कृष्ण का धाम, लीला विविध यहाँ रचे लीलाधर घनश्याम। केशव का नाम मोहन गिरधर, माखन चोर मधुर मधुर वंशी सुना चित हरे चित चोर, द्वापर युग महिमा गढ़ी कृष्ण अष्ट अवतार। कंस वध कर दिया पापी से निस्तार। केशव काना मोहन गिरधर माखन चोर, मधुर मधुर वंशी सुना चित हरे चित चोर, द्वापर युग महिमा गढ़ी कृष्ण अष्ट अवतार। कंस वध कर दे दिया पापी से निस्तार। लाज द्रौपदी की ढकी निभा धात्री का भाव, राधा मीरा में मिला प्रेमी भक्त प्रभाव। पार्थ सारथी बने प्रभु युद्ध विभीषिका, देख बिना शस्त्र ही लिख दिया सत्यजीत अभिलेख। अर्जुन संशय दूर हो गया दिव्य उपदेश, जनमानस में बस गया बन गीता संदेश। वैसा फल सबको मिले जैसे होंगे कर्म, वैसा फल सबको मिले जैसे होंगे कर्म, जीवन का आधार है गीता का यह मर्म। और ये मर्म हमें लिख के भेजा था अंतर्राष्ट्रीय विश्वमित्र मंच की आदरणीय महिमा श्रीवास्तव वर्मा ने। हम उनका तहे दिल से आभार वंदन करते हैं। और अब आ गए हैं कृष्ण जब, और अब आ गए हैं कृष्ण जब, तब होना चाहिए बधाई का संदेश। प्रकृति कलरव कर रही और सुना रहे कृष्ण उपदेश। घर घर बधाई है, घर घर बधाई है, मन मानस में हर्ष समाया है। क्या कहें हम आपसे, ये कृष्ण की लीला न्यारी है, ये कृष्ण की लीला न्यारी है।

और ये बधाई हमारे पास आई है जिग्ना आशार की। आइए सुनते हैं। गुजराती में बधाई कृष्ण कन्हाई की, उनके आगमन की, उनके जन्मोत्सव की।

आज बधाई का दिन है, आज वो सुंदर दिन है जब कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए आज बधाई का सुंदर दिन है। नंद जी की गृहिणी जशोदा जी ने लाला को जन्म दिया है। पांच तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं और घर घर से उपहार आ रहे हैं। ब्रज सुंदरियां मंगल कलश लेकर आ रही हैं और ग्वाल बाल छींका बना रहे हैं। छींका समझते हैं ना आप, एक दूसरे के कंधे पे ऊपर चढ़कर छींके तक पहुंचना। गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं कि लाला करोड़ों वर्ष का हो, लाला यानी हमारा कृष्ण करोड़ों वर्ष का हो। और परमानंद दास जी, परमानंद जो परम के आनंद हैं, वो दास जी गा रहे हैं बधावा गोप वेश में, कह रहे हैं जगदीश्वर प्रकट हुए हैं और परमानंद जी को उनकी छवि देखकर आनंद आ रहा है, वो आनंद विभोर हो रहे हैं। जिकना आशार गुजरात से ये बधाई अपनी गायकी के साथ हमें प्रेषित की है। जिकना को हम आभार कहेंगे, बार बार कहेंगे।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। सुनने वालों को कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्र माह के अष्टमी कृष्ण पक्ष की रात विष्णु ने अवतार लिया, मिले कृष्ण सौगात। कारागृह की काली मां प्रभु ने की उजियार, मां देवकी के जन्म ले, मां देवकी से जन्म ले, धन्य किया संसार। टूटी बेड़ी खुल गए कारागार कपाट, वासुदेव शीश ले चले काना यमुना घाट। यमुना लहरें उछल रही प्रभु के चरण पखार, शेषनाग के छत्रधर किया कृष्ण सत्कार। घनिष्ठा पे गोवर्धन धारण किया विशाल, इंद्र गर्व खंडित हुआ रक्षित वज्र गोपाल। जननी माता देव की वासुदेव हुए तात, नंदलाल बनकर पले हुई यशोदा मात। वृंदावन ब्रज का हृदय बना कृष्ण का धाम, लीला विविध यहां रचे लीलाधर घनश्याम। केशव का नाम मोहन गिरधर, माखन चोर मधुर बंसी सुना चित हरे चित चोर, द्वापर युग महिमा गढ़ी कृष्ण अष्ट अवतार। कंस वध कर दिया दे दिया पापी से निस्तार। केशव काना मोहन गिरधर माखन चोर, मधुर वंशी सुना चित हरे चित चोर, द्वापर युग महिमा गढ़ी कृष्ण अष्ट अवतार। कंस वध कर दे दिया पापी से निस्तार। लाज द्रौपदी की ढकी निभा धात्री का भाव, राधा मीरा में मिला प्रेमी भक्त प्रभाव। पार्थ सारथी बने प्रभु युद्ध विभीषिका, देख बिना शस्त्र ही लिख दिया सत्यजीत अभिलेख। अर्जुन संशय दूर हो गया दिव्य उपदेश, जनमानस में बस गया बन गीता संदेश। वैसा फल सबको मिले जैसे होंगे कर्म, वैसा फल सबको मिले जैसे होंगे कर्म, जीवन का आधार है गीता का यह मर्म। और यह मर्म हमें लिख के भेजा था अंतर्राष्ट्रीय विश्वमित्र मंच की आदरणीय महिमा श्रीवास्तव वर्मा ने। हम उनका तहे दिल से आभार वंदन करते हैं। और अब आ गए हैं कृष्ण जब, तब होना चाहिए बधाई का संदेश। प्रकृति कलरव कर रही और सुना रहे कृष्ण उपदेश। घर घर बधाई है, घर घर बधाई है, मन मानस में हर्ष समाया है। क्या कहें हम आपसे, ये कृष्ण की लीला न्यारी है, ये कृष्ण की लीला न्यारी है।

और ये बधाई हमारे पास आई है जिग्ना आशार की। आइए सुनते हैं। गुजराती में बधाई कृष्ण कन्हाई की, उनके आगमन की, उनके जन्मोत्सव की।

आज बधाई का दिन है। आज वो सुंदर दिन है जब कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए आज बधाई का सुंदर दिन है। नंद जी की गृहिणी जशोदा जी ने लाला को जन्म दिया है। पांच तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं और घर घर से उपहार आ रहे हैं। ब्रज सुंदरियां मंगल कलश लेकर आ रही हैं और ग्वाल बाल छींका बना रहे हैं। छींका समझते हैं ना आप, एक दूसरे के कंधे पे ऊपर चढ़कर छींके तक पहुंचना। गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं कि लाला करोड़ों वर्ष का हो। लाला यानी हमारा कृष्ण करोड़ों वर्ष का हो। और परमानंद दास जी, परमानंद जो परम के आनंद हैं, वो दास जी गा रहे हैं बधावा गोप वेश में, कह रहे हैं जगदीश्वर प्रकट हुए हैं और परमानंद जी को उनकी छवि देखकर आनंद आ रहा है, वो आनंद विभोर हो रहे हैं। जिकना आशार गुजरात से ये बधाई अपनी गायकी के साथ हमें प्रेषित की है। जिकना को हम आभार कहेंगे, बार बार कहेंगे।

राम नारायणम जानकी वल्लभम। आपने सुना साक्षी मेंढकर को, और आइए सुनते हैं एक बार फिर अच्युतम केशवम।

आवाज साक्षी मेंढेकर की नागपुर महाराष्ट्र से, जयपुर रेडियो की सिंगर भक्ति भावधारा की स्पेशल पेशकश में साक्षी मेंढेकर।

साक्षी मेंढकर की आवाज में ये आरती उस कृष्ण को समर्पित जिसका हम इंतजार कर रहे हैं।

आरती से वंदन कर रही हैं और अपनी आवाज से खुशबू का चंदन लगा रही हैं कुंज बिहारी को, मधुसूदन मुरारी को, गोवर्धन गिरधारी को, बांके बिहारी को। आइए आरती का आनंद लेते हैं, सब मिलके गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कुंज बिहारी की आरती।

आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की, और इस आरती को साक्ष्य बना रही थी अपने स्वर में साक्षी मेंडेकर, नागपुर महाराष्ट्र से, जयपुर रेडियो की सुरेली भक्ति रस की सिंगर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद साक्षी, हम सबको भक्ति रस में भिगोने के लिए। यूं ही आते रहिए, गाते रहिए और भक्ति गान के स्वर को गुंजायमान करती रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। भक्ति धारा स्पेशल में आज कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल भजन लेके आई हैं नागपुर महाराष्ट्र की साक्षी मेंढकर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और वेलकम है साक्षी का भजनों के साथ।

सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरे ये प्रियतम मेरे, और तीसरा सपनों में आना सच में ये बहाना हो गया। और इस अफसाने को सुना रही थी हमारी आज की सुरीली सिंगर नागपुर महाराष्ट्र से साक्षी मेटकर। आइए सुनते हैं साक्षी का अगला भजन

श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। और हम तो ये कहेंगे कि मेरी उम्र बीत गई और आप आन बसो मेरे तन मन में। आप सुन रहे हैं विशेष स्पेशल प्रोग्राम भक्ति भावधारा, कृष्ण भक्ति स्पेशल प्रोग्राम जन्माष्टमी के अवसर पर। और गा रही हैं इस मंच की सुरीली सिंगर साक्षी मेंढकर नागपुर से। आइए सुनते हैं। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर जाती है। और साक्षी कह रही है तो ये स्वयं साक्षी है, हम क्या कहें, क्योंकि साक्षी का और साक्ष्य का प्रमाण कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही चीज।

उसके दर पे आके किस्मत संवर जाती है, उसी का नाम तो कृष्णा है, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को हम माधव माखन चोर कहते हैं, और ये भी कहते हैं जो साक्षी कह रही है।

राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा, और हम कहेंगे कि साक्षी इस मंच से ढूंढ रही है शाम को, और हम उस शाम का, उस रात का, उस अंधेरी रात का इंतजार कर रहे हैं शाम को देखने के लिए, जो आएंगे और खुशियां हर हाल लेके आएंगे। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। राधे, कौन से पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे घर आते हैं, तुझसे बतियाते हैं, और आज हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक पल एक क्षण हमारी ओर भी देखेंगे श्री कृष्णा। साक्षी मंडेकर का

राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे ही घर आते हैं। और साक्षी मंडेकर हर जन्माष्टमी को इस मंच से रोज भजन सुनाते हैं, तो हम साक्षी को कहेंगे यूं ही गाते रहिए, सुरीले भजनों की सौगात यूं ही लाते रहिए। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम रामचंद्र भजे, साक्षी मेंढकर की आवाज नागपुर से जन्माष्टमी स्पेशल में हमारे संघ हमारे साथ जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

राम नारायणम जानकी वल्लभम। आपने सुना साक्षी मेंढकर को, और आइए सुनते हैं। एक बार फिर अच्युतम केशवम।

आवाज साक्षी मेंढेकर की नागपुर महाराष्ट्र से, जयपुर रेडियो की सिंगर भक्ति भावधारा की स्पेशल पेशकश में साक्षी मेंढेकर।

साक्षी मेंढकर की आवाज में ये आरती उस कृष्ण को समर्पित जिसका हम इंतजार कर रहे हैं।

आरती से वंदन कर रही हैं और अपनी आवाज से खुशबू का चंदन लगा रही हैं कुंज बिहारी को, मधुसूदन मुरारी को, गोवर्धन गिरधारी को, बांके बिहारी को। आइए आरती का आनंद लेते हैं, सब मिलके गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कुंज बिहारी की आरती।

आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की, और इस आरती को साक्ष्य बना रही थी अपने स्वर में साक्षी मेंडेकर, नागपुर महाराष्ट्र से, जयपुर रेडियो की सुरेली भक्ति रस की सिंगर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद साक्षी, हम सबको भक्ति रस में भिगोने के लिए। यूं ही आते रहिए, गाते रहिए और भक्ति गान के स्वर को गुंजायमान करती रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाए तो बंद के दीपक जलता।

चलना काम है हम सभी का, और समय तो चलने में सबको पीछे छोड़ देता है। हम एक साल और आगे बढ़ गए हैं गीतों के इस कारवां के साथ, आपके साथ गीत गाते गाते। हाँ, वो गीत तो आपने सुना ही होगा, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। और गीत गाने की मंजिल है आपकी, प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। और इस मंजिल पर हमारे साथ आपको ले जाने वाली आवाज अर्चू रानू और मैं आरजे भूमिका आपके साथ। और हम दोनों के साथ आ गए हैं भूपेंद्र 1973, अर्चू रानू 16 का साथ देने इस प्रेरणापद गीत में, खुशबू देते गीत में और महकती आवाज के साथ।

चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। अर्ची और भूपेंद्र के इस गीत के बाद प्रीत को बनाए रखने वाले वादे के साथ हिदायत नजर ना चुराने की। इस गीत में डॉक्टर हरप्रीत सिंह हैरी आ गए हैं अर्चु रानू का साथ देने।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं इस नए वर्ष में अपना नया अंदाज लिए अर्चु रानू 16। अपने गीत में कह तो रही हैं वीजी विनोद गुप्ता के साथ, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।

वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू कह रहे थे, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना क्या सुनना है, समय का ये पल थम सा गया है। थमे हुए इस पल को संजो के रखते हैं और आइए सुनते हैं धनंजय और अर्जुन रानू को दिल की बात कहते हुए।

दिल है कि मानता नहीं, और आप हैं तो शिकवे भी हैं, शिकायत भी है, आपकी नजदीकी भी है और मनाने के अंदाज भी। एक बार फिर धनंजय अर्चुरानू के संग इस प्यारे से गीत में।

धनंजय और अर्चु रानू के इस सुरीले सॉन्ग के बाद स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।

तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, मेरी नस नस में तू समाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कसमें वादे प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग की आवाज, इस मंच के मेल सिंगर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। सड़क फिल्म के इस गीत के बाद आप सुनते हैं अभी अभी जो शायर बने हैं और जिनको देखते ही शायरी आ गई उनकी बात। आवाज फिर वही इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा।

प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। जब से देखा और जब से सुना जयपुर रेडियो का ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत बन के आज इस मंच पे इस मंच के मेल सिंगर हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुनते हैं इसी आवाज को एक बार फिर अगले गीत में।

यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। और हम कहेंगे कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और प्यार के गीत गाने की कसम खाई है हमारे अनुराग ने। और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग को प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। और अब इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से कह रहे हैं, जयपुर रेडियो को तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है। और हम क्या कहें, आपकी दुहाई है दुहाई है दुहाई है। तो आइए सुनते हैं अनुराग का ये गीत, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, इस प्रोग्राम के तहत

तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, मेरी नस नस में तू समाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कसमें वादे प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग की आवाज, इस मंच के मेल सिंगर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। सड़क फिल्म के इस गीत के बाद आप सुनते हैं अभी अभी जो शायर बने हैं और जिनको देखते ही शायरी आ गई उनकी बात। आवाज फिर वही, इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा।

प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। जब से देखा और जब से सुना जयपुर रेडियो का ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत बन के आज इस मंच पे इस मंच के मेल सिंगर हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुनते हैं इसी आवाज को एक बार फिर अगले गीत में।

यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। और हम कहेंगे कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और प्यार के गीत गाने की कसम खाई है हमारे अनुराग ने। और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग को अभी तक आप सुन रहे थे प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं अमेरिका सियाटल से समृद्धि चतुर्वेदी।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से मैं समृद्धि चतुर्वेदी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम जो कि है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब श्रृंखला की छठी कड़ी में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है तारीफों के पुल का सफर। आज का हमारा जो ये सफर है थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक प्रेम कहानी को उसके अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, आज हम सिर्फ एक चीज सुनेंगे, तारीफ, वो भी गीतों के जरिए और गीतों में सवालों के जरिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, तारीफ करने का अंदाज भी तो समय के साथ बदलता है। पुराने जमाने का आशिक थोड़ा झिझकता था, शब्दों में नरमी थी, इशारों में अदब था और शायद दिल में यह डर कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। पहले महबूब की खूबसूरती को देखकर सीधे कह देना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, शायद कुछ ज्यादा बेबाकी समझी जाती थी। इसीलिए चांद का सहारा लिया जाता, फूलों की मिसाल दी जाती और कभी कभी तो इजाजत लेकर तारीफ करने की कोशिश होती थी। लेकिन वक्त बदला और आशिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, शायरी थोड़ी कम संकोची हुई, तारीफ थोड़ी ज्यादा सीधी हुई और फिर एक इजाजत क्यों मांगे, तारीफ ही तो करनी है। तो आज हम सुनेंगे करीब चार दशकों में हिंदी फिल्मी गीतों में तारीफ, तहजीब, तकरार और कॉन्फिडेंस का यह सफर। और हाँ, इस एपिसोड में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी बनता है। जो मेरे श्रोतागण हैं वो मेरे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के प्यार को से तो अब तक वाकिफ हो चुके होंगे, तो आज के जो हमारे गीत हैं तारीफ का मामला है तो अक्सर ये होता है कि हीरो हीरोइन की तारीफ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो गाने हैं वो है मेल वॉइसेस में। लेकिन मेरा आज का मामला थोड़ा सीरियस है, मेरा दिल भी थोड़ा मचल गया है और भले ही ये ओरिजिनल गाने मेल वॉइसेस में हैं, मगर मैं कुछ गानों को गाने से रोक नहीं पाई। तो आज के सफर में जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे गानों में, उसे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की कमी नहीं, पुराने गीतों के लिए मेरी मोहब्बत समझिएगा। और शुरुआत करेंगे 1940 से, उस दौर से जब कुंदन लाल सहगल की आवाज हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग जादू रखती थी। सहगल साहब उस दौर के उन कलाकारों में थे जिनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं था, आवाज में अभिनय भी था और अभिनय में गायकी भी। और पहला सवाल भी कितना संकोची है, मैं क्या जानू क्या जादू है और मैं यह मौका कैसे छोड़ देती। यह मेरे लिए उन ऑल टाइम क्लासिक्स में से है जिन्हें गाने का मन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इस बार किसी एक की आवाज भी नहीं, क्योंकि ये गाना मेरा भी प्रिय है और मेरे पिताश्री जो कि अक्सर मेरा साथ देते हैं गानों में, श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी जी, उनका भी प्रिय है। तो हम दोनों का ही गाने का मन मचल रहा था, तो मैंने बोला कि हम इस गाने को एज अ डुएट लेकर जाएंगे। तो आइए उसी पुराने अंदाजे मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। यह गाना फिल्म जिंदगी का है जो कि 1940 में रिलीज हुई थी। इसके गायक केएल सहगल, गीतकार केदार शर्मा और संगीत पंकज मलिक का है। तो आइए इस छोटे सी श्रद्धांजलि इस अमर गीत को

कितना खूबसूरत था उस दौर का संकोच, यानी दिल में बहुत कुछ है लेकिन कहने वाला अभी भी थोड़ा ठहर रहा है। और फिर आते हैं 22 साल आगे। अब आशिक थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब वह सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि तुम में क्या जादू है, अब वह बकायदा मिसालें ढूंढ रहा है।

मैं जरा पीछे हट गई कि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी मेरे पिताजी के साथ भी और उससे भी ज्यादा मेरे श्रोताओं के साथ अगर मैंने ये गाना अकेले ही गा दिया और आप मेरे पिताश्री यानी कि पंकज जी की आवाज से आवाज नहीं सुन पाए इस गाने में, क्योंकि वह बखूबी निभाते हैं इस गाने को। तो आज सुनते हैं उनका वर्जन, लेकिन एक कन्फेशन है, मुझे यह गीत इतना पसंद है कि मैं इसे यूं ही छोड़ने वाली तो हूं नहीं। तो अगले किसी एपिसोड में जहां ये फिट बैठेगा मैं यह गाना दोबारा फीमेल वर्जन में लेकर आऊंगी, यानी कि अपनी आवाज में, अपने अंदाज में, क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार गाकर और सुनकर मन नहीं भरता। तो आइए सुनते हैं अब क्या।

दो साल बाद आशिक की भाषा कितनी बदल जाती है। अब मिसालों की जरूरत नहीं, अब सीधे सवाल है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि तुम तो खूबसूरत हो ही और तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले की क्या तारीफ करूं। तो यहाँ शरारत भी आ गई है और आत्मविश्वास भी। हमारा अगला गीत कश्मीर की कली फिल्म का, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत OP नैयर साहब ने दिया है। और यहाँ एक मजेदार बात है, रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वो तारीफ शब्द को भी अभिनय कर रहे हैं। हर बार वही शब्द, लेकिन हर बार एक अलग अंदाज। शम्मी कपूर और रफी साहब की यह जोड़ी उस दौर के नए बेफिक्र और बेहद कॉन्फिडेंट रोमांटिक हीरो की पहचान बन चुकी थी। तो अब इजाजत मांगने वाला आशिक कहाँ गया? वो अब सामने खड़ा है और खुलकर कह रहा है,

0: हाँ, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और खुल कर कर रहा हूँ। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें

अब यहाँ से अंदाज बिल्कुल बदल गया। 1940 का आशिक था संकोची, 1962 का आशिक था काव्यात्मक और 1964 तक आते आते पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन इसी दौर में एक और तरह की तारीफ सुनाई देती है। अब सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं है, अब बात होती है नूर की, निगाहों की, मौजूदगी की, और भाषा में अभी भी एक अदब बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपके तुम तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है। अगला गीत हमारा मूवी है बहारें फिर भी आएंगी, वर्ष 1966। गायक है मोहम्मद रफी साहब, गीतकार अनजान और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत में तारीफ में शरारत कम और नजाकत ज्यादा है और इस फिल्म का संगीत भी अपने आप में दिलचस्प कहानी रखता है। शुरुआत में एसडी बर्मन साहब संगीत दे रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद ओपी नैयर जी ने संगीत संभाला। सुनते हैं

और अब जरा 1975 तक चलते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगता है कि हिंदी फिल्मों का आशिक आखिरकार फॉर्मेलिटीज छोड़ चुका है। ना चांद चाहिए, ना गुलाब, ना पूरी कायनात को गवाह बनाने की जरूरत है। बस सामने देखकर कह दिया, क्या खूब लगती हो। यह है मूवी धर्मात्मा का बहुत ही फेमस गाना। 1975 में रिलीज हुई थी यह मूवी। इसके गायक मुकेश और कंचन, गीतकार इंदीवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ है। और अब एक बहुत प्यारा बदलाव देखिए। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। वह कहता है, क्या खूब लगती हो, और सामने से जवाब आता है, फिर से कहो, कहते रहो। यानी अब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ दिया नहीं जा रहा, मांगा भी जा रहा है। सुनते हैं हमारी आवाजों में, जो कि ओरिजिनली मुकेश और कंचन ने गाया था।

अब चलते हैं 1985 की तरफ। इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी पोएट्री नहीं मरी है, वो वापस आती है, लेकिन नए संगीत और नए अंदाज के साथ। और सवाल वही पुराना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारी तुलना किससे करूं? बट इस बार जवाब में चांद है। चेहरा है या चांद खिला है, ये बहुत ही फेमस गाना फिल्म सागर का है, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। किशोर कुमार की के बहुत ही फेमस गानों में से एक है ये। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। 1985 आते आते हिंदी फिल्मों का संगीत की ध्वनि बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन देखिए इन इतने सालों के बाद भी शायर की हालत वही है। चेहरा देखकर फिर वही सवाल, चेहरा है या चांद खिला है। फर्क बस इतना है कि अब आशिक उतना संकोची नहीं है, वह सवाल भी करता है, तारीफ भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। तो आइए सुनते हैं यह गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी सियाटल अमेरिका से स्मृति चतुर्वेदी, और इसमें शामिल गीतों को गा रहे थे पंकज चतुर्वेदी और स्मृति चतुर्वेदी। आज का ये सुरीला आयोजन यहीं तक, अनुमति दें, नमस्कार।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रकृति ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, उसी के साथ ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए हैं जिनसे हम जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही धन है, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा उल, आपका वेलकम है, स्वागत है इस खास प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर।
0: हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे डॉक्टर काजोल जो है वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, और आयुर्वेदा जो है वो क्या होता है, और आप आयुर्वेदा की डॉक्टर बनी हैं, तो उसके आगे MBBS लगता है या कुछ और डिग्री लगती है, क्या होता होगा उसमें और किस तरह से इस प्रक्रिया से गुजरना होता है जब आयुर्वेद का डॉक्टर कोई बनना चाहता है।
1: सर, BMS 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे कि MBBS होता है वैसे ही BMS का कोर्स होता है। पर BMS और MBBS दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं। BMS में हम आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं, और MBBS जो है वो अलग ही मेडिकल ब्रांच का अलग ही एक फील्ड है।
0: डिफरेंस कैसे करेंगे इसमें, क्या डिफरेंस है कि
1: सर? डिफरेंस जो हम स्टडी करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, और कोर्स जो होता है उसमें हमें थोड़ा बहुत MBBS में जो पढ़ाई होती है वो भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आयुर्वेद और शास्त्रों के बारे में भी हमें बताया जाता है, और हमें शास्त्रों के आधार पर ही फिर चिकित्सा करनी होती है आगे चल के।
0: यानी मोटे तौर पे हम समझे तो शास्त्रों पे आधारित जो मानव शरीर की संरचना है उसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, इसी तरह की बात पढ़ाई जाती होगी ना, क्योंकि एकदम अलग अलग है एलोपैथिक से आयुर्वेदा जो है।
1: हाँ बिल्कुल सर, जो आयुर्वेदा कोर्स है उसमें हमें बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी शरीर के बारे में पढ़ना होता है। वो किसी भी मेडिकल ब्रांच में कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल में एंटर करता है तो उसको पढ़ना ही होता है, चाहे BDS डॉक्टर हो, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर हो। पर उसमें विशेषता ये हो जाती है कि वो एक अलग स्पेशलिटी बन जाता है। आयुर्वेदा अपनी अलग स्पेशलिटी है, होम्योपैथिक अपनी अलग स्पेशलिटी है, और डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अलग एक स्पेशलिटी है।
0: जब हम आयुर्वेदा शब्द को सुनते हैं तो हमें बोध होता है कि जैसे वेदों के बारे में बताया जाता है ना, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसी तरह से इसका वेद के साथ कोई ताल्लुक है या प्रकृति के साथ या हमारे शास्त्रों के साथ कोई उसका संबंध है?
1: जी बिल्कुल सर, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है, और शास्त्रों का इसमें पूरा का पूरा मतलब इसको हिस्सा माना जा सकता है। और इसमें हमें पूरे जो अथर्ववेद है उसमें शरीर के बारे में, उसको कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में, और क्या आपका खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, और वो जिस खंड में बताया गया है उसी को आयुर्वेद नाम दिया गया है।
0: बहुत अच्छी बात के हमने जो पारंपरिक तौर से और हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए उन्हीं अनुभवों को हम संचित करके और उसके आधार पर चिकित्सा जो है वो की जाती है। डॉक्टर काजोल हमारे साथ हैं, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप BAMS हैं, जैसे MS होते हैं या MBBS होते हैं उसी तरह से BAMS होता है, और ये कोर्स और इस प्रक्रिया से कैसे गुजरा जाता है, कैसे यदि कोई हमारा सुनने वाला श्रोता है वो आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहे तो उसको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना हो?
1: सर, सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है उनको 12th में PCB ऑप्ट करना पड़ता है, और जिनके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहता है वो लोग आगे चल करके डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो। और उसके बाद आजकल नीट का एग्जाम दिया जाता है। नीट के एग्जाम के जो जो अंक होते हैं उसके हिसाब से ही बीएमएस ऑप्शन बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस करने के बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, एमडीएमएस का कोर्स भी होता है, जिसके लिए फिर पीजी का एग्जाम देना होता है और पीजी करके फिर वो जो भी ब्रांच, जैसे एमबीबीएस में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, गायनेक यानी कि फीमेल स्त्री प्रसूति रोग वाले अलग होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिनका बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं और फिर उसमें पीजी मास्टर डिग्री कर सकते हैं और उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद यदि बीएएमएस कर लिया, आयुर्वेद के
1: जी
0: डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद भी क्या ऐसा होता है कि एमबीबीएस के बाद जैसे एमडी होती है या विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि ये हार्ट रोग के लिए है, ये जो है मानसिक रोगों
1: जी
0: के लिए, इसमें भी होता है?
1: बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनका जैसे नाम है हमारी मेडिसिन ब्रांच को हम बोलते हैं काय चिकित्सा, और पीडिया जो है उसको बाल बाल रोग कहा जाता है, सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोला जाता है, गायनेक को स्त्री प्रसूति रोग चिकित्सा बोला जाता है, ईएनटी जितना भी मतलब स्पेशलाइजेशन है उसमें उसको शलाक्य कहा जाता है, और पैथोलॉजी को रोग निदान बताया जाता है, और एनाटॉमी अपनी अलग से एनाटॉमी की ब्रांच होती है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है। अभी रिसेंटली जो है ये मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जो कि पीजी करने के बाद यानी कि एमडीएमएस करने के बाद एक पर्टिकुलर जो विभाग होता है उसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो भी आयुर्वेद में अब स्टार्ट हो गया है।
0: इसके बाद जब स्पेशलाइजेशन हो जाए, बीएएमएस हो गया, तो जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी है जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या क्या?
1: बीएमएस कंप्लीट करने के बाद या तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं या आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी नर्सिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बीएमएस के साथ साथ आपने पीजी किया है यानी कि एमडीएमएस किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो आप खुद का अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट मेडिकल ऑफिसर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, वो दे करके आप मेडिकल ऑफिसर स्टेट में बन सकते हैं या किसी डीन यूनिवर्सिटी के डीन भी बन सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा रिसर्च में भी, रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं या फिर सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके थ्रू, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू दे करके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं।
0: आयुर्वेदा और आयुर्वेद में डॉक्टर बनना, ये केवल भारतीय पद्धति है यानी इंडियन मेडिसिन के उपचार की पद्धति है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में, अब्रोड में भी इसको अपनाया गया है, या इसके आधार पर कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है, या इसकी प्रक्रिया को, इससे उपचार किया जाता है दूसरे देशों में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
1: सर बिल्कुल, बाहर के देशों में भी आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है और अलग अलग जैसे वहाँ पे भी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप अगर आपने पीजी किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड है कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ का आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पे भी एज आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं सर।
0: डॉक्टर काजोल, इसमें क्या जैसे सर्जरी के लिए एलोपैथिक में जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं,
1: जी
0: उसी तरह से इसके भी ओटी होते हैं क्या?
1: हाँ बिल्कुल सर, जैसे सर्जरी एलोपैथिक में होती है वैसे ही सर्जरी की प्रॉपर स्टडी ट्रेनिंग पूरा कैडेवर पे जो एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है वो सब चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी कराया जाता है। बल्कि आप स्पेशलाइजेशन करें या ना करें पर फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तभी आपको एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कैडेवर पर स्टडी करना ही पड़ता है, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा पीजी जब आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाया जाता है, पूरा प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में जैसे सेटअप होता है वैसा ही सेटअप होता है, और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट स्कैपल ब्लेड सब कुछ यूज होता है वो सब चीजें आयुर्वेद आयुर्वेद में भी जब हम सर्जरी करते हैं तो यूज होती हैं, सेम वही सब कुछ ट्रेनिंग की दी जाती है सर।
0: डॉक्टर काजोर ने क्या सोच के इस फील्ड को अपनाया, कौन सी संभावनाएं आपको नजर आई?
1: सर आयुर्वेद के बारे में पहले इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, और 2015 में हमारा आयुष मिनिस्ट्री बना, और मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला और बहुत ज्यादा लोगों में उसकी वो चर्चा में आया। और उसी दौरान मेरा भी एडमिशन 2015 में बीएमएस में हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे जा करके आयुर्वेदा को ही ऑप्ट करके आगे जा करके लोगों के लिए इसमें मतलब आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के काम करना है और लोगों की मदद करनी है।
0: तो आप अब तो जॉब में आ गई, तो किस तरह से आप मदद करती हैं, और क्या अपने जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और करना चाहती हैं आगे इसी फील्ड में, या कहीं कोई फील्ड बदलना चाहती हैं?
1: नहीं, सर फील्ड तो बिल्कुल नहीं बदलना है सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के लिए चुना, और हम आयुर्वेद का एक हिस्सा बने और लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बता पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता। और यही फील्ड में मैं आगे और अच्छा करना चाहती हूँ, मैं लोगों को गाइड करते रहना चाहती हूँ कॉन्स्टेंटली, जैसे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं लोगों को गाइड करूँ, उनकी मदद करूँ कि वो आयुर्वेदा को ऑप्ट करें और अपना जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कई चीजें होती हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में अच्छा है, कई चीजें ऐसी हैं जिनका आयुर्वेद में अच्छा है, कई चीजें हैं जिसमें अदर जो पैथीज है जैसे होम्योपैथी है उनमें ट्रीटमेंट अच्छा है। तो लोग गलत दिशा में ना जाएं, उनको सही मार्गदर्शन मिले टाइम से ताकि उनको जल्दी वो हील कर पाए और कष्ट कम से कम सहन कर पाए। यही मैं चाहती हूँ कि यही हम लोग उनकी मदद कर पाए इसके थ्रू।
0: हमारे जो यूथ हैं वो यदि BAMS आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगी आप कि किस तरह से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकती हैं, बन सकते हैं?
1: मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, फिर भी वो एमबीबीएस के ही को ही करना चाहते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप एक बार दीजिए, आप 2 बार भी दे दीजिए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट देने पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है एमबीबीएस, तो आप बिल्कुल बीएमएस होम्योपैथी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पैथी छोटी बड़ी नहीं होती है, आपको लाइफ अपने आप कैसे आप उसको आगे बढ़ करके कैसे उसमें अच्छे से काम करते हैं, क्या आप आपने जो सीखा उससे उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और आप चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने एमबीबीएस किया है तो ही आप आगे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे, अगर आप बीएमएस भी ऑप्ट करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है जो एमबीबीएस कर रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपकी कैपेबिलिटीज, आपके जो आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकल आपका, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको फील्ड में उतरना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अपने आप को जितना आप प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेजेबल बना सकते हैं बनाइए। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, अभी से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालिए। भले ही आप अभी कोई मतलब एमबीबीएस या बीएमएस कुछ आपने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का और जो भी अपडेट हो रहा है उन चीजों के बारे में अपडेटेड रहने का आपका होना चाहिए, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का।
0: जो बहुत सारे एज फैक्टर होते हैं, आयु, आयुर्वेद में भी हम एज के हिसाब से उसका उपचार करते हैं। एक बच्चा है, एक प्रौढ़ है, एक युवा है, और एक जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उस तरह के उपचार के लिए, और जैसे सीनियर सिटीजन है, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे कि आयुर्वेद आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना काम?
1: सर बच्चों की अगर बात करें तो मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन की आदत ना डालें। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए वो एकदम से ऑप्ट करते हैं। छोटा सा अगर खांसी जुकाम भी हो रहा है तो कफ सिरप या फिर पीसीएम डोलो ऐसी मेडिसिन बच्चों को खिलाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है। फिर आगे चल करके लाइफ में उनको जब कोई आगे चल करके प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में मेडिसिन उनके ऊपर।
0: बिल्कुल, ये जमाना हम जी रहे हैं जिस युग में, वो इंस्टेंट वाला है और
1: जी
0: सबको इंस्टेंट चाहिए होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ठीक होना, जल्दी से जल्दी रील्स भी देखते हैं तो फिल्में देखने बंद कर दी और रील्स पे आ गए, तो सबसे कम समय में उपचार भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो सके और अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आयु को, अपने ज्ञान को बढ़ा सके।
1: सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करके रखनी है। अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और टाइम से खाना खाइए, टाइम पे सोइए, अपना जो दिनचर्या है आपका उसको अच्छे से अनुशासित रूप में रखिए, और बाहर का कम से कम खाइए, और योगा मेडिटेशन इन चीजों के ऊपर बच्चों को बचपन से ही आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा वो खेलें कूदें। आजकल ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर घर में रहते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उनका इम्यूनिटी भी बिल्टअप नहीं होता है, ना ही उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को तो खेलने के लिए भी देना चाहिए और अच्छा खाने के लिए भी देना चाहिए, और उनके मेनली फोकस करना चाहिए कि इम्यूनिटी अच्छी हो। और उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे विंटर्स में स्वर्ण ये चवप्राश का प्रयोग करना, और छोटे बच्चे जो हैं उनको स्वर्ण बिंदु प्राशन किया जाता है आयुर्वेद में, उस कार्यक्रम को भी वो करवा सकते हैं। और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं और उसकी वजह से वो कमजोर है या उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको खाने के अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी ही बच्चा खाए, कैसे ना कैसे करके उनको पूर्णतः पोषण युक्त आहार उनको देने का प्रयास करना चाहिए।
0: जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या सलाह देंगी आप?
1: सीनियर सिटीजन्स को मैं यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी जो मनोबल है उसको बिल्कुल बना के रखिए, और कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, और बाकी ये कि अपना जो दिनचर्या है उसको अच्छा अनुशासित रूप में रखिए, और सद्वित का पालन कीजिए, और ध्यान पूजा पाठ आदि का भी मतलब अपने जीवन में उसका उपयोग करें, और यही मैं उनको सलाह दूंगी।
0: आप पूजा पाठ करती हैं, ध्यान करती हैं, योग प्राणायाम कुछ ऐसा
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: करती हैं
1: हाँ बिल्कुल
0: जो
1: जरूर
0: हमारे सुनने वालों के लिए भी एक नजीर बन सके?
1: सर, बिल्कुल मैं डेली योगा करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि योग और जो पूजा पाठ करते हैं उससे मानसिक जो आपका शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है, वो बढ़ती है। तो इसीलिए बिल्कुल आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और सत्व गुण आपके शरीर में बढ़ता है, और सत्व गुण जिनका अच्छा रहता है उन्हें किसी भी प्रकार से रोग नहीं होता है। यदि रोग हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी उससे रिकवरी कर लेते हैं, हो जाते हैं।
0: तो हमारे सुनने वालों ने सुना होगा कि सत्व गुण बढ़ाना है आपको, रजोगुण और तमोगुण से तो बिल्कुल दूर रहना, और यही कह रही हैं। और कुल मिला के यदि हम आयुर्वेदा के निष्कर्ष पे जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा जो है भारतीय जीवन पद्धति है, किस तरह से एक लाइफस्टाइल है कि हम किस तरह से जिंदा रहें, किस तरह से स्वस्थ रहें और सबसे स्वस्थ रहें, और प्रकृति से हम किस तरह से जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है, वनस्पति दी है, हवा दिया है, पानी दिया है, तो इन सब चीजों का हम सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। इतनी बात डॉक्टर काजोल से हमारी हुई है, उसका जो सार है वो निकल के यही आता है। डॉक्टर काजोल, आप कुछ गाती भी हैं, गाना वाना, फिल्में देखती हैं, बॉलीवुड सॉन्ग गाती हैं, भजन गाती हैं, क्या गाती हैं, क्या सुनाएंगे आप हमें?
1: सर, भजन मैं गा लेती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ गा लेती हूँ मैं भजन।
0: हाँ, दुलाई नहीं, हम जरूर सुनेंगे,
1: जी,
0: भजन हो चाहे सॉन्ग हो, कुछ भी हो जो आपको सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है वो भी यदि आप सुनाएं तो भी अच्छा लगेगा हमें।
1: अच्छा सर, मैं कृष्ण भगवान का भजन गाऊंगी, सिर्फ दो ही लाइन मैं गाऊंगी। हाँ

0: कृष्ण राम नारायणम जानकी वल्लभम।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही ग्रेट
0: थैंक यू सर।
1: कृष्ण है। कृष्ण जो प्रकृति को अपनी बांसुरी से वश में कर लेते हैं और पूरी की पूरी दुनिया उसके वश में है, उसके आकर्षण में है, और हम आयुर्वेद के आकर्षण में रहे। डॉक्टर काजोल शायद हमें यही कह रही हैं, यही सीख दे रही हैं कि हमें जीवन, हम जीते तो हैं लेकिन जीवन जीने की कला में पूरी तरह से नहीं आती, और सीखते सीखते जीते जीते हम बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें होश आता है कि हमने पहले ऐसे क्यों नहीं किया। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे आयुर्वेद में ऐसी पद्धतियां, ऐसी चीजें हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सरल और सुगम के साथ साथ रोग मुक्त बना सकते हैं। तो डॉक्टर काजोल, बहुत अच्छा लगा से पूरी बातचीत करके। इसके अलावा कोई चीज रह गई हो तो आप जरूर वेलकम है, बताइए।
0: सर, ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे और आयुर्वेद के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको बताते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने कनेक्ट किया, और थैंक यू सो मच सर।
1: बहुत अच्छा लगा हमें भी, और ऑलवेज आपका वेलकम है, हमेशा स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए नई नई जानकारी जो आयुर्वेद में होती है, क्योंकि आज का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जानकारी आयुर्वेद के बारे में है। हम अलग अलग रोगों पे, अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करेंगे, और उसमें के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप इस मंच पर आई और हमारे श्रोताओं को अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से लाभान्वित किया। उसके लिए बहुत धन्यवाद।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
4: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं अमेरिका सियाटल से समृद्धि चतुर्वेदी।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से मैं समृद्धि चतुर्वेदी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम जो कि है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब श्रृंखला की छठी कड़ी में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है तारीफों के पुल का सफर। आज का हमारा जो ये सफर है थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक प्रेम कहानी को उसके अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, आज हम सिर्फ एक चीज सुनेंगे, तारीफ, वो भी गीतों के जरिए और गीतों में सवालों के जरिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, तारीफ करने का अंदाज भी तो समय के साथ बदलता है। पुराने जमाने का आशिक थोड़ा झिझकता था, शब्दों में नरमी थी, इशारों में अदब था और शायद दिल में यह डर कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। पहले महबूब की खूबसूरती को देखकर सीधे कह देना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, शायद कुछ ज्यादा बेबाकी समझी जाती थी। इसीलिए चांद का सहारा लिया जाता, फूलों की मिसाल दी जाती और कभी कभी तो इजाजत लेकर तारीफ करने की कोशिश होती थी। लेकिन वक्त बदला और आशिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, शायरी थोड़ी कम संकोची हुई, तारीफ थोड़ी ज्यादा सीधी हुई और फिर एक इजाजत क्यों मांगे, तारीफ ही तो करनी है। तो आज हम सुनेंगे करीब चार दशकों में हिंदी फिल्मी गीतों में तारीफ, तहजीब, तकरार और कॉन्फिडेंस का यह सफर। और हाँ, इस एपिसोड में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी बनता है। जो मेरे श्रोतागण हैं, वो मेरे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के प्यार को से तो अब तक वाकिफ हो चुके होंगे। तो आज के जो हमारे गीत हैं, तारीफ का मामला है तो अक्सर ये होता है कि हीरो हीरोइन की तारीफ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो गाने हैं वो है मेल वॉइसेस में। लेकिन मेरा आज का मामला थोड़ा सीरियस है, मेरा दिल भी थोड़ा मचल गया है। और भले ही ये ओरिजिनल गाने मेल वॉइसेस में हैं, मगर मैं कुछ गानों को गाने से रोक नहीं पाई। तो आज के सफर में जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे गानों में, उसे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की कमी नहीं, पुराने गीतों के लिए मेरी मोहब्बत समझिएगा। और शुरुआत करेंगे 1940 से, उस दौर से जब कुंदन लाल सहगल की आवाज हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग जादू रखती थी। सहगल साहब उस दौर के उन कलाकारों में थे जिनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं था, आवाज में अभिनय भी था और अभिनय में गायकी भी। और पहला सवाल भी कितना संकोची है, मैं क्या जानू क्या जादू है और मैं यह मौका कैसे छोड़ देती। यह मेरे लिए उन ऑल टाइम क्लासिक्स में से है जिन्हें गाने का मन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इस बार किसी एक की आवाज भी नहीं, क्योंकि ये गाना मेरा भी प्रिय है और मेरे पिताश्री जो कि अक्सर मेरा साथ देते हैं गानों में, श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी जी, उनका भी प्रिय है। तो हम दोनों का ही गाने का मन मचल रहा था, तो मैंने बोला कि हम इस गाने को एज ए डुएट लेकर जाएंगे। तो आइए उसी पुराने अंदाजे मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। यह गाना फिल्म जिंदगी का है जो कि 1940 में रिलीज हुई थी। इसके गायक KL सहगल, गीतकार केदार शर्मा और संगीत पंकज मलिक का है। तो आइए इस छोटे सी श्रद्धांजलि इस अमर गीत को

साथ मेरी एक खास बात है। यह उन गीतों में से है जिन्हें मैं सिर्फ सुनना नहीं बल्कि गाना भी चाहती हूँ। पर फिर वही बात है, ओरिजिनली ये मेल वॉइस की और मेरा और मेरे पिताजी दोनों का ही फेवरेट सॉन्ग है। तो इस बार मैं जरा पीछे हट गई कि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी मेरे पिताजी के साथ भी और उससे भी ज्यादा मेरे श्रोताओं के साथ अगर मैंने ये गाना अकेले ही गा दिया और आप मेरे पिताश्री यानी कि पंकज जी की आवाज से आवाज नहीं सुन पाए इस गाने में, क्योंकि वह बखूबी निभाते हैं इस गाने को। तो आज सुनते हैं उनका वर्जन। लेकिन एक कन्फेशन है, मुझे यह गीत इतना पसंद है कि मैं इसे यूं ही छोड़ने वाली तो हूं नहीं। तो अगले किसी एपिसोड में जहां यह फिट बैठेगा मैं यह गाना दोबारा फीमेल वर्जन में लेकर आऊंगी, यानी कि अपनी आवाज में अपने अंदाज में, क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार गाकर और सुनकर मन नहीं भरता। तो आइए सुनते हैं अब क्या

सिर्फ 2 साल बाद आशिक की भाषा कितनी बदल जाती है। अब मिसालों की जरूरत नहीं, अब सीधे सवाल है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि तुम तो खूबसूरत हो ही और तुम्हें ना तुम्हारे बनाने वाले की क्या तारीफ करूं। तो यहाँ शरारत भी आ गई है और आत्मविश्वास भी। हमारा अगला गीत कश्मीर की कली फिल्म का, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत OP नैयर साहब ने दिया है। और यहाँ एक मजेदार बात है, रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वो तारीफ शब्द को भी अभिनय कर रहे हैं। हर बार वही शब्द, लेकिन हर बार एक अलग अंदाज।

0: दास। शम्मी कपूर और रफी साहब की यह जोड़ी उस दौर के नए बेफिक्र और बेहद कॉन्फिडेंट रोमांटिक हीरो की पहचान बन चुकी थी। तो अब इजाजत मांगने वाला आशिक कहाँ गया? वो अब सामने खड़ा है और खुलकर कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और खुलकर कर रहा हूँ। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा तार।

अब यहाँ से अंदाज बिल्कुल बदल गया। 1940 का आशिक था संकोची, 1962 का आशिक था काव्यात्मक और 1964 तक आते आते पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन इसी दौर में एक और तरह की तारीफ सुनाई देती है। अब सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं है, अब बात होती है नूर की, निगाहों की, मौजूदगी की, और भाषा में अभी भी एक अदब बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपके तुम तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है। अगला गीत हमारा मूवी है बहारें फिर भी आएंगी, वर्ष 1966। गायक है मोहम्मद रफी साहब, गीतकार अनजान और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत में तारीफ में शरारत कम और नजाकत ज्यादा है और इस फिल्म का संगीत भी अपने आप में दिलचस्प कहानी रखता है। शुरुआत में एसडी बर्मन साहब संगीत दे रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद ओपी नैयर जी ने संगीत संभाला। सुनते हैं

और अब जरा 1975 तक चलते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगता है कि हिंदी फिल्मों का आशिक आखिरकार फॉर्मेलिटीज छोड़ चुका है। ना चांद चाहिए, ना गुलाब, ना पूरी कायनात को गवाह बनाने की जरूरत है। बस सामने देख कर कह दिया, क्या खूब लगती हो। यह है मूवी धर्मात्मा का बहुत ही फेमस गाना। 1975 में रिलीज हुई थी यह मूवी। इसके गायक मुकेश और कंचन, गीतकार इंदीवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ है। और अब एक बहुत प्यारा बदलाव देखिए। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। वह कहता है, क्या खूब लगती हो, और सामने से जवाब आता है, फिर से कहो, कहते रहो। यानी अब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ दिया नहीं जा रहा, मांगा भी जा रहा है। सुनते हैं हमारी आवाजों में, जो कि ओरिजिनली मुकेश और कंचन ने गाया था। क्या?

अब चलते हैं 1985 की तरफ। इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी पोएट्री नहीं मरी है, वो वापस आती है लेकिन नए संगीत और नए अंदाज के साथ। और सवाल वही पुराना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारी तुलना किससे करूं? बट इस बार जवाब में चांद है। चेहरा है या चांद खिला है, ये बहुत ही फेमस गाना फिल्म सागर का है जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। किशोर कुमार की के बहुत ही फेमस गानों में से एक है ये। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। 1985 आते आते हिंदी फिल्मों का संगीत की ध्वनि बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन देखिए इतने सालों के बाद भी शायर की हालत वही है। चेहरा देखकर फिर वही सवाल, चेहरा है या चांद खिला है। फर्क बस इतना है कि अब आशिक उतना संकोची नहीं है, वह सवाल भी करता है, तारीफ भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। तो आइए सुनते हैं यह गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी सियाटल अमेरिका से स्मृति चतुर्वेदी, और इसमें शामिल गीतों को गा रहे थे पंकज चतुर्वेदी और स्मृति चतुर्वेदी। आज का ये सुरीला आयोजन यहीं तक, अनुमति दें, नमस्कार।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रकृति ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, उसी के साथ ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए हैं जिनसे हम जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही धन है, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर काजल, आपका वेलकम है, स्वागत है इस खास प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर।
0: हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे डॉक्टर काजल जो है वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, और आयुर्वेदा जो है वो क्या होता है, और आप आयुर्वेदा की डॉक्टर बनी हैं, तो उसके आगे MBBS लगता है या कुछ और डिग्री लगती है, क्या होता होगा उसमें और किस तरह से इस प्रक्रिया से गुजरना होता है जब आयुर्वेद का डॉक्टर कोई बनना चाहता है।
1: सर, BMS 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे कि MBBS होता है वैसे ही BMS का कोर्स होता है, पर BMS और MBBS दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं। BMS में हम आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं, और MBBS जो है वो अलग ही मेडिकल ब्रांच का अलग ही एक फील्ड है।
0: तो डिफरेंस कैसे करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है कि
1: सर? डिफरेंस जो हम स्टडी करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, और कोर्स जो होता है उसमें हमें थोड़ा बहुत MBBS में जो पढ़ाई होती है वो भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आयुर्वेद और शास्त्रों के बारे में भी हमें बताया जाता है, और हमें शास्त्रों के आधार पर ही फिर चिकित्सा करनी होती है आगे चल के।
0: यानी मोटे तौर पे हम समझे तो शास्त्रों पे आधारित जो मानव शरीर की संरचना है उसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, इसी तरह की बात पढ़ाई जाती होगी ना, क्योंकि अलग है एलोपैथिक से आयुर्वेदा जो है।
1: हाँ बिल्कुल सर, जो आयुर्वेदा कोर्स है उसमें हमें बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी शरीर के बारे में पढ़ना होता है। वो किसी भी मेडिकल ब्रांच में कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल में एंटर करता है तो उसको पढ़ना ही होता है, चाहे BDS डॉक्टर हो, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर हो। पर उसमें विशेषता ये हो जाती है कि वो एक अलग स्पेशलिटी बन जाता है। आयुर्वेदा अपनी अलग स्पेशलिटी है, होम्योपैथिक अपनी अलग स्पेशलिटी है, और डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अलग एक स्पेशलिटी है।
0: जब हम आयुर्वेदा शब्द को सुनते हैं तो हमें बोध होता है कि जैसे वेदों के बारे में बताया जाता है ना, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसी तरह से इसका वेद के साथ कोई ताल्लुक है या प्रकृति के साथ या हमारे शास्त्रों के साथ कोई उसका संबंध है?
1: जी बिल्कुल सर, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है, और शास्त्रों का इसमें पूरा का पूरा मतलब इसको हिस्सा माना जा सकता है। और इसमें हमें पूरे जो अथर्ववेद है उसमें शरीर के बारे में, उसको कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में, और क्या आपका खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, और वो जिस खंड में बताया गया है उसी को आयुर्वेद नाम दिया गया है।
0: बहुत अच्छी बात के हमने जो पारंपरिक तौर से और हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए उन्हीं अनुभवों को हम संचित करके और उसके आधार पर चिकित्सा जो है वो की जाती है। डॉक्टर काजल हमारे साथ हैं, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप BAMS हैं, जैसे MS होते हैं या MBBS होते हैं उसी तरह से BAMS होता है, और ये कोर्स और इस प्रक्रिया से कैसे गुजरा जाता है, कैसे यदि कोई हमारा सुनने वाला श्रोता है वो आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहे तो उसको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा?
1: सर सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी आयुर्वेद डॉक्टर बनना है उनको 12th में PCB ऑप्ट करना पड़ता है, और जिनके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहता है वो लोग आगे चल करके डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो। और उसके बाद आजकल नीट का एग्जाम दिया जाता है। नीट के एग्जाम के जो जो अंक होते हैं उसके हिसाब से ही बीएमएस ऑप्शन बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस करने के बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, एमडीएमएस का कोर्स भी होता है, जिसके लिए फिर पीजी का एग्जाम देना होता है और पीजी करके फिर वो जो भी ब्रांच, जैसे एमबीबीएस में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, गायनेक यानी कि फीमेल स्त्री प्रसूति रोग वाले अलग होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिनका बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं और फिर उसमें पीजी मास्टर डिग्री कर सकते हैं और उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद यदि बीएएमएस कर लिया, आयुर्वेद के
1: जी
0: डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद भी क्या ऐसा होता है कि एमबीबीएस के बाद जैसे एमडी होती है या विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि ये हार्ट रोग के लिए है, ये जो है मानसिक रोगों के
1: जी
0: लिए, इसमें भी होता है?
1: बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनका जैसे नाम है हमारी मेडिसिन ब्रांच को हम बोलते हैं काय चिकित्सा, और पीडिया जो है उसको बाल बाल रोग कहा जाता है, सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोला जाता है, गायनेक को स्त्री प्रसूति रोग चिकित्सा बोला जाता है, ईएनटी जितना भी मतलब स्पेशलाइजेशन है उसमें उसको शालाक्य कहा जाता है, और पैथोलॉजी को रोग निदान बताया जाता है, और एनाटॉमी अपनी अलग से एनाटॉमी की ब्रांच होती है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है। अभी रिसेंटली जो है ये मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जो कि पीजी करने के बाद यानी कि एमडीएमएस करने के बाद एक पर्टिकुलर जो विभाग होता है उसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो भी आयुर्वेद में अब स्टार्ट हो गया है।
0: इसके बाद जब स्पेशलाइजेशन हो जाए, बीएएमएस हो गया, तो जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी है जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या क्या?
1: बीएमएस कंप्लीट करने के बाद या तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी नर्सिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बीएमएस के साथ साथ आपने पीजी किया है यानी कि एमडीएमएस किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो आप खुद का अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट मेडिकल ऑफिसर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, वो दे करके आप मेडिकल ऑफिसर स्टेट में बन सकते हैं, या किसी डीन यूनिवर्सिटी के डीन भी बन सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा रिसर्च में भी, रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके थ्रू, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू दे करके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं।
0: आयुर्वेदा और आयुर्वेद में डॉक्टर बनना, ये केवल भारतीय पद्धति है यानी इंडियन मेडिसिन के उपचार की पद्धति है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में, अब्रोड में भी इसको अपनाया गया है, या इसके आधार पर कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है, या इसकी प्रक्रिया को, इससे उपचार किया जाता है दूसरे देशों में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
1: सर बिल्कुल, बाहर के देशों में भी आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है, और अलग अलग जैसे वहाँ पे भी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप अगर आपने पीजी किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड है कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ का आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पे भी एज आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं सर।
0: डॉक्टर काजोल, इसमें क्या जैसे सर्जरी के लिए एलोपैथिक में जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं,
1: जी
0: उसी तरह से इसके भी ओटी होते हैं क्या?
1: हाँ बिल्कुल सर, जैसे सर्जरी एलोपैथिक में होती है वैसे ही सर्जरी की प्रॉपर स्टडी ट्रेनिंग पूरा कैडेवर पे जो एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है वो सब चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी कराया जाता है। बल्कि आप स्पेशलाइजेशन करें या ना करें, पर फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तभी आपको एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कैडेवर पर स्टडी करना ही पड़ता है, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा पीजी जब आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाया जाता है, पूरा प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में जैसे सेटअप होता है वैसा ही सेटअप होता है, और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट स्कैपल ब्लेड सब कुछ यूज होता है वो सब चीजें आयुर्वेद में भी जब हम सर्जरी करते हैं तो यूज होती हैं, सेम वही सब कुछ ट्रेनिंग की दी जाती है सर।
0: डॉक्टर काजोल ने क्या सोच के इस फील्ड को अपनाया, कौन सी संभावनाएं आपको नजर आई?
1: सर आयुर्वेद के बारे में पहले इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, और 2015 में हमारा आयुष मिनिस्ट्री बना, और मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला और बहुत ज्यादा लोगों में उसकी वो चर्चा में आया। और उसी दौरान मेरा भी एडमिशन 2015 में बीएमएस में हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे जा करके आयुर्वेदा को ही ऑप्ट करके आगे जा करके लोगों के लिए इसमें मतलब आगे बढ़ चढ़ के काम करना है और लोगों की मदद करनी है।
0: तो आप अब तो जॉब में आ गई, तो किस तरह से आप मदद करती हैं, और क्या अपने जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और करना चाहती हैं आगे इसी फील्ड में, या कहीं कोई फील्ड बदलना चाहती हैं?
1: नहीं, सर फील्ड तो बिल्कुल नहीं बदलना है सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के लिए चुना, और हम आयुर्वेद का एक हिस्सा बने और लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बता पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता। और यही फील्ड में मैं आगे और अच्छा करना चाहती हूँ, मैं लोगों को गाइड करते रहना चाहती हूँ कॉन्स्टेंटली, जैसे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं लोगों को गाइड करूँ, उनकी मदद करूँ कि वो आयुर्वेदा को ऑप्ट करें और अपना जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कई चीजें होती हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में अच्छा है, कई चीजें ऐसी हैं जिनका आयुर्वेद में अच्छा है, कई चीजें हैं जिसमें अदर जो पैथीज है जैसे होम्योपैथी है उनमें ट्रीटमेंट अच्छा है, तो लोग गलत दिशा में ना जाएं, उनको सही मार्गदर्शन मिले टाइम से ताकि उनको जल्दी वो हील कर पाएं और कष्ट कम से कम सहन कर पाएं। यही मैं चाहती हूँ कि यही हम लोग उनकी मदद कर पाएं इसके थ्रू।
0: हमारे जो यूथ हैं वो यदि BAMS आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगी आप कि किस तरह से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकती हैं, बन सकते हैं?
1: मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, फिर भी वो एमबीबीएस के ही को ही करना चाहते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप एक बार दीजिए, आप 2 बार भी दे दीजिए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट देने पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है एमबीबीएस, तो आप बिल्कुल बीएमएस होम्योपैथी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पैथी छोटी बड़ी नहीं होती है, आपको लाइफ अपने आप कैसे आप उसको आगे बढ़ करके कैसे उसमें अच्छे से काम करते हैं, क्या आपने जो सीखा उससे उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और आप चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने एमबीबीएस किया है तो ही आप आगे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे, अगर आप बीएमएस भी ऑप्ट करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है जो एमबीबीएस कर रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपकी कैपेबिलिटीज, आपके जो आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकल आपका, क्योंकि आप डॉक्टर हैं आपको फील्ड में उतरना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अपने आप को जितना आप प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेजेबल बना सकते हैं बनाइए। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, अभी से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालिए। भले ही आप अभी कोई मतलब एमबीबीएस या बीएमएस कुछ आपने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का और जो भी अपडेट हो रहा है उन चीजों के बारे में अपडेटेड रहने का आपका होना चाहिए, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का।
0: जो बहुत सारे एज फैक्टर होते हैं, आयु, आयुर्वेद में भी हम एज के हिसाब से उसका उपचार करते हैं। एक बच्चा है, एक प्रौढ़ है, एक युवा है, और एक जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उस तरह के उपचार के लिए, और जैसे सीनियर सिटीजन है, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे कि आयुर्वेद आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना काम?
1: सर बच्चों की अगर बात करें तो मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन की आदत ना डालें। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए वो एकदम से ऑप्ट करते हैं। छोटा सा अगर खांसी जुकाम भी हो रहा है तो कफ सिरप या फिर पीसीएम डोलो ऐसी मेडिसिन बच्चों को खिलाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है। फिर आगे चल करके लाइफ में उनको जब कोई आगे चल करके प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में मेडिसिंस उनके ऊपर।
0: बिल्कुल, ये जमाना हम जी रहे हैं जिस युग में, वो इंस्टेंट वाला है और
1: जी
0: सबको इंस्टेंट चाहिए होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ठीक होना, जल्दी से जल्दी रील्स भी देखते हैं तो फिल्में देखने बंद कर दी और रील्स पे आ गए, तो सबसे कम समय में उपचार भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो सके और अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आयु को, अपने ज्ञान को बढ़ा सके।
1: सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करके रखनी है। अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और टाइम से खाना खाइए, टाइम पे सोइए, अपना जो दिनचर्या है आपका उसको अच्छे से अनुशासित रूप में रखिए, और बाहर का कम से कम खाइए, और योगा मेडिटेशन इन चीजों के ऊपर बच्चों को बचपन से ही आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा वो खेलें कूदें। आजकल ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर घर में रहते हैं, बाहर अकेले नहीं जाते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उनका इम्यूनिटी भी बिल्डअप नहीं होता है, ना ही उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को तो खेलने के लिए भी देना चाहिए और अच्छा खाने के लिए भी देना चाहिए, और उनके मेनली फोकस करना चाहिए कि इम्यूनिटी अच्छी हो। और उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे विंटर्स में स्वर्ण ये चवप्राश का प्रयोग करना, और छोटे बच्चे जो हैं उनको स्वर्ण बिंदु प्राशन किया जाता है आयुर्वेद में, उस कार्यक्रम को भी वो करवा सकते हैं। और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं और उसकी वजह से वो कमजोर है या उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको खाने के अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी ही बच्चा खाए, कैसे ना कैसे करके उनको पूर्णतः पोषण युक्त आहार उनको देने का प्रयास करना चाहिए।
0: जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या सलाह देंगी आप?
1: सीनियर सिटीजन्स को मैं यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी जो मनोबल है उसको बिल्कुल बना के रखिए, और कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, और बाकी ये कि अपना जो दिनचर्या है उसको अच्छा अनुशासित रूप में रखिए, और सद्वित का पालन कीजिए, और ध्यान पूजा पाठ आदि का भी मतलब अपने जीवन में उसका उपयोग करें, और यही मैं उनको सलाह दूंगी।
0: आप पूजा पाठ करती हैं, ध्यान करती हैं, योग प्राणायाम कुछ ऐसा
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: करती हैं
1: हाँ बिल्कुल
0: जो
1: सर, बिल्कुल
0: हमारे सुनने वालों के लिए भी एक नजीर बन सके?
1: सर, बिल्कुल मैं डेली योगा करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि योग और जो पूजा पाठ करते हैं उससे मानसिक जो आपका शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है, वो बढ़ती है। तो इसीलिए बिल्कुल आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और सत्व गुण आपके शरीर में बढ़ता है, और सत्व गुण जिनका अच्छा रहता है उन्हें किसी भी प्रकार से रोग नहीं होता है। यदि रोग हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी उससे रिकवरी कर लेते हैं, हो जाते हैं।
0: तो हमारे सुनने वालों ने सुना होगा कि सत्व गुण बढ़ाना है आपको, रजोगुण और तमोगुण से तो बिल्कुल दूर रहना, और यही कह रही हैं। और कुल मिला के यदि हम आयुर्वेदा के निष्कर्ष पे जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा जो है भारतीय जीवन पद्धति है, किस तरह से एक लाइफस्टाइल है कि हम किस तरह से जिंदा रहें, किस तरह से स्वस्थ रहें और सबसे स्वस्थ रहें, और प्रकृति से हम किस तरह से जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है, वनस्पति दी है, हवा दिया है, पानी दिया है, तो इन सब चीजों का हम सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। इतनी बात डॉक्टर काजोल से हमारी हुई है, उसका जो सार है वो निकल के यही आता है। डॉक्टर काजोल, आप कुछ गाती भी हैं, गाना वाना, फिल्में देखती हैं, बॉलीवुड सॉन्ग गाती हैं, भजन गाती हैं, क्या गाती हैं, क्या सुनाएंगे आप हमें?
1: सर भजन मैं गा लेती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ गा लेती हूँ मैं भजन।
0: हाँ, दुलाई नहीं, हम जरूर सुनेंगे,
1: जी,
0: भजन हो चाहे सॉन्ग हो, कुछ भी हो जो आपको सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है वो भी यदि आप सुनाएं तो भी अच्छा लगेगा हमें।
1: अच्छा सर, मैं कृष्ण भगवान का भजन गाऊंगी, सिर्फ दो ही लाइन मैं गाऊंगी। हाँ

0: राम नारायणम जानकी वल्लभम।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही ग्रेट।
0: थैंक यू
1: कृष्ण। कृष्ण जो प्रकृति को अपनी बांसुरी से वश में कर लेते हैं और पूरी की पूरी दुनिया उसके वश में है, उसके आकर्षण में है, और हम आयुर्वेद के आकर्षण में रहे। डॉक्टर काजोल शायद हमें यही कह रही हैं, यही सीख दे रही हैं कि हमें जीवन, हम जीते तो हैं लेकिन जीवन जीने की कला में पूरी तरह से नहीं आती, और सीखते सीखते जीते जीते हम बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें होश आता है कि हमने पहले ऐसे क्यों नहीं किया। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे आयुर्वेद में ऐसी पद्धतियां, ऐसी चीजें हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सरल और सुगम के साथ साथ रोग मुक्त बना सकते हैं। तो डॉक्टर काजोल, बहुत अच्छा लगा से पूरी बातचीत करके। इसके अलावा कोई चीज रह गई हो तो आप जरूर वेलकम है, बताइए।
0: सर, ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे और आयुर्वेद के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको बताते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने कनेक्ट किया, और थैंक यू सो मच सर।
1: बहुत अच्छा लगा हमें भी, और ऑलवेज आपका वेलकम है, हमेशा स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए नई नई जानकारी जो आयुर्वेद में होती है, क्योंकि आज का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जानकारी आयुर्वेद के बारे में है। हम अलग अलग रोगों पे, अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करेंगे, और उसमें के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप इस मंच पर आई और हमारे श्रोताओं को अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से लाभान्वित किया, उसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी, तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान।
4: टल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज, आपकी पहचान। भक्ति धारा स्पेशल में आज कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल भजन लेके आई हैं नागपुर महाराष्ट्र की साक्षी मेंढकर। आपकी आवाज, आपकी पहचान का ये मंच, और वेलकम है साक्षी का भजन के साथ।

सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरे ये प्रियतम मेरे, और तीसरा सपनों में आना सच में ये बहाना हो गया। और इस अफसाने को सुना रही थी हमारी आज की सुरीली सिंगर नागपुर महाराष्ट्र से साक्षी मेडकर। आइए सुनते हैं साक्षी का अगला भजन।

श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। और हम तो ये कहेंगे कि मेरी उम्र बीत गई और आप आन बसो मेरे तन मन में। आप सुन रहे हैं विशेष स्पेशल प्रोग्राम भक्ति भावधारा, कृष्ण भक्ति स्पेशल प्रोग्राम जन्माष्टमी के अवसर पर। और गा रही हैं इस मंच की सुरीली सिंगर साक्षी मेंढकर नागपुर से। आइए सुनते हैं। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर जाती है। और साक्षी कह रही है तो ये स्वयं साक्षी है, हम क्या कहें, क्योंकि साक्षी का और साक्ष्य का प्रमाण कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही चीज।

के दर पे आके किस्मत संवर जाती है, उसी का नाम तो कृष्णा है, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को हम माधव माखन चोर कहते हैं, और ये भी कहते हैं जो साक्षी कह रही है।

राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, और हम कहेंगे कि साक्षी इस मंच से ढूंढ रही है श्याम को, और हम उस शाम का, उस रात का, उस अंधेरी रात का इंतजार कर रहे हैं शाम को देखने के लिए, जो आएंगे और खुशियां हर हाल लेके आएंगे। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। राधे, कौन से पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे घर आते हैं, तुझसे बतियाते हैं, और आज हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक पल एक क्षण हमारी ओर भी देखेंगे श्री कृष्णा। साक्षी मंडेकर का

राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। और साक्षी मंडेकर हर जन्माष्टमी को इस मंच से रोज भजन सुनाते हैं। तो हम साक्षी को कहेंगे यूं ही गाते रहिए, सुरीले भजनों की सौगात यूं ही लाते रहिए। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम रामचंद्र भजे। साक्षी मेंढेकर की आवाज नागपुर से जन्माष्टमी स्पेशल में हमारे संघ हमारे साथ जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

राम नारायणम जानकी वल्लभम। आपने सुना साक्षी मेंढकर को, और आइए सुनते हैं एक बार फिर अच्युतम केशवम।

साक्षी मेंढकर की आवाज में ये आरती उस कृष्ण को समर्पित जिसका हम इंतजार कर रहे हैं।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं अमेरिका सियाटल से समृद्धि चतुर्वेदी।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से मैं समृद्धि चतुर्वेदी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम जो कि है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब श्रृंखला की छठी कड़ी में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है तारीफों के पुल का सफर। आज का हमारा जो ये सफर है थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक प्रेम कहानी को उसके अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, आज हम सिर्फ एक चीज सुनेंगे, तारीफ, वो भी गीतों के जरिए और गीतों में सवालों के जरिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, तारीफ करने का अंदाज भी तो समय के साथ बदलता है। पुराने जमाने का आशिक थोड़ा झिझकता था, शब्दों में नरमी थी, इशारों में अदब था और शायद दिल में यह डर कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। पहले महबूब की खूबसूरती को देखकर सीधे कह देना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, शायद कुछ ज्यादा बेबाकी समझी जाती थी। इसीलिए चांद का सहारा लिया जाता, फूलों की मिसाल दी जाती और कभी कभी तो इजाजत लेकर तारीफ करने की कोशिश होती थी। लेकिन वक्त बदला और आशिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, शायरी थोड़ी कम संकोची हुई, तारीफ थोड़ी ज्यादा सीधी हुई और फिर एक इजाजत क्यों मांगे, तारीफ ही तो करनी है। तो आज हम सुनेंगे करीब चार दशकों में हिंदी फिल्मी गीतों में

में तारीफ, तहजीब, तकरार और कॉन्फिडेंस का यह सफर। और हाँ, इस एपिसोड में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी बनता है। जो मेरे श्रोतागण हैं, वो मेरे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के प्यार को से तो अब तक वाकिफ हो चुके होंगे। तो आज के जो हमारे गीत हैं, तारीफ का मामला है तो अक्सर ये होता है कि हीरो हीरोइन की तारीफ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो गाने हैं वो है मेल वॉइसेस में। लेकिन मेरा आज का मामला थोड़ा सीरियस है, मेरा दिल भी थोड़ा मचल गया है। और भले ही ये ओरिजिनल गाने मेल वॉइसेस में हैं, मगर मैं कुछ गानों को गाने से रोक नहीं पाई। तो आज के सफर में जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे गानों में, उसे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की कमी नहीं, पुराने गीतों के लिए मेरी मोहब्बत समझिएगा। और शुरुआत करेंगे 1940 से, उस दौर से जब कुंदन लाल सहगल की आवाज हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग जादू रखती थी। सहगल साहब उस दौर के उन कलाकारों में थे जिनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं था, आवाज में अभिनय भी था और अभिनय में गायकी भी। और पहला सवाल भी कितना संकोची है, मैं क्या जानू क्या जादू है और मैं यह मौका कैसे छोड़ देती। यह मेरे लिए उन ऑल टाइम क्लासिक्स में से है जिन्हें गाने का मन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इस बार किसी एक की आवाज भी नहीं, क्योंकि ये गाना मेरा भी प्रिय है और मेरे पिताश्री, जो कि अक्सर मेरा साथ देते हैं गानों में, श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी जी, उनका भी प्रिय है। तो हम दोनों का ही गाने का मन मचल रहा था, तो मैंने बोला कि हम इस गाने को एज अ डुएट लेकर जाएंगे। तो आइए उसी पुराने अंदाजे मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। यह गाना फिल्म जिंदगी का है जो कि 1940 में रिलीज हुई थी। इसके गायक KL सहगल, गीतकार केदार शर्मा और संगीत पंकज मलिक का है। तो आइए इस छोटे सी श्रद्धांजलि इस अमर गीत को

इस गीत के साथ मेरी एक खास बात है। यह उन गीतों में से है जिन्हें मैं सिर्फ सुनना नहीं बल्कि गाना भी चाहती हूँ। पर फिर वही बात है, ओरिजिनली ये मेल वॉइस की और मेरा और मेरे पिताजी दोनों का ही फेवरेट सॉन्ग है। तो इस बार मैं जरा पीछे हट गई कि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी मेरे पिताजी के साथ भी और उससे भी ज्यादा मेरे श्रोताओं के साथ अगर मैंने ये गाना अकेले ही गा दिया और आप मेरे पिताश्री यानी कि पंकज जी की आवाज से आवाज नहीं सुन पाए इस गाने में, क्योंकि वह बखूबी निभाते हैं इस गाने को। तो आज सुनते हैं उनका वर्जन। लेकिन एक कन्फेशन है, मुझे यह गीत इतना पसंद है कि मैं इसे यूं ही छोड़ने वाली तो हूं नहीं। तो अगले किसी एपिसोड में जहां यह फिट बैठेगा, मैं यह गाना दोबारा फीमेल वर्जन में लेकर आऊंगी, यानी कि अपनी आवाज में, अपने अंदाज में। क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार गाकर और सुनकर मन नहीं भरता। तो आइए सुनते हैं अब क्या

सिर्फ 2 साल बाद आशिक की भाषा कितनी बदल जाती है। अब मिसालों की जरूरत नहीं, अब सीधे सवाल है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि तुम तो खूबसूरत हो ही और तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले की क्या तारीफ करूं। तो यहाँ शरारत भी आ गई है और आत्मविश्वास भी। हमारा अगला गीत कश्मीर की कली फिल्म का, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत OP नैयर साहब ने दिया है। और यहाँ एक मजेदार बात है, रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वो तारीफ शब्द को भी अभिनय कर रहे हैं। हर बार वही शब्द, लेकिन हर बार

0: अलग अंदाज। शम्मी कपूर और रफी साहब की यह जोड़ी उस दौर के नए बेफिक्र और बेहद कॉन्फिडेंट रोमांटिक हीरो की पहचान बन चुकी थी। तो अब इजाजत मांगने वाला आशिक कहाँ गया? वो अब सामने खड़ा है और खुल कर कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और खुल कर रहा हूँ। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें।

अब यहाँ से अंदाज बिल्कुल बदल गया। 1940 का आशिक था संकोची, 1962 का आशिक था काव्यात्मक और 1964 तक आते आते पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन इसी दौर में एक और तरह की तारीफ सुनाई देती है। अब सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं है, अब बात होती है नूर की, निगाहों की, मौजूदगी की, और भाषा में अभी भी एक अदब बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपके तुम तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है। अगला गीत हमारा मूवी है बहारें फिर भी आएंगी, वर्ष 1966। गायक है मोहम्मद रफी साहब, गीतकार अनजान और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत में तारीफ में शरारत कम और नजाकत ज्यादा है और इस फिल्म का संगीत भी अपने आप में दिलचस्प कहानी रखता है। शुरुआत में एसडी बर्मन साहब संगीत दे रहे थे लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद ओपी नैयर जी ने संगीत संभाला। सुनते हैं

और अब जरा 1975 तक चलते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगता है कि हिंदी फिल्मों का आशिक आखिरकार फॉर्मेलिटीज छोड़ चुका है। ना चांद चाहिए, ना गुलाब, ना पूरी कायनात को गवाह बनाने की जरूरत है। बस सामने देखकर कह दिया, क्या खूब लगती हो। यह है मूवी धर्मात्मा का बहुत ही फेमस गाना। 1975 में रिलीज हुई थी यह मूवी। इसके गायक मुकेश और कंचन, गीतकार इंदीवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ है। और अब एक बहुत प्यारा बदलाव देखिए। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। वह कहता है, क्या खूब लगती हो, और सामने से जवाब आता है, फिर से कहो, कहते रहो। यानी अब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ दिया नहीं जा रहा, मांगा भी जा रहा है। सुनते हैं हमारी आवाजों में, जो कि ओरिजिनली मुकेश और कंचन ने गाया था।

अब चलते हैं 1985 की तरफ। इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी पोएट्री नहीं मरी है, वो वापस आती है, लेकिन नए संगीत और नए अंदाज के साथ। और सवाल वही पुराना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारी तुलना किससे करूं? बट इस बार जवाब में चांद है। चेहरा है या चांद खिला है, ये बहुत ही फेमस गाना फिल्म सागर का है, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। किशोर कुमार की के बहुत ही फेमस गानों में से एक है ये। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। 1985 आते आते हिंदी फिल्मों का संगीत की ध्वनि बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन देखिए इतने सालों के बाद भी शायर की हालत वही है। चेहरा देखकर फिर वही सवाल, चेहरा है या चांद खिला है। फर्क बस इतना है कि अब आशिक उतना संकोची नहीं है, वह सवाल भी करता है, तारीफ भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। तो आइए सुनते हैं यह गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे तारीफ बयां, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी सियाटल अमेरिका से स्मृति चतुर्वेदी, और इसमें शामिल गीतों को गा रहे थे पंकज चतुर्वेदी और स्मृति चतुर्वेदी। आज का ये सुरीला आयोजन यहीं तक, अनुमति दें, नमस्कार।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रकृति ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, उसी के साथ ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए हैं जिनसे हम जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही धन है, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा उल, आपका वेलकम है, स्वागत है इस खास प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर।
0: हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे डॉक्टर काजोल जो है वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, और आयुर्वेदा जो है वो क्या होता है, और आप आयुर्वेदा की डॉक्टर बनी हैं, तो उसके आगे MBBS लगता है या कुछ और डिग्री लगती है, क्या होता होगा उसमें और किस तरह से इस प्रक्रिया से गुजरना होता है जब आयुर्वेद का डॉक्टर कोई बनना चाहता है।
1: सर, BMS 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे कि MBBS होता है वैसे ही BMS का कोर्स होता है। पर BMS और MBBS दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं। BMS में हम आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं, और MBBS जो है वो अलग ही मेडिकल ब्रांच का अलग ही एक फील्ड है।
0: डिफरेंस कैसे करेंगे इसमें, क्या डिफरेंस है कि
1: सर? डिफरेंस जो हम स्टडी करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, और कोर्स जो होता है उसमें हमें थोड़ा बहुत MBBS में जो पढ़ाई होती है वो भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आयुर्वेद और शास्त्रों के बारे में भी हमें बताया जाता है, और हमें शास्त्रों के आधार पर ही फिर चिकित्सा करनी होती है आगे चल के।
0: यानी मोटे तौर पे हम समझें तो शास्त्रों पे आधारित जो मानव शरीर की संरचना है उसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, इसी तरह की बात पढ़ाई जाती होगी ना, क्योंकि अलग है एलोपैथिक से आयुर्वेदा जो है।
1: हाँ बिल्कुल सर, जो आयुर्वेदा कोर्स है उसमें हमें बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी शरीर के बारे में पढ़ना होता है। वो किसी भी मेडिकल ब्रांच में कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल में एंटर करता है तो उसको पढ़ना ही होता है, चाहे BDS डॉक्टर हो, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर हो। पर उसमें विशेषता ये हो जाती है कि वो एक अलग स्पेशलिटी बन जाता है। आयुर्वेदा अपनी अलग स्पेशलिटी है, होम्योपैथिक अपनी अलग स्पेशलिटी है, और डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अलग एक स्पेशलिटी है।
0: जब हम आयुर्वेदा शब्द को सुनते हैं तो हमें बोध होता है कि जैसे वेदों के बारे में बताया जाता है ना, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसी तरह से इसका वेद के साथ कोई ताल्लुक है या प्रकृति के साथ या हमारे शास्त्रों के साथ कोई उसका संबंध है?
1: जी बिल्कुल सर, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है, और शास्त्रों का इसमें पूरा का पूरा मतलब इसको हिस्सा माना जा सकता है। और इसमें हमें पूरे जो अथर्ववेद है उसमें शरीर के बारे में, उसको कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में, और क्या आपका खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, और वो जिस खंड में बताया गया है उसी को आयुर्वेद नाम दिया गया है।
0: बहुत अच्छी बात के हमने जो पारंपरिक तौर से और हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए उन्हीं अनुभवों को हम संचित करके और उसके आधार पर चिकित्सा जो है वो की जाती है। डॉक्टर काजोल हमारे साथ हैं, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप BAMS हैं, जैसे MS होते हैं या MBBS होते हैं उसी तरह से BAMS होता है, और ये कोर्स और इस प्रक्रिया से कैसे गुजरा जाता है, कैसे यदि कोई हमारा सुनने वाला श्रोता है वो आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहे तो उसको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना हो?
1: सर, सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है उनको 12th में PCB ऑप्ट करना पड़ता है, और जिनके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहता है वो लोग आगे चल करके डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो। और उसके बाद आजकल नीट का एग्जाम दिया जाता है। नीट के एग्जाम के जो जो अंक होते हैं उसके हिसाब से ही बीएमएस ऑप्शन बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस करने के बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, एमडीएमएस का कोर्स भी होता है, जिसके लिए फिर पीजी का एग्जाम देना होता है और पीजी करके फिर वो जो भी ब्रांच, जैसे एमबीबीएस में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, गायनेक यानी कि फीमेल स्त्री प्रसूति रोग वाले अलग होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिनका बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं और फिर उसमें पीजी मास्टर डिग्री कर सकते हैं और उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद यदि बीएएमएस कर लिया, आयुर्वेद के
1: जी
0: डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद भी क्या ऐसा होता है कि एमबीबीएस के बाद जैसे एमडी होती है या विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि ये हार्ट रोग के लिए है, ये जो है मानसिक रोगों
1: जी
0: के लिए, इसमें भी होता है?
1: बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनका जैसे नाम है हमारी मेडिसिन ब्रांच को हम बोलते हैं काय चिकित्सा, और पीडिया जो है उसको बाल बाल रोग कहा जाता है, सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोला जाता है, गायनेक को स्त्री प्रसूति रोग चिकित्सा बोला जाता है, ईएनटी जितना भी मतलब स्पेशलाइजेशन है उसमें उसको शलाक्य कहा जाता है, और पैथोलॉजी को रोग निदान बताया जाता है, और एनाटॉमी अपनी अलग से एनाटॉमी की ब्रांच होती है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है। अभी रिसेंटली जो है ये मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जो कि पीजी करने के बाद यानी कि एमडीएमएस करने के बाद एक पर्टिकुलर जो विभाग होता है उसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो भी आयुर्वेद में अब स्टार्ट हो गया है।
0: इसके बाद जब स्पेशलाइजेशन हो जाए, बीएएमएस हो गया, तो जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी है जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या क्या?
1: बीएमएस कंप्लीट करने के बाद या तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी नर्सिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बीएमएस के साथ साथ आपने पीजी किया है यानी कि एमडीएमएस किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो आप खुद का अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट मेडिकल ऑफिसर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, वो दे करके आप मेडिकल ऑफिसर स्टेट में बन सकते हैं, या किसी डीन यूनिवर्सिटी के डीन भी बन सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा रिसर्च में भी, रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके थ्रू, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू दे करके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं।
0: आयुर्वेदा और आयुर्वेद में डॉक्टर बनना, ये केवल भारतीय पद्धति है, यानी इंडियन मेडिसिन के उपचार की पद्धति है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में, अब्रोड में भी इसको अपनाया गया है, या इसके आधार पर कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है, या इसकी प्रक्रिया को, इससे उपचार किया जाता है दूसरे देशों में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
1: सर बिल्कुल, बाहर के देशों में भी आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है, और अलग अलग जैसे वहां पे भी क्लिनिक्स हैं, वहां पे आप अगर आपने पीजी किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप वहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड है कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहां का आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आप वहां पे भी एज आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं सर।
0: डॉक्टर काजोल, इसमें क्या जैसे सर्जरी के लिए एलोपैथिक में जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं,
1: जी
0: उसी तरह से इसके भी ओटी होते हैं क्या?
1: हाँ बिल्कुल सर, जैसे सर्जरी एलोपैथिक में होती है वैसे ही सर्जरी की प्रॉपर स्टडी ट्रेनिंग पूरा कैडेवर पे जो एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है वो सब चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी कराया जाता है। बल्कि आप स्पेशलाइजेशन करें या ना करें, पर फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तभी आपको एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कैडेवर पर स्टडी करना ही पड़ता है, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा पीजी जब आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाया जाता है, पूरा प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में जैसे सेटअप होता है वैसा ही सेटअप होता है, और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट स्कैपल ब्लेड सब कुछ यूज होता है वो सब चीजें आयुर्वेद में भी जब हम सर्जरी करते हैं तो यूज होती हैं, सेम वही सब कुछ ट्रेनिंग की दी जाती है सर।
0: डॉक्टर काजोल ने क्या सोच के इस फील्ड को अपनाया? कौन सी संभावनाएं आपको नजर आई?
1: सर आयुर्वेद के बारे में पहले इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, और 2015 में हमारा आयुष मिनिस्ट्री बना, और मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला और बहुत ज्यादा लोगों में उसकी वो चर्चा में आया। और उसी दौरान मेरा भी एडमिशन 2015 में बीएमएस में हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे जा करके आयुर्वेदा को ही ऑप्ट करके आगे जा करके लोगों के लिए इसमें मतलब आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के काम करना है और लोगों की मदद करनी है।
0: तो आप अब तो जॉब में आ गई, तो किस तरह से आप मदद करती हैं, और क्या आपने जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और करना चाहती हैं आगे इसी फील्ड में, या कहीं कोई फील्ड बदलना चाहती हैं?
1: नहीं, सर फील्ड तो बिल्कुल नहीं बदलना है सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के लिए चुना, और हम आयुर्वेद का एक हिस्सा बने और लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बता पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता। और यही फील्ड में मैं आगे और अच्छा करना चाहती हूँ, मैं लोगों को गाइड करते रहना चाहती हूँ कॉन्स्टेंटली, जैसे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं लोगों को गाइड करूँ, उनकी मदद करूँ कि वो आयुर्वेदा को ऑप्ट करें और अपना जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कई चीजें होती हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में अच्छा है, कई चीजें ऐसी हैं जिनका आयुर्वेद में अच्छा है, कई चीजें हैं जिसमें अदर जो पैथीज हैं जैसे होम्योपैथी है उनमें ट्रीटमेंट अच्छा है, तो लोग गलत दिशा में ना जाएं, उनको सही मार्गदर्शन मिले टाइम से ताकि उनको जल्दी वो हील कर पाए और कष्ट कम से कम सहन कर पाए। यही मैं चाहती हूँ कि यही हम लोग उनकी मदद कर पाए इसके थ्रू।
0: हमारे जो यूथ हैं वो यदि BAMS आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगी आप कि किस तरह से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकती हैं, बन सकते हैं?
1: मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, फिर भी वो एमबीबीएस के ही को ही करना चाहते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप एक बार दीजिए, आप 2 बार भी दे दीजिए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट देने पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है एमबीबीएस, तो आप बिल्कुल बीएमएस होम्योपैथी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पैथी छोटी बड़ी नहीं होती है, आपको लाइफ अपने आप कैसे आप उसको आगे बढ़ करके कैसे उसमें अच्छे से काम करते हैं, क्या आपने जो सीखा उससे उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और आप चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने एमबीबीएस किया है तो ही आप आगे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे, अगर आप बीएमएस भी ऑप्ट करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है जो एमबीबीएस कर रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपकी कैपेबिलिटीज, आपके जो आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकल आपका, क्योंकि आप डॉक्टर हैं आपको फील्ड में उतरना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अपने आप को जितना आप प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेजेबल बना सकते हैं बनाइए। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, अभी से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालिए। भले ही आप अभी कोई मतलब एमबीबीएस या बीएमएस कुछ आपने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का और जो भी अपडेट हो रहा है उन चीजों के बारे में अपडेटेड रहने का आपका होना चाहिए, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का।
0: जो बहुत सारे एज फैक्टर होते हैं, आयु, आयुर्वेद में भी हम एज के हिसाब से उसका उपचार करते हैं। एक बच्चा है, एक प्रौढ़ है, एक युवा है, और एक जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उस तरह के उपचार के लिए, और जैसे सीनियर सिटीजन है, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे कि आयुर्वेद आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना काम?
1: सर बच्चों की अगर बात करें तो मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन की आदत ना डालें। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए वो एकदम से ऑप्ट करते हैं। छोटा सा अगर खांसी जुकाम भी हो रहा है तो कफ सिरप या फिर पीसीएम डोलो ऐसी मेडिसिन बच्चों को खिलाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है। फिर आगे चल करके लाइफ में उनको जब कोई आगे चल करके प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में मेडिसिन्स उनके ऊपर।
0: बिल्कुल, ये जमाना हम जी रहे हैं जिस युग में, वो इंस्टेंट वाला है और
1: जी
0: सबको इंस्टेंट चाहिए होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ठीक होना, जल्दी से जल्दी रील्स भी देखते हैं तो फिल्में देखने बंद कर दी और रील्स पे आ गए, तो सबसे कम समय में उपचार भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो सके और अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आयु को, अपने ज्ञान को बढ़ा सके।
1: सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करके रखनी है। अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और टाइम से खाना खाइए, टाइम पे सोइए, अपना जो दिनचर्या है आपका उसको अच्छे से अनुशासित रूप में रखिए, और बाहर का कम से कम खाइए, और योगा मेडिटेशन इन चीजों के ऊपर बच्चों को बचपन से ही आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा वो खेलें कूदें। आजकल ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर घर में रहते हैं, बाहर अकेले नहीं जाते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उनका इम्यूनिटी भी बिल्डअप नहीं होता है, ना ही उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को तो खेलने के लिए भी देना चाहिए और अच्छा खाने के लिए भी देना चाहिए, और उनके मेनली फोकस करना चाहिए कि इम्यूनिटी अच्छी हो, और उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे विंटर्स में स्वर्ण ये चवप्राश का प्रयोग करना, और छोटे बच्चे जो हैं उनको स्वर्ण बिंदु प्राशन किया जाता है आयुर्वेद में, उस कार्यक्रम को भी वो करवा सकते हैं। और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं और उसकी वजह से वो कमजोर है या उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको खाने के अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी ही बच्चा खाए, कैसे ना कैसे करके उनको पूर्णतः पोषण युक्त आहार उनको देने का प्रयास करना चाहिए।
0: जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या सलाह देंगी आप?
1: सीनियर सिटीजन्स को मैं यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी जो मनोबल है उसको बिल्कुल बना के रखिए, और कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, और बाकी ये कि अपना जो दिनचर्या है उसको अच्छा अनुशासित रूप में रखिए, और सद्वित का पालन कीजिए, और ध्यान पूजा पाठ आदि का भी मतलब अपने जीवन में उसका उपयोग करें, और यही मैं उनको सलाह दूंगी।
0: तो पूजा पाठ करती हैं, ध्यान करती हैं, योग प्राणायाम कुछ ऐसा
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: करती हैं
1: हाँ बिल्कुल
0: जो
1: जरूर
0: हमारे सुनने वालों के लिए भी एक नजीर बन सके?
1: सर, बिल्कुल मैं डेली योगा करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि योग और जो पूजा पाठ करते हैं उससे मानसिक जो आपका शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है, वो बढ़ती है। तो इसीलिए बिल्कुल आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और सत्व गुण आपके शरीर में बढ़ता है, और सत्व गुण जिनका अच्छा रहता है उन्हें किसी भी प्रकार से रोग नहीं होता है, यदि रोग हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी उससे रिकवरी कर लेते हैं, हो जाते हैं।
0: तो हमारे सुनने वालों ने सुना होगा कि सत्वगुण बढ़ाना है आपको, रजोगुण और तमोगुण से तो बिल्कुल दूर रहना, और यही कह रही हैं। और कुल मिला के यदि हम आयुर्वेदा के निष्कर्ष पे जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा जो है भारतीय जीवन पद्धति है, किस तरह से एक लाइफस्टाइल है कि हम किस तरह से जिंदा रहें, किस तरह से स्वस्थ रहें और सबसे स्वस्थ रहें, और प्रकृति से हम किस तरह से जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है, वनस्पति दी है, हवा दिया है, पानी दिया है, तो इन सब चीजों का हम सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। इतनी बात डॉक्टर काजोल से हमारी हुई है, उसका जो सार है वो निकल के यही आता है। डॉक्टर काजोल, आप कुछ गाती भी हैं, गाना वाना, फिल्में देखती हैं, बॉलीवुड सॉन्ग गाती हैं, भजन गाती हैं, क्या गाती हैं, क्या सुनाएंगे आप हमें?
1: सर भजन मैं गा लेती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ गा लेती हूँ मैं भजन।
0: हाँ, दुलाई नहीं, हम जरूर सुनेंगे, भजन
1: जी,
0: हो चाहे सॉन्ग हो, कुछ भी हो जो आपको सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है वो भी यदि आप सुनाएं तो भी अच्छा लगेगा हमें।
1: अच्छा सर मैं कृष्ण भगवान का भजन गाऊंगी, सिर्फ दो ही लाइन में गाऊंगी। हाँ अच्छा।

0: कृष्ण
1: राम नारायणम
0: बहुत
1: जानकी वल्लभम।
0: सुंदर, बहुत ही ग्रेट
1: थैंक यू सर।
0: कृष्ण है। कृष्ण जो प्रकृति को अपनी बांसुरी से वश में कर लेते हैं और पूरी की पूरी दुनिया उसके वश में है, उसके आकर्षण में है। और हम आयुर्वेद के आकर्षण में रहे, डॉक्टर काजोल शायद हमें यही कह रही हैं, यही सीख दे रही हैं कि हमें जीवन, हम जीते तो हैं लेकिन जीवन जीने की कला में पूरी तरह से नहीं आती, और सीखते सीखते जीते जीते हम बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें होश आता है कि हमने पहले ऐसे क्यों नहीं किया। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे आयुर्वेद में ऐसी पद्धतियां, ऐसी चीजें हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सरल और सुगम के साथ साथ रोग मुक्त बना सकते हैं। तो डॉक्टर काजोल, बहुत अच्छा लगा से पूरी बातचीत करके। इसके अलावा कोई चीज रह गई हो तो आप जरूर वेलकम है, बताइए।
1: सर, ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे और आयुर्वेद के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको बताते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने कनेक्ट किया, और थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत अच्छा लगा हमें भी, और ऑलवेज आपका वेलकम है, हमेशा स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए आप नई नई जानकारी जो आयुर्वेद में होती है, क्योंकि आज का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जानकारी आयुर्वेद के बारे में है। हम अलग अलग रोगों पे, अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करेंगे, और उसमें के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप इस मंच पर आई और हमारे श्रोताओं को अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से लाभान्वित किया, उसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। आपकी आवाज, आपकी पहचान और आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं रांची झारखंड के ओम नर्सरिया। वेलकम है, स्वागत है ओम प्रकाश नर्सरिया का इस खास प्रोग्राम में। और पूछ रहे हैं चांद से, और चांद क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और चांद की बात को पहचान लेते हैं। आओ करें चांद से चांद की बातें। चांद हमारे संग हो फिर भी होती रहती है ऐसी मुलाकातें।

मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार से। और ये हसीन गीत हमें सुना रहे थे ओम नर्सरिया, आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला सॉन्ग, दर्द की आवाज और दर्द भरा गीत गा रहे हैं रांची झारखंड के ओम नर्सरिया।

0: ओम नर्सरिया झारखंड रांची से हमारे संग हमारे साथ।
1: आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते दोस्त, मुस्कुराओ।

0: क्या समझे, कुछ समझे,
1: बिल्कुल समझे
0: पहुंच डालें
1: और बहुत ही खूब समझे, पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। और ये खूबसूरत गीत आज के कलाकार, हमारे आज के सुरीले मेहमान रफी साहब का ये गीत गा रहे थे, ओम नरसरिया झारखंड रांची से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए सुनते हैं ओम नरसरिया का ये अगला सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं ओम नर्सरिया और सोनिया सालिग्राम की आवाज। सोनिया साथ दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया से ओम नर्सरिया का।

हम नहीं कहेंगे शब्बा खैर ओम नर्सरिया को, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज और इतने ही सुरीले गीत लेके आए हैं तो कैसे कहेंगे भला। एक गीत तो आपको और ही सुनाना पड़ेगा, और वो गीत जो हजार राहें मुड़ के देखी, गा रहे हैं ओम नर्सरिया और साथ दे रही हैं प्रिया माहेश्वरी चेन्नई से। आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: बेवफाई भी थी तो वफा से वफा।
1: हमारी थोड़ी सी बेवफाई, और ये सुरीला सॉन्ग आपने सुना, दोगाना सुना आपने। प्रिया माहेश्वरी साथ दे रही थी ओम नर्सरिया का चेन्नई से, और आइए अब आ गई हैं प्रज्वला ओम नर्सरिया का साथ देने इस नटखट से गीत में।
0: हेलो विजया, हेलो डियर।

0: आपने सुना सुरीला दुगाना, आवाजें रही ओम नर्सरिया के साथ प्रज्वला प्रिया की।
1: नमस्कार, भक्ति प्रभा समूह की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सर्वविदित है और पुराणों में भी अंकित है कि परमात्मा ने मनुष्यों की रचना तो बाद में की, लेकिन उससे पूर्व मुक्ति के मार्ग रच दिए। मुक्ति के मार्ग यानी पूजा, अर्चना, भजन। जी हाँ, आज का हमारा कार्यक्रम उसी परमपिता ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित है। सुखकर्ता, दुखहर्ता, प्रथम पूजनीय गजानन। जी हाँ, गणेश जी हिंदू धर्म के आराध्य देव हैं, जिन्हें गौरीपुत्र गणेश के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी शुभ काम करने से पहले हम गजानन को मनाते हैं। तो चलिए, बुला रही हूँ संजय हारने जी को गणपति बाप्पा को मनाने, रिझाने और लुभाने के लिए।

संजय हारने जी द्वारा गणपति बप्पा की स्तुति। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती। सरस्वती माँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी मानी जाती है। अज्ञानता के घोर अंधकार में ज्ञान का प्रकाश माँ की कृपा से ही संभव है। प्रस्तुत है संजय फड़के जी के द्वारा माँ सरस्वती जी की स्तुति।

ये थी भक्तिमय प्रस्तुति संजय फड़के जी के द्वारा। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, वासुदेव, मुरली मनोहर कृष्णा, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ विष्णु जी के आठवें अवतार कन्हैया की। कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए चारुल कान्हा को बोल रही हैं, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्णा।

कान्हा का ये मनमोहक भजन अपनी आवाज से सजाया चारुल ने। आज की इस वैश्विक बीमारी के चलते मानवता का अस्तित्व खतरे में है। इतिहास गवाह है, जब भी विपदा आई है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगली पेशकश ईश्वर से प्रार्थना कि वो अपनी असीम शक्ति से दुनिया को इस महामारी से छुटकारा दिलाए। सचिन नागकर्णी गुहार कर रहे हैं ईश्वर से, बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम।

बेहद सुरीली प्रस्तुति सचिन नाथकर्णी जी के द्वारा। दोस्तों, भगवान से लौ लग गई तो आत्मा परमात्मा में लीन सी हो जाती है। आकाश की ऊंचाइयां या फिर सागर की गहराइयां प्रेम और भक्ति के आगे मानो छोटी सी हो जाती हैं, और फिर सिर्फ सुमिरन ही दिखता है। क्या सुबह क्या शाम, ऐसा ही कुछ भजन लेकर आ रही है रमा।

बेहद लुभावनी प्रस्तुति रमा वी जी के द्वारा। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव हैं शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई आरंभ, न कोई ओर है, न कोई छोर, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। शिव की महिमा के गुणगान करने आ रही हैं दीपा जी।

0: ईश वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और करीब ले जाने का एक खूबसूरत निश्चल प्रयास भक्ति प्रभा समूह की ओर से।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, अभिव्यक्ति का आंचल। और हमारे संग है, हमारे साथ हैं विनीता राहुरीकर।
1: नमस्ते आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। मेरा
0: साहित्यकार हैं आप, आज को लिखती है, बीते कल को कहती है और समय की साक्षी बनकर सच का बयान करती है। एक ऐसी कथाकार, उपन्यासकार, कवित्री और न जाने क्या क्या, लगभग प्रत्येक साहित्यिक विधा को आपने अपने शब्दों से आकार दिया है। आज हम वेलकम कर रहे हैं विनीता जी का, और अभिव्यक्ति का आंचल में आज हम बातचीत करेंगे विनीता जी से। जितना मैं जानता था उतना तो मैंने कह दिया, अब आप और श्रोता हैं और मैं भी सुनने वाला हूं, श्रोता ही, तो अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय जरूर दीजिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोपाल से हूँ और गृहिणी हूँ, लेकिन मन में बचपन से कुछ अभिव्यक्ति की छटपटाहट थी और अक्षर मुझे बहुत प्रभावित करते थे। जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था तब से मुझे अक्षर प्रभावित करते हैं। जब माँ मुझे बच्चों की किताब में से कहानी पढ़कर सुनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे वो कहानी ऐसी याद हो गई थी कि मैं पढ़ना नहीं आता था लेकिन उस लाइन पर रखकर बराबर वही लाइन दोहराती थी, तो माँ को भी बहुत आश्चर्य होता था। फिर पिताजी का मेरे विदेश में चयन हो गया, वो गणित के प्रोफेसर हैं, और हम सब लोग विदेश चले गए। जी, तो एक तरह से मतलब मेरा स्कूलिंग, जो प्राथमिक मेरी शिक्षा थी, वो रुक गई, लेकिन साथ में माँ पुस्तकें लेकर गई थी तो थोड़ा सा मुझे घर पर पढ़ाती रहती थी। और 9 बरस की उम्र में मुझे याद है जी कि मैं बहुत छोटी सी थी, भाई मेरा भारत में था, पिताजी कॉलेज गए हुए थे, माँ अपने काम में लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो पता नहीं कैसे मेरे हाथ में पेन आ गया और एक कोरे कागज पर मैंने ऐसी कुछ चित्र बनाए और एक चित्र कथा सी लिख दी, शायद वहीं से कुछ लेखन का बीज पड़ गया। तो इस तरह से वो खैर वो कागज भी खो गया, वो कहानी भी खो गई, लेकिन जो अभिव्यक्ति का बीज था वो शायद कहीं मन में दबा रह गया था। 2010 में,
0: बिल्कुल
1: जी, 2010 में पता नहीं क्यों मन से एक आवाज आई कि कुछ करना चाहिए। मैंने ऐसे ही अपने स्वांत सुखा एक कहानी लिख कर रखी थी
0: जी।
1: तो मेरे भाई ने पढ़ी और मेरी एक सहेली ने पढ़ी, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुम अच्छा लिखती हो, इसे कहीं भेज के देखो। तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि कोई पढ़ेगा तो, मतलब मैं किसी पत्रिका में भी भेजूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये क्या लिख के रखे
0: जी।
1: तो इस तरह से मैंने किसी तरह से उसको टाइप करवाया कहानी को, और फिर मैंने उस पत्रिका में भेज दिया और मैं भूल गई, मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई, लेकिन वो कहानी छप गई। और फिर इस तरह से एक मन में आत्मविश्वास आया, अभिव्यक्ति की इच्छा और बलवती हुई और इस तरह से ये यात्रा प्रारंभ हुई।
0: एक लेखक के रूप में आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, इसका यहाँ से शुरुआत मान सकते हैं हम। ऐसा लगा तुम कहीं आसपास ही हो, ऐसा लगा कि तुम कहीं आसपास ही हो, अभी अभी बासंती हवा का एक झोंका मुझे छू गया। आपने फेसबुक पे, शायद आपको याद आया होगा या नहीं आया,
1: जी,
0: ये पंक्ति आपने लिखी थी, और
1: जी,
0: उसके साथ जो आपने स्केच बनाया था वो बहुत खूबसूरत था। इन शब्दों को कहूं या उस स्केच को कहूं, वो दोनों ही मन में उतर रहे थे, और जिसका भी साहित्यिक मन हो या शायद कहीं ईश्वर से जुड़ी कोई प्रेरणा हो तो वो उसे पढ़ के सच में लगता है कि हाँ, कुछ बात तो है इस लेखन में, कुछ बात तो है इस चित्रांकन में।
1: जी।
0: तो हमें ऐसा लगा था। तो ये चित्रों के साथ लिखना, और बाल साहित्य भी आजकल आप बहुत लिख रही हैं और सामाजिक साहित्य भी लिख रही हैं, तो क्या क्या आप लिख लेती हैं और किस तरह से ये साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ी, उसको हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, तो मार्च 2010 में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद फिर मुझे एक पत्र मिला कि अपना फोन नंबर दीजिए पत्रिका की तरफ से। फिर मैंने उन्हें फोन नंबर भेजा। तब तक मुझे मेल वगैरह करना नहीं आता था, मैं टाइप करके
0: जी
1: बाय पोस्ट भेजती थी कहानी। जी, फिर उन्होंने मेरा फोन, और फिर जब उनका फोन आया संपादक का वहां से, तो उन्होंने, मतलब बहुत खुश थी मेरी कहानी पढ़कर कि अरे आप कहाँ थी अब तक, अभी इससे पहले क्यों नहीं मिली। तो वो उनकी जो खुशी थी मेरी रचना के ऊपर, तो वो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। तो कभी ऐसा भी होता है कि पत्रिकाओं में कहानियां चयनित नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा मन हताश भी हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन फिर भी, जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का एक आशीर्वाद सा लगता है कि ये लेखन मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। तो उसे और उनकी इच्छा है, तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी है। तो लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं लिखती रही हूं।
0: कहानी की बात हुई, कविताएं भी आप रचती हैं और इनकी शुरुआत तो आपने बताई, लेकिन जो बड़े स्तर की कहानी है और कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनका श्री गणेश कब हुआ, कब शुरुआत हुई उनकी?
1: जी, लगभग वही 2010-11 से शुरुआत हुई है। फिर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती गई। पहले मैं कहानियां और कविताएं ही लिखती थी।
0: जी
1: फिर 2015 में लघु कथा से मेरा

0: लघु कथाएं लिखना शुरू हुआ। फिर कुछ गोष्ठियों में, एक हैं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक आदरणीय महेश सक्सेना जी भोपाल में, उन्होंने मेरी कहानियां पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ों के लिए इतना अच्छा लिखती हो तो बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखती। मैंने कहा मैंने बच्चों की कहानियां कभी लिखी नहीं और कभी सोचा भी नहीं उस दृष्टि से। बोले नहीं तुम लिखो और मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा लिखोगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। ये बात है फरवरी 2016 की, और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में संस्था का एक वार्षिकोत्सव है, बोले उसमें किताब ले आओ। आप सोच सकते हैं कि जिसने कभी बच्चों की कहानी नहीं लिखी उसके लिए 2 महीने में कहानी लिखकर किताब भी ले आना,
1: ले आना
0: बोले
1: बिल्कुल,
0: हाँ बहुत असंभव सा काम था। लेकिन पता नहीं क्यों
1: वो प्रेरणा
0: मुझे
1: भी थी
0: इतनी
1: एक साथ
0: प्रेरणा
1: साथ में
0: मिली।
1: जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने न सिर्फ कहानियां लिखी, उनके चित्र भी बनाए और उसका आवरण चित्र भी बनाया। और वास्तव में अप्रैल के कार्यक्रम में पता नहीं कैसे लेकिन पुस्तक का विमोचन भी हो गया। तो इस तरह से बाल साहित्य की शुरुआत हुई, लिखने की, बच्चों के लिए लिखने की शुरुआत हुई।
1: ये कौन सी विधा है जो कुछ लिखा हुआ आपका वो सीधे दिल को छू जाता है, तो उसमें आप तो लिखती हैं, उसके साथ और कौन होता है जो आपको लिखवाता है?
0: हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब लिखने के बाद मेरी कहानी या कोई कविता कुछ भी रचना छपती है, जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने कैसे लिख लिया, कब लिख लिया। तो
1: बिल्कुल
0: ये तो लगता है कि जी बिल्कुल, कि जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई तो एक प्रेरणा है या कोई तो एक दिव्य शक्ति सी है जो मुझसे लिखवा लेती है,
1: भीतर बैठी हुई है जी।
0: भीतर बैठी हुई है जो बिल्कुल जब मैं लिखने बैठती हूँ तो बिल्कुल अपने आप के साथ या मेरे साथ वही दिव्य शक्ति होती है और कुछ भी नहीं होता, और उस समय ही कुछ लिखा जाता है। फिर मैं जब उठती हूँ लिखकर तो फिर मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे लिखती हूँ, तो कोई तो शक्ति है जो लिखवा लेती है मुझसे।
1: साइंस और विज्ञान कि शब्दावलियां जो है आपके उस कविताओं में रचनाओं में आता है, प्रेम प्यार विरह कही अनकही टीस जून की छुट्टियां, ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो आपके दिमाग के कोश में कहीं घर की हुई हैं, वो कहां से निकल के आ जाती है और कैसे लिखती हैं आप?
0: जहां तक विज्ञान का सवाल है, हाँ मेरी कहानियों में मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं विज्ञान की छात्रा रही हूँ। मैंने बॉटनी में MSc किया है और
1: बिल्कुल यही
0: प्लांट पैथोलॉजी और एयर माइक्रोफ्लोरा में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो
1: वेरी गुड
0: अपने विषय से मुझे बहुत प्यार था जी, बॉटनी से, मतलब जो विज्ञान विषय था उससे मुझे बहुत प्यार था। तो पढ़ाई मैंने उसी में की है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं विदेशों में भी इतने साल रही, दुनिया के 17-18 देशों में घूमी, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी से और अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार था, हिंदी भाषा से। मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरे घर में पूरे समय
1: जी।
0: बस मराठी में ही बात की जाती है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए मुझे हिंदी भाषा बहुत, मतलब एक अंदर से जो अभिव्यक्ति निकलती है वो हिंदी भाषा में ही निकलती, तो मुझे अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत प्रेम है।
1: बिल्कुल हम
0: तो
1: यही जानना चाह रहे थे कि साइंस और साहित्य का समागम कैसे हो गया।
0: ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साइंस मेरे जीवन में आने से पहले शायद साहित्य मेरे मन भीतर था, क्योंकि 8 या 9 साल की आयु में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, और चित्रांकन की भी शुरुआत लगभग वहीं से हुई कि माँ ने एक बार भाई की पुस्तक से यशोदा मैया का चित्र बनाया था, तो उनको चित्र बनाते देखकर मैं इतना प्रभावित हुई। तब तक मैंने कभी चित्र नहीं बनाया था, मैं बहुत छोटी सी थी, तो उनको चित्र बनाते देख मैं इतनी प्रभावित हुई कि उसके बाद बस पेन और कागज लेके मैं सारा दिन प्रयत्न करती रहती थी। मैं यशोदा मैया और कृष्णा का ही चित्र बनाती थी, और कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कहीं ना कहीं मेरी सारी कविताओं में, विशेषकर जो प्रेम कविताएं मैं लिखती हूँ, कहीं ना कहीं उसमें मेरे कान्हा जी की छवि होती है, या कहीं ना कहीं मन में उनके लिए ही एक भाव होता है, आप उसको भक्ति कहिए या प्रेम कहिए, तो कहीं ना कहीं कविताओं में वही अभिव्यक्ति पाता है।
1: बिल्कुल वो चित्र के साथ

0: जो सामंजस्य होता है ना, वो बड़ा अनूठा होता है, बड़ा दुर्लभ सा होता है। सबके साथ ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है। हम चाहें कि हमने ऐसी कविता लिख दी, फिर उसके लिए वो चित्रांकन चाहिए जो आप करती हैं, वो अपने आप में एक अनुपम है, अद्भुत है। और वो कैसे हो पाता है, कई बार तो मुझे लगता है कि इसको मैं संजो के रख लूं, पर सब चीजों को संकलित कर पाना मुश्किल होता है। पर वो जो लिखा होता है वो अद्भुत होता है, अनुपम होता है। तो
1: धन्यवाद।
0: जो रचनाएं आप लिख रही हैं, तो उसमें आपके लेखन में जो 2010 और उससे पहले का जो प्रभाव है और उस समय का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वो, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे AI का युग कहने लगे हैं, वो साहित्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है, तो ऐसे में हम उसका समायोजन आप कैसे करती हैं और हमें कैसे करना चाहिए? आज के सब जो राइटर हैं, लिखने वाले हैं, उनके लिए एक नसीहत हो सकती है, एक प्रेरणा हो सकती है, तो आप इसके बारे में हमें जरूर बताइए।
1: जी देखिए, जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो हमारे सामने नए नए विषय आते हैं, नई नई सामाजिक परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ व्यक्ति भी बदलता है, समाज भी बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं। 2010 में जैसे हम रचनाएं में टाइप करवा कर और बाय पोस्ट भेजती थी, फिर व्हाट्सएप आया, फिर मेल आया, फिर मुझे मतलब टाइपिंग करना सीखा हमने, तो इस तरह से फिर इसी तरह से जब हम तकनीकी रूप में या इस परिवेश में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने और ज्यादा विषय खुलते जाते हैं कहानियों के और रचनाओं के लिए, अभिव्यक्ति के, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हमारे सामने आते हैं, तो उन सबका हमारे लेखन पर प्रभाव तो पड़ता है। पहले फेसबुक नहीं था, तो अब कहानियों में के विषय में हमको फेसबुक मिल गया है, जी मतलब मेल मिल गया है, उसके बाद में अभी जो बहुत करंट रूप से चल रहा है वो AI का जमाना है। कुछ लोग AI से रचनाएं लिखवा लेते हैं। मुझे लगता है कि आपकी रचना भले ही आप कम लिखो, लेकिन वो आपकी जो मन के भीतर की से आती है, जो आपकी मौलिक अभिव्यक्ति है, वो रचनाओं में आनी चाहिए।
0: उसकी बिल्कुल मौलिकता रहनी चाहिए, बची रहनी चाहिए,
1: मौलिकता रहनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप जो सोचते हो सारी परिस्थितियों को लेकर वो आपका अपना मौलिक दृष्टिकोण है, आपके मौलिक विचार हैं। मुझे याद आता है जब मैंने बिल्कुल नया नया लिखना शुरू किया था, तो उस समय जो बहुत प्रसिद्ध लेखिका कथाकार हैं देश की, मालती जोशी जी,
0: जी बिल्कुल,
1: जी जी, तो मैं उनसे मिलने गई थी, उनसे मार्गदर्शन लेने गई थी, तो उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि विनीता कम लिखना, भले ही एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने निकल जाए कि तुम कुछ लिख नहीं पाओ, लेकिन जब भी लिखना तो ऐसा लिखना जो सीधे तुम्हारे मन से आ रहा हो। जब तक बिल्कुल अंतर्मन से अभिव्यक्ति न आए तब तक मत लिखना, क्योंकि जो अंतर्मन से अभिव्यक्ति आएगी वही तुमको पहचान दिलाएगी या वही समाज में मतलब लोगों को भी मन तक पहुंचेगी। तो मुझे उनकी ये बात, उस बात ने बहुत प्रभावित किया।
0: बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे तो, वही ईश्वरीय अभिव्यक्ति है जो आपके द्वारा समाज में समय के साथ बह रही है।
1: बिल्कुल, तो बस ऐसे ही कि कोई बहुत लिख रहा है तो हम भी बहुत सारा लिखें या हर विषय पर लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लेखक को वही लिखना चाहिए जो बिल्कुल उसके अंतर्मन की अभिव्यक्ति है, तो वही उसको भी संतुष्टि देगी और वही पाठक के मन तक भी पहुंचेगी।
0: बिल्कुल, आपकी रचनाओं में ये चीज देखने को मिलती है कि आपने कहीं कोई जो है किसी का पीछा नहीं किया है, किसी की देखा देखी नहीं की है, एक अद्भुत मौलिकता जो होती है और जो है, जो देखा, जो सहा, जो महसूस किया, उसी सब चीजों को आपने अभिव्यक्ति का रूप स्वरूप आकार दिया, तो ये खास बात आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है और वही किसी लेखक की मौलिकता की पहचान बन सकती है, हो सकती है मेरे ख्याल में।
1: जी,
0: क्या सोचते हैं आप?
1: जी बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही जी।
0: एक कथाकार के रूप में उसको अपनी बात तो कहनी ही है, उसके साथ साथ उसे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने साथ रखना है और आसपास के लोगों के मन में छुपी बातों को कहना है, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो कविता रच रहा हो या किसी अन्य विधा में लिख रहा हो, तो क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ, और इसलिए मैं मतलब मुझे कहानी विधा में अपने आप को अभिव्यक्त करना बहुत सरल सहज लगता है। तो उस मतलब मैं अगर कोई कोई घटना है या कोई समस्या है या कोई उलझने हैं जैसे रिश्तों की या जीवन की, तो उसके लिए मैं यही प्रयत्न करती हूँ कि उसको एक मनोवैज्ञानिक रूप में पात्रों के माध्यम से कहानी में उसको अभिव्यक्त करके उसका कोई उस समस्या का कोई एक निदान दूं पाठकों को, या समाधान बिल्कुल जी उसका कोई समाधान प्रस्तुत करूं पाठकों को, या मैं ये प्रयत्न करती हूँ कि मेरी कहानियों में कोई एक अच्छा संदेश जाए। मैं इसका जरूर कोशिश करती हूँ कि कहानियों के माध्यम से समाज को या लोगों को एक अच्छा सा संदेश जाए, फिर उनके रिश्ते सुलझ जाएं या उनकी मन की कोई गांठ सुलझ जाए, उनके कोई किसी समस्या का समाधान उनको मिल जाए, तो मुझे वहां पर अपना लेखन सार्थक लगता है। एक घटना सुनाती हूँ आपको। मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई थी स्पर्श की भाषा
0: जी।
1: तो जी उसमें मैंने ये बताया था कि एक माँ है, वयोवृद्ध हो चुकी है, बच्चे अपने अपने दुनिया में है, तो बेटी मिलने जाती है। उस दिन बेटी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चलो एक माँ का हाथ पकड़ के उनके कंधे पर सिर रख दें, तो बेटी ऐसी पास बैठ जाती है, माँ का हाथ पकड़कर कंधे पर सिर रख देती है। वो उस बात को उतना महत्व नहीं देती, लेकिन दूसरे दिन माँ का फोन आता है। वो माँ बिल्कुल भीगे स्वर में वो कहती है कि बेटा तुमने कल मुझे मेरे पास बैठी, मुझे गले लगाया, मेरे कंधे पर सिर रखा। बोले मन को इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। तो बोले बहुत धन्यवाद। तो उसको लगता है कि अरे स्पर्श भी कितना
0: महत्वपूर्ण है। जरूरी
1: जी
0: है, बिल्कुल
1: जी। ये कहानी पढ़कर मुझे एक माँ का संदेश मिला फेसबुक पर कि विनीता जी बोले मैं भी ऐसी थी, लेकिन कल मेरी बेटी आई तो मतलब मैंने अपनी बेटी को पास बिठाया, उसका हाथ पकड़ा, उसको प्यार किया, तो बोले इतनी खुश हुई मेरी बेटी, बोले माँ आज तुमको क्या हो गया। और बोले फिर हम दोनों ने उस पल को बहुत मन से मतलब जिया, तो बोले हम दोनों माँ बेटी को इतना अच्छा पल देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल,
1: वो मुझे बहुत अच्छा,
0: वो जो स्पर्श होता है वो हम आशीर्वाद के रूप में बच्चों को या बड़ों से हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, देते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, तो वो जो है उसमें एक मनोवैज्ञानिक समझ तो है ही, उसके साथ कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि हम रोमांचित हो जाते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, हक करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो वो अपने आप में एक जरूरी प्रक्रिया है। हम उससे यदि दूर होते हैं तो हमारे संबंध, हमारे रिश्ते भी शायद दूर या ज्यादा नजदीक नहीं होते, दूरी बना लेते हैं शायद। मेरा सोचना तो यही है जी।
1: हाँ, और कहीं ना कहीं हम भी स्वयं में अकेले से होते चले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, किनारा किनारे पे हो जाते हैं एक दूसरे, एक दूसरे के छोर पे जाके हम एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन उनको महसूस नहीं कर सकते। महसूस हम तभी करेंगे जब हम बिल्कुल पास होंगे, आसपास होंगे। तो इस बात पे तो हम कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी कोई कविता, कोई रचना, कोई ऐसी विधा की बात जो हमारे श्रोता भी उस चीज को अपने कानों से स्पर्श कर सके।
1: जी जी बिल्कुल। इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। हाँ, कविता का शीर्षक है यादों की कतरने।
0: वाह।
1: आज भी एकांत में अक्सर ही आंचल के छोर में बंधी यादों की कतरने, आज भी एकांत में अक्सर ही आंचल के छोर में बंधी यादों की कतरने
0: जी
1: बिखेर देती हूँ पलंग पर, और फिर एक एक कतरन को छूती हूँ उंगलियों की पोर से, एक एक कतरन को छूती हूँ उंगलियों की पोर से, सहलाती हूँ। सूखे गुलाब तो नहीं है मेरी डायरी में, सूखे गुलाब तो नहीं है मेरी डायरी में, मगर तुम्हारे साथ गुजारे लम्हों की ये यादें ही हैं, जिनकी कतरनों के साथ जी लेती हूँ थोड़ा सा तुम्हारा साथ भी।
0: वाह, बहुत ही खूबसूरत सजीव सी कविता और सजीली सी, बिल्कुल महकती सी रचना है ये। इसको सुन के हमारे श्रोता भी अपने अपने कोने में चले गए होंगे और उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया होगा।
1: धन्यवाद।
0: कहानी के बाद जो कुछ लिखा और कुछ पढ़ा आपने, तो कुछ कहानियों के नाम, कुछ कविताओं के रचनाओं के नाम हमारे श्रोताओं के लिए, और वो कहाँ अवेलेबल हो सकती हैं, किन किन पत्रिकाओं में आप, वैसे तो फेसबुक पे दिखाई
1: जी
0: देती हैं आप सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, एक वो आया करता था अखबार में पहले कॉलम पर, आजकल नहीं आता। तो इसी तरह से जो है वो आपकी रचनाएं आजकल यत्र तत्र सर्वत्र देखने पढ़ने को मिल जाती है। तो हमारे जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन के आपको पढ़ना चाहेंगे, तो उनके लिए कुछ बताएं आपके कहाँ अवेलेबल होंगी आपकी रचनाएं।
1: जी मैंने दो उपन्यास भी लिखे हैं, वैसे तो पांच लिखे हैं
0: जी,
1: लेकिन दो प्रिंट माध्यम में है। तो एक उपन्यास जो भारत के मतलब कमांडो, फौजी कमांडो के जीवन पर है,
0: बहुत बढ़िया,
1: वो उसका नाम है जी एक जिंदगी दो चाहते, हिंदी में है
0: जी।
1: और यही इसी का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित है डायमंड बुक्स दिल्ली से
0: जी।
1: टू लव्स ऑफ माय लाइफ, ये अमेजन पर उपलब्ध है। और दूसरा उपन्यास कर्म चक्र है, ये भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और अमेजन पर दर्शकों श्रोताओं को मिल सकता है, पाठकों को
0: जी।
1: और इसके अतिरिक्त जो कर्म चक्र हिंदी वाला जो संस्करण है
0: जी।
1: एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कुकू FM, काफी
0: लोकप्रिय है,
1: प्रसिद्ध है। हाँ, कुकू FM काफी लोकप्रिय, उस पर ये ऑडियो रूप में पूरा उपलब्ध है।
0: वाह।
1: उसके अतिरिक्त प्रतिलिपि जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मेरी काफी सारी रचनाएं और पांचों उपन्यास वहां पढ़ने में मिल सकते हैं। वहां पर काफी सारी कहानियां भी हैं और पांचों उपन्यास मेरे प्रतिलिपि पर लिखे हुए हैं, तो अगर पाठक चाहे तो वहां पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मातृभारती पर हैं और इसके अलावा मैं गृह शोभा, मेरी सहेली और पहला अंतरा और कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं में लिखती रहती हूँ, अभिभूम स्वर में लिखती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। और कुछ बाल पत्रिकाएं भी हैं जिनमें कहानियां आती हैं, जैसे अभी बाल किलकारी में है, बालवाणी है, बाल प्रहरी है, चिरैया है, तो यहाँ मैं बाल का कहानियां लिखती रहती हूँ, तो समय समय पर प्रकाशित होती रहती है, यहाँ पढ़ी जा सकती हैं।
0: तो ये
1: और
0: तो
1: एक कहानी संग्रह है
0: जी,
1: कहानी संग्रह है इत्र में भीगी हथेलियां, जो अभी हाल ही में इंडिया नेट बुक से प्रकाशित हुआ है, ये भी अमेजन पर उपलब्ध है।
0: बहुत ही खूबसूरत शीर्षक है उसका, टाइटल है, और
1: जी।
0: ये सुन के हम तो जो है उसको दो तीन बार सुनेंगे तब हमें याद रहेगा, नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। तो हमारे श्रोताओं ने जरूर सुन लिया होगा कि एक क्या था हथेलियों पे उसका शीर्षक,
1: इत्र में भीगी हथेलियां, इत्र में भीगी हथेलियां,
0: खुशबू, इत्र जो है उसकी खुशबू, शब्दों की खुशबू है उसमें विनीता जी की। तो हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और आज इस आंचल में इतना कुछ है कि हम खुद भी मालामाल हो गए हैं और उसको समेटने में हमें भी जोर आ रहा है, पता नहीं हम सब कुछ इस प्रोग्राम में समेट पाएंगे या नहीं। विनीता, हमने जो बात की उसमें आपके जो स्केच बनाना, चित्रांकन करना, लघु कथा लिखना, साहित्य से जुड़ी बातें, ये सब तो है, उसके साथ आपके जीवन में संगीत, गीत, ऐसी कुछ चीजें हैं?
1: हाँ, गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गाने सुनती हूँ, मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, लता जी के गाने, आशा जी के, किशोर कुमार जी के, यशुदास जी के। तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं गाने लगा लेती हूँ सारेगामा पर या यूट्यूब पर, अपने मनपसंद के गाने मैं चला लेती हूँ
0: जी।
1: तो मुझे हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुरू से हाँ जी,
0: उनके
1: बहुत शुरू से गाने सुनती
0: हूँ। उनके साथ साथ आप गुनगुनाती हैं मतलब, है ना?
1: कभी कभी
0: हाँ, तो आज उनके उनके बिना थोड़ा सा सुनाइए ना हमें।
1: नहीं देखिए मैं गाना तो बहुत अच्छा गाती नहीं।
0: एक अंतरा तो चलेगा ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा।
1: जी जी कोशिश करती हूँ एक लता जी का एक गाना गाने की।
0: जी स्वागत
1: जी।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: और हम यही श्रोताओं को बतलाना चाह रहे थे कि जो लिखता है, जो साहित्यकार है, जो चित्रकार है, वो संगीतकार भी है और वो गायककार भी है, क्योंकि उसका दिल ही ऐसा होता है। और दिल कभी फूलों पे, कभी पत्तों पे, कभी हवा के संग, और कभी कभी जो है हम बादलों के साथ बातें करते हैं। तो यही साहित्य और साहित्यकार की विधा का एक मौलिक परिचय हो सकता है हमारी दृष्टि में। आप क्या कहेंगी कि एक साहित्यकार को कैसा होना चाहिए, और उसे कोई साहित्यकार बनना चाहता है तो बन सकता है क्या, या जन्मजात पैदा होता है उसके अंदर, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, क्या कहेंगी आप?
2: जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपको मन में अभिव्यक्ति की इच्छा है, छटपटाहट है, तो बहुत अच्छी बात है। सब में एक कोई ना कोई अभिव्यक्ति का गुण होता है, जो अपने आप को अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो कोई गाकर करता है, कोई कविता लिखकर करता है, कोई चित्रांकन में करता है, तो कहीं ना कहीं तो हम सबकी अभिव्यक्ति निकलती है। और लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यकार का दायित्व इन सब में थोड़ा सा ज्यादा है। उसको एक बहुत बड़े वर्ग की, एक मतलब पूरे मानवता की उसको संवेदना छूनी चाहिए। उसका मन बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि आप लोगों की भावनाओं को, उनकी दुख दर्द को, उनके अच्छे बुरे को समझ सके, समझकर उसे अपने भीतर महसूस कर सके, तभी तो वो आप अभिव्यक्त कर पाएंगे।
1: यानी एक मास को रिप्रेजेंट करता है वो व्यक्ति,
2: मास को रिप्रेजेंट करता है। और आप जब भी लिखे तो ऐसा ना हो कि आप आत्मालाप कर रहे हैं या अपनी जो है अपना दुख दर्द ही उड़ेल रहे हैं। आपकी जो रचना है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सबके मन तक पहुंचे और सबको अपनी सी लगे। जो भी पाठक उसे पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, मैं ये अपने अपनी कुछ बात पढ़ रहा हूँ, यहाँ ये मेरे लिए कुछ लिखा गया है। पाठक को ये ना लगे कि अरे ये तो लेखक के अपनी वो है, तो अपनी भड़ास निकल गई है या अपना दुख दर्द ही, अपनी ही वेदना उसने उड़ेल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से। दूसरा ये है कि आप अपने जो साहित्यकार हो गए, देखिए भारत की जो साहित्यिक परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। दो जीवन कम पड़ जाएंगे लेकिन आप वो जो साहित्य है वो हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप अगर आपको साहित्यकार बनना है, लेखक बनना है, तो मुझे लगता है आपको अपने पुराने जो हैं, जैसे अमृता प्रीतम जी हैं, शरद चंद्र जी को आप पढ़िए, बंकिम चंद्र जी को पढ़िए, आशापूर्णा देवी जी को पढ़िए, आप मालती जोशी जी को पढ़िए, इतना अच्छा लिखा है। और इनको पढ़कर, विशेषकर मैंने बंगाली जो साहित्यकार हैं, जैसे शरद चंद्र जी हैं, बंकिम चंद्र जी हैं और आशापूर्णा देवी हैं, उनको मैंने बहुत पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य मन की जो बिल्कुल भीतरी सूक्ष्म भाव है ना, या उनकी जो मनोवृत्ति है कि कोई व्यक्ति बाहर से कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उस बाहरी व्यवहार के पीछे भीतरी कारण क्या है, वो उन्होंने इतने सुंदरता से उसको अभिव्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मानव मन की गहराइयों को सीखने का उनके मन उससे बहुत सीखने को मिलता है बंगाली लेखकों से। और प्रेम को कितने रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, एक ही भावना है उसको कितने रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो अगर आपको जानना है तो आपको अमृता प्रीतम को समग्र पढ़ना पड़ेगा। अद्भुत है उनकी साहित्य की यात्रा, बहुत अद्भुत है। जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार चमत्कृत करती है। मैंने बहुत पढ़ा है इन लोगों को, अभी भी पढ़ती रहती हूँ। मैंने इन बड़े लेखकों से बहुत कुछ सीखा है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे लेखन में उनकी बूंद भर भी स्याही उतर पाई है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो अगर किसी को लेखक बनना है, मुझे लगता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए और फिर तब लिखिए।
1: बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। समझने वाले को विचार करना पड़ेगा, और जिन लेखकों का नाम आपने लिया है, सच में उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल जैसे शरद चंद्र का शेष प्रश्न आप पढ़िए तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न उठे हैं जीवन के बारे में, हमारे संबंधों के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में। तो ऐसी चीजें जो हैं वो समाज को जोड़ती है, हमें दुनिया से एकीकार करती है। और ऐसी ही अमृता जी के प्रेम की कथा और व्यथा हम सुनेंगे, तोलेंगे, नापेंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: ये जो आपने नाम लिए हैं वो सच में वो स्तंभ है साहित्य के, जिनको हम पढ़ के कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और लेखन की और लेखक की गूढ़ गहराइयां क्या हो सकती हैं उनको हम समझ सकते हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल हमारा सोचना है। तो आजकल जो पढ़ने का की जो परंपरा है, सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि लोग किताबों से दूर हटते जा रहे हैं, दूर ही दूर होते जा रहे हैं। तो क्या होगा इनका, इसके बारे में, इसके भविष्य के बारे में हमें चिंता होती है, आपको होती है क्या?
2: जी हाँ बिल्कुल, कभी कभी तो होती है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कभी कुछ युवाओं के, जैसे प्रतिलिपि है या ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहुत लोगों ने पुराने लेखकों को भी प्रकाशित किया हुआ है।
1: जी, हाँ।
2: जी बिल्कुल। और वहां पर जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन कमेंट्स में शरद चंद्र जी या प्रेमचंद जी इनके नाम पढ़ती हूँ तो कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है कि चलो युवा मतलब अनभिज्ञ नहीं है इन लेखकों से, वो इनको भी पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो छपी हुई किताब भले ही हाथ में लेके न पढ़ रहा हो, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो अनभिज्ञ नहीं है इन लेखकों से और इनकी रचनाओं से, वो इनको पढ़ रहा है। जैसे हाल ही में मुझे एक लिंक में चेखव की पूरी कहानियां मिली डिजिटल उसमें, हाँ इंटरनेट पर, गूगल पर ऐसे ही मैं कुछ सर्च कर रही थी तो पूरी अंतोन चेखव का पूरा जो कहानियां है तो वो पूरा उनका रचना संसार इंटरनेट पर उपलब्ध है। और वहां पर युवाओं के भी और पाठकों के काफी कमेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब ही पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि हमें बहुत दुख होता था कि जैसे चंदा मामा बढ़ गई है, मैं बचपन से विदेश में रही तो मैं बाल पत्रिकाएं नहीं पढ़ पाई, वो मेरा एक आज भी मुझे वो टीसता था कि अरे मैं चंदा मामा ये सब नहीं पढ़ पाई। लेकिन एक दिन यूं ही सर्च करते करते मुझे गूगल पर chandamama.in पर पहली चंदा मामा से लेके 2013 तक की सारी चंदा मामा उन्होंने स्कैन करके डाली हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें सच में पढ़ने की इच्छा है तो हमारे लिए रास्ते भी खुल रहे हैं और बहुत अच्छे खुल रहे हैं। कि मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं इनकी बहुत सी किताबें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगी या विभिन्न वेबसाइट्स पर या जैसे प्रतिलिपि वगैरह हैं तो इन पर काफी रचनाएं हैं। तो और इसके अतिरिक्त मतलब छपी हुई पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध हैं, तो अगर युवा पढ़ना चाहे तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, उसके सामने तो दोनों माध्यम हैं।
1: विनीता, बात कवि से हो रही है, साहित्यकार से हो रही है और कविताओं का आनंद श्रोताओं को न मिले ऐसा हम नहीं चाहते, हमारे श्रोता भी नहीं चाहते, तो हो जाए।
3: छत के कोने पर आंचल के छोर में बंधी एक कतरन यादों की जाने कैसे तकिए पर उतर आई, जब तुम्हारे मोती से अक्षरों में ढली प्रेम की अभिव्यक्ति को कागज ने अपनी हथेली पर सहेज लिया था। और दौर पड़ते थे मेरे पैर अपने आप छत पर सुनहरी दोपहरियों और सिंदूरी शामों में सीने से लगाए उस कागज को पढ़ने के लिए बार बार। प्रेम की वो अनुभूति आज भी छत के उस कोने में शाम के सिंदूरी रंग में रंगी खड़ी हुई है। खिड़की के सरिये पर आज खिड़की से सूखे पत्तों के साथ उड़कर यादों की एक कतरन भी अटक गई सरिये पर। वो दिन जब यूं ही बेमतलब गुजरा करते थे तुम सड़क से गली के मोड़ तक, और नजरें ढूंढती थी खिड़की के सरियों के भीतर, दीवार से सटकर मैं देखा करती थी तुम्हारी बेचैनी। एक झलक मुझे देखने की, दो जोड़ी आंखें आज भी अटकी हुई है सरिये पर, एक बार नजर मिल जाने की राह देखती हुई। कुंज, यादों के इस कुंज में कितनी कोमल लताएं लिपटी हुई हैं, सुंदर सुवासित पुष्पों से भरी हुई, मन के तने से कितनी प्रेम कविताएं भरी उकेरी हुई हैं हरे भरे पत्तों पर। तुम्हारे स्पर्श सी अनुभूति है पुष्पों की इन पंखुड़ियों की, सुन रही हूं मैं बांसुरी की मीठी धुन के साथ कूकती कोयलिया को। इस नरम धूप पर आज भी अंकित है तुम्हारे चरण चिन्ह। ओ कुंज बिहारी मेरे, भटक रही हूं मैं देह के कानन में, इन लताओं बीच वो पुष्प ढूंढती हुई जो तुमने लगाया था मेरे बालों में अपनी प्रीत का। जन्मों के इस चक्र में, समय की धाराओं में जो मुझसे जाने कैसे कब खो गया।
1: स्मृतियों के साए में लिपटी लबरेज कविताएं हमने सुन, इतना खूबसूरत बयान दे रही हैं, बोल रही हैं आप, कि मैं आपको सुनूं या आपसे कोई अगला प्रश्न करूं मैं भूल जाता हूं। तो मैंने जो भूल की है उसको आप संशोधित कर दीजिए कि कहां मैंने आपके व्यक्तित्व को छूने में कहीं कोई कोर कसर रखी हो तो आप जरूर बताइएगा। और साथ साथ में प्रोग्राम के समापन से पहले आप जो कुछ कहना चाहें वो कहिएगा, और फिर एक स्वर में एक गीत तो हम आपसे दो लाइनें फिर भी सुनेंगे, उसको भी याद कर लीजिए। एक साथ तीन चार प्रश्न हैं।
2: जी, तो अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, बहुत सीधा सरल सा व्यक्तित्व है। परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है, और जिस तरह से सांस लेना जरूरी है मुझे लगता है मेरे लिए पढ़ना और लिखना जरूरी है। तो क्योंकि अक्षर, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बचपन से मुझे अक्षर बहुत प्रभावित करते हैं, और लिखना ऐसा लगता है कि वो ईश्वर की इच्छा है और मुझे उनको पूर्ण करना चाहिए। तो लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा या पुरस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब मेरे मन में कुछ नहीं रहता, या वो रचना छपेगी कि नहीं छपेगी। बस मेरे मन में जब अभिव्यक्ति की इच्छा होती है तो मैं लिखती हूँ, और पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो मुझे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मैं पढ़ती नहीं हूँ। और अभी भी प्रकाशित पुस्तकें, छपी हुई पुस्तकें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइब्रेरी में अभी भी कम से कम 400-500 किताबें हैं बड़े लेखकों की, प्रेमचंद जी का काफी सारा रचना संसार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रचना संसार, मृदुला गर्ग जी हैं, और अमृता प्रीतम जी, और रविन्द्र शरद चंद्र जी का तो मुझे लगता है कि जितनी मुझे मिल सकती थी पूरा साहित्यिक उनकी जो है मेरे पास है। और मुझे फैंटेसी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे पास हैरी पॉटर भी है, और मेरे पास बाबू देवकी नंदन खत्री जी की भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता रोहतास मठ, वो भी सारी हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो मैंने 7 बार पढ़ी है, वो सारी किताबें मैंने 7-7 बार पूरी पूरी पढ़ी है।
1: हाँ, कई
2: मुझे फैंटेसी में
1: कुछ ऐसे होती है कि वो छू जाती है और उसको दोबारा छूने का मन करता है, सच में पढ़ने को मन करता है।
2: बिल्कुल, जब मैं थोड़ा सा अवसाद या ऐसे कुछ थोड़ा सा उदासी में रहती हूँ तो मैं वो किताबें पढ़ना शुरू कर देती हूँ, मुझे एकदम मैं ताजगी से भर जाती हूँ। और इसीलिए शायद मेरा एक जो 4 उपन्यास है, मेरे भी 4 उपन्यास इसी तरह से फैंटेसी पे है। कर्मचक्र जो सीरीज है मेरी, कि उसमें वो पिछले जन्म में जाते हैं और पिछली सदियों में जाते हैं और वो राजा महाराजाओं के दौर में चले जाते हैं और फिर वो क्या क्या करते हैं, तो उसको भी लिखना मैंने बहुत एंजॉय किया था।
1: तो विनीता कब उदास होती है?
2: हो जाती है कभी कभी
1: हो जाती है
2: कोशिश करती हूँ, जी बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि ना हो। लेकिन हो जाती हूँ कभी कभी।
1: और हो जाए तो फिर उपाय क्या करती हैं आप, उसका परिमार्जन कैसे होता है?
2: वो परिमार्जन ऐसे होता है कि कुछ थोड़ा सा अपने आप के साथ संवाद हो जाता है, और अगर ज्यादा है तो मैं रंग लेकर बैठ जाती हूँ, तो कोई सुंदर सा चित्र बना देती हूँ, तो उसके इतने सारे रंग। भारतीय चित्रकला में मुझे गोंड चित्रकला बहुत पसंद है। गोंड चित्रकला में बड़े चटक रंग होते हैं और प्रकृति से जुड़ा होता है, मतलब पेड़ और हिरण, मोर, पक्षी, तो मैं वो बनाने बैठ जाती हूँ, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताती हूँ, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। अभी भी मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने बोगनवेलिया के पेड़ लगे हैं, उन पे फूल खिले हैं, हरे भरे पेड़ हैं, लहरा रहे हैं, तो मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, तो मैं प्रकृति के सानिध्य में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो बस उदासी मेरी बादल बनकर उड़ जाती है।
1: वाह, क्या कमाल का जादू भरा जो टॉनिक है आपने दे दिया है हमारे श्रोताओं को और हमें भी। तो चलते चलते हम सुनना चाहेंगे आपसे कोई गीत, याद कर लीजिए
2: जी। कोई अगर आपको ऐसा गीत एकदम सूझ रहा हो जो मैं गा सकती हूँ तो बताइए।
1: बिल्कुल, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई गीत सुनाएंगे, क्योंकि ये रेडियो का प्रोग्राम है।
2: जी जी, तो सावन पे गीत गा दूं?
1: बिल्कुल,
2: थोड़ा सा दो लाइन।
1: हाँ
2: जी। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं शोर कहो, शोर शोर शोर। सावन का महीना

0: जैसे बन माना छे मोर।
1: इस सुहाने गीत के बोल सुन के हमारे श्रोताओं को भी लगने लगा होगा कि ये गीत क्यों ना सुनाया जाए। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला सॉन्ग सभी श्रोताओं के लिए। सावन का महीना पवन करे शोर।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: बस मन की
1: बहुत
0: तरह सब लोग को फूले फूले रहें, मोर की तरह हमेशा खुश रहें, नाचते गाते रहें। आपके सभी श्रोताओं के लिए मेरा यही प्रार्थना है, यही संदेश है।
1: हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे थे प्रोग्राम आंचल की अभिव्यक्ति, और हमारे साथ मशहूर साहित्यकार विनीता राहुरकर मध्य प्रदेश भोपाल से। विनीता जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से। शीतल बहुत ही अच्छा गाती हैं, हमने एक गीत सुना है उसी से हम कह रहे हैं, उसी आधार पे कह रहे हैं। और जब हम बात करेंगे शीतल से और आप उनकी शीतल सी वॉइस को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे बाप रे बहुत अच्छा गाती हैं। तो वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। और हमारे संग हमारे साथ अपने परिचय के साथ शीतल वापरे। शीतल क्या कहेंगी हमारे श्रोताओं को अपने परिचय के रूप में?
1: धन्यवाद गाइस, और धन्यवाद व्यास हरिशंकर जी, आपने मुझे जयपुर रेडियो प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो पे आज मेरे रेडियो पे प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है। हाँ,
0: और अपने बारे में बताएं कि आप कब से गा रही हैं और क्यों गा रही हैं?
1: मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक है, मेरी सिंगिंग की शुरुआत ही मेरे भजन से हुई है, और उस वक्त पता नहीं चला था कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ।
0: अच्छा, और ये प्रेरणा मुझे में भजन,
1: हाँ, से हुई। भजन से हुई।
0: तो कौन सा भजन था, उसके बोल भी हम सुनना
1: चाहेंगे? छोटे बच्चों के लिए बालोपासना, बेलगांव जो शहर है सिटी, उसमें श्री कलावती देवी, उनके भजन मैं गाती थी छोटे बच्चों के लिए बालोपासना। तो मेरी आवाज सुनकर उन्होंने मुझे माइक में ये बालोपासना का जो भजन है वो बोलने का अवसर दिया। तो
0: उसकी दो लाइनें हम सुनना चाहेंगे, कैसा था वो?
1: मराठी में है
0: जी जी।
1: श्री गणपते विघ्न नाशना मंगल मूर्ते मुषक वाहना,
0: क्या बात,
1: मेरे नाशिशी निज ज्ञान देवनी, बस इतना है। बहुत बड़ा है, मैं अभी इतना इतना ही गा सकती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो हम यही सुनना चाह रहे थे कि उससे उसके नाम से विघ्न विनाशक के नाम से शुरू हो तो हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम विनायक विघ्ननाशक उस
1: गणपति बप्पा
0: को प्रणाम करते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और कौन सा गीत हम सुनाएं आपको, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? पहला गीत
1: मैं पहले ये गाना सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को
0: जी।
1: दशावतार मूवी हो गया था तेलुगु भाषा में, तो उसका हिंदी रिमेक था कमल हसन का, तो उसमें कृष्ण का जो गीत है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: उसके थोड़े से बोल गा के सुनाएंगे?
1: मुकुंदा मुकुंदा मुझे मुकुंदा मुकुंदा ही होते हैं स्पेशल,
0: मुकुंदा मुकुंदा जी हाँ। तो मुकुंदा को याद करते हुए हम ये सॉन्ग

0: नहीं वो नहीं है।
1: इतनी हंसी है

0: नजदीकियां, और सच में आवाज की नजदीकियां जो होती हैं वो माइक के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचती है, और हम गाते हैं। हमारी आवाज, नई आवाज, नई पहचान, एक ऐसी पहचान बन जाती है जिसे कहते हैं शीतल वापरे। शीतल वापरे हमारे साथ हैं आज इस प्रोग्राम में, और शीतल, बहुत ही सुरीला सॉन्ग हमने आपकी आवाज में सुना। क्या कहेंगे, क्या कहेंगी आप हमें और हमारे श्रोताओं को? आप गीतों से बहुत,
1: मेरा गाना बहुत, मेरे गाना, मैंने जो गाना गाया है वो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आवाज?
0: वो तो हमारे श्रोता है बताएंगे। हमने तो पहला गीत सुना तभी हम नजदीक आ गए, और ये नजदीकियां जो है वो और सुरीली हो गई, और आज की शाम जो है वो आपके गीतों से महक गई, यही कहेंगे। और श्रोताओं को जिन्होंने अभी अभी जयपुर रेडियो ऑन किया है उनको बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, और हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से। बहुत ही सुरीली गाती हैं, और अभी शीतल सुना होगा कि जो सोना है जिसको महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, और जो लेडीज हैं वो गले में चैन वैन भी पहनती है, तो सोने के भाव बहुत ही आसमान छू गए। तो वो एक गाना भी है ना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना,

0: जी नहीं,
1: अच्छा वो वाला
0: आशा
1: सोना नहीं
0: भोसले की आवाज में।
1: अच्छा
0: नहीं, वो वाला सोना नहीं है, अपने जो मनपसंद जो जो पर्सन है उसको सोना बोल रहा है उसने।
1: उसको सोना, अच्छा अच्छा
0: हाँ उसका सोना बोला है, प्यार से सोना बोला है।
1: तो चलिए ये सोने जैसा गीत हम सुन लेते हैं आपकी आवाज में।

0: मैंने तुझे जरा देर में जाना रे, हुआ कसूर खपा मत होना रे। शीतल में मराठी, शीतल वापरे हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। और शीतल का ये गाना, ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हम यदि समय पर फीडबैक मिल जाते हैं तो हम उनको इसी लाइव शो में शामिल भी करेंगे, इसलिए आप जरूर अपना फीडबैक लिखना देना ना भूलें। शीतल वेलकम है फिर से एक बार। अब इस गीत के बाद क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, कोई बात जो हमने ना पूछी हो?
1: ऐसे कोई बात नहीं सर, लेकिन ये गाना गाने की प्रेरणा है ये मेरी बुआ से मिली है, यानी कि मेरे पापा की बड़ी बहन।
0: अरे वाह,
1: आज वो होती तो बहुत, आज वो इस दुनिया में नहीं है, होती तो बहुत उसको बहुत खुशी होती कि मेरे प्रोग्राम हो रहा है, मेरे रेडियो पे भी प्रोग्राम हो रहा है। वो होती तो बड़े चाव से

0: वो सुनती, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
1: वो मुझे भी आ रही है उनकी, और उनकी आत्मा, उनकी रूह जो है ना, वो आपके गीत को सुन रही है, हमारी बातचीत भी सुन रही है। क्योंकि हम कहते हैं आवाज ही पहचान है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,
0: बदल जाएगा,
1: मेरी आवाज ही पहचान है। तो जहाँ तुम्हारी बुआ है, वो आवाज भी इस यूनिवर्स में ही है, कहीं नहीं गई है, और वही आवाज, वही आवाज जो है वो आज एक रूह के रूप में आपकी आवाज को सुन रही है, पहचान रही है, और वो कह रही है कि शीतल गा रही है, और उसकी शीतल सी बयार मेरे पास आ रही है, वो सुन रही है, बहुत ही मनोयोग से, मन से सुन रही है, और मुझे तो यही कह रही है कि आप शीतल का एक गीत और सुना दीजिए ना। तो हम सुना ही देते हैं आपको आपका ये गीत, हमारे सभी श्रोताओं को। आइए सुनते हैं सब मिलके इस गीत को, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: बहुत सुरीली सुरीली सुरीली बहुत ही स्वीट वॉइस शीतल की हमारे साथ हैं आज लाइव इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। शीतल, आवाज सुन के ऐसे लगता है कि एक स्केल पे गाती हैं आप, और आपका वॉइस पे जो कंट्रोल है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यानी इसमें कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, जो ऊंचा स्वर है उसको भी आप अपने सलीके से अपने कंट्रोल से उसको काबू में रखती हैं और फिर उसको गा लेती हैं। तो ये रियाज और ये सब जो चीजें हैं वो आपने कब सीखी, कैसे आई, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
1: जी, गाना गाने के लिए मैं गाना गानी रहती, और मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं गाना ठीक से सुनती हूँ, क्योंकि कोई भी गाना उसी तरह से गाना हो तो ठीक तरह से सुनना चाहिए। उसका जो चढ़ाव उतार जो है, हरकतें है, वो ठीक तरह से आनी चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं कि जो सिंगर है उसी की आवाज से ही गाना है, वो कैसे गा रहा है, वो किस तरह से गा रहा है, वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए। मुझे हमेशा कोई पूछेगा कि आप कोई तो बताओ कि हम कैसे गा सकते हैं, क्या करना, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप पूरा गाना जो आपको गाना है वो पूरा ठीक तरह से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हम भी यही सलाह देते हैं जो इस मंच पे आते हैं उनको, कि कम से कम उस गीत को आप गाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले
1: उसके जो बोल है कुछ किधर रुकना है, किधर बढ़ाना है, वो ठीक तरह से सुनना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब ये भी चाहिए कि याद भी होना चाहिए कि हम लोग सामने थोड़ी मतलब म्यूजिक रहता है, तो हमको जो याद होगा जो गाना वो अपने आप भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल, देख के गाना भी एक अपने आप में अपराध ही है सिंगर के लिए, यानी उसे गीत याद होना चाहिए। हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें सामने मोबाइल लेके और गाना शुरू कर दिया, तो वो गाना जो है वो गाना नहीं होता। बल्कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम और आप दोनों मिलके सबको कहना चाहेंगे कि गाना ऐसा होना चाहिए जो आपको याद हो। आप उसको देख रहे हैं तो उसको बांच रही है, उसको पढ़ रही हैं, उसको पढ़ के आप सुना रही हैं। जैसे चिट्ठी आई है तो चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, लेटर को पढ़ते हैं, उसी तरह से वो पढ़ना नहीं है, रीड करना नहीं है, गाना है। उसमें अपनी आत्मा को, अपनी आवाज को मिला देना है, एक साम्य होना चाहिए। ऐसा यदि
1: जैसे कि किसी को सिर्फ गाना सुनने का शौक होता है
0: जी,
1: किसी को गाना गाके गाने का शौक होता है, किसी को सिर्फ गाने का शौक होता है।
0: बिल्कुल, तो कुछ होते हैं जिसको गाने सुनने का शौक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने का शौक होता है, कुछ ऐसा होता है उनको गाने का शौक होता है पर सुनाने का नहीं होता। अगर आप सुनाना चाहते हैं, अगर आप सच में एक सिंगर बनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो आपकी वॉइस में हमें ऐसा नहीं लगा कि आपने कहीं कोई चीज को छोड़ा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी आवाज को पहचान दी है। तो आइए सुनते हैं आपका ये अगला सुरीला सॉन्ग जिसे आपने गाया है, यानी हमारी आज की सिंगर मेहमान शीतल वापरे, बहुत ही सुरीली आवाज की धनी है, इनकी आवाज ही अपने आप।

तो ये दम चल के जो अचल भी डल के बताओ चले कोई कैसे संभल के अताओं की नरमी निगाहों की गर्मी से दम बिकले और बैठ के दिल बहुत से फंसाने बहुत से तराने सुनाने को आए हैं तेरे दीवाने साझा दिलों पे समझ तू है जाने जाने के मिल।

नंजा नीरा हमें है तुलने का हमें ये दिल जो मेरा है सच है कि तेरा इससे उजाला है वरना अंधेरा है तू है तो फिर क्या है जो मगर फिर भी मुझको ये तुझसे गिला है कि दोनों में अब तक ये क्यों फासला है ये दूरी मिटा दे ये पर्दे हटा दे कि अब एक हो जाए हम

0: जय हो पंचम।
1: आज मुलाकात है, होने को पहचान है, और सच में मुलाकात हम करवा रहे हैं आपकी पुणे महाराष्ट्र की शीतल वापरे। नई आवाज नई पहचान, पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आना तो इनको पहले ही चाहिए था, लेकिन बहुत देर से आई। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये तो शीतल ही बताएंगी। शीतल क्या कहेंगी गीतों के बारे में और किस तरह के गीत आप पसंद करती हैं? जैसा कि आपने बताया कि आप भजन से आपने शुरुआत की, गणपति बप्पा के, और उसके बाद आपने कौन से गीत गुनगुनाए, फिर गाए, फिर हमें सुनाए, तो इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे?
2: आज तक मैंने बहुत बॉलीवुड सॉन्ग गाए, मराठी भी सॉन्ग गाए हैं, और हिंदी, तेलुगु और नेपाली भाषा में भी मैंने गीत गाया है।
1: अरे वाह।
2: लेकिन मैंने शो नहीं किया है, सिर्फ एक स्टार मेकर का ऐप है उसमें ही गाया है
1: जी।
2: और लेकिन मैं मराठी गाना बहुत पसंद करती हूँ, और मराठी, और मुझे गजल सॉन्ग भी पसंद है, मराठी में जो लावणी सॉन्ग है वो भी पसंद है, और ऐसा गाना गाना है कि जो इसमें वेरिएशन हो, जैसे कि अभी लेट श्रीमती आशा भोसले ने जी, नहीं है हमारे यहाँ, तो उन्होंने जो जिस तरह से गाने गाए हैं, वैसे गाने गाने की मैं इच्छा रखती हूँ।
1: तो मतलब ये कि आप एक वर्सटाइल सिंगर हैं, आपको कहा जा सकता है ना, आप पे ये मोहर लगाई जा सकती है कि आप हर तरह के गीत गा सकती हैं।
2: जिस जो भाषा मुझे अच्छी लगे, मधुर लगे
1: जी,
2: गुनगुनाती हूँ, तो अपने आप वो अब मन से उसको बोलना चाहिए कि हाँ मैं गा सकती, ये इस भाषा में मैं गा सकती हूँ। वैसे ही भाषा मैंने तेलुगु, नेपाली, तमिल में भी गाया है, लेकिन किसी को सुनाया नहीं अब तक अपने, मतलब
1: अब आपको, मेरे आपको मंच मिल गया है, अब आप सुनाइए और सुनाते रहिएगा। हमें तो आज मालूम हुआ कि आप तेलुगु, तमिल, नेपाली, मराठी, हिंदी और इतनी भाषाओं में गीत गाती हैं, और फिर इतनी लेट आती हैं, ये जो है ना गजब, अजब गजब बात है।
2: उनमें से तेलुगु और नेपाली भाषा बहुत फिट है, मतलब वो गाना गाने के लिए बहुत, मतलब ऐसे, मतलब हिंदी मराठी जैसा नहीं है, अपने आप मुंह में मुझे ऑटो पे आ जाता है, वो गाना उसका जो शब्द है वो अपने आप आ जाता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, ये जो मराठी या नेपाली में या तेलुगु तमिल में गाना चाहते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा गाना, लेकिन आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं आपकी बात और सुनते हैं ये आपका एक अजब गजब गीत, रात अकेली है। आपने जो जिक्र किया कि हर तरह का चैलेंज आप स्वीकार करती हैं, तो इस गीत में देखते हैं आपकी आवाज।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से।

0: कानों में कुछ कहूं और कहना है सब सुनने वालों को कि शीतल बहुत अच्छा गाती है और शीतल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है पुणे महाराष्ट्र से और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान की हमारी आज की मेहमान को शीतल वापरे
1: जी।
0: क्या कहेंगे हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं लिसनर्स वो उनके मैसेज आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या सच में आपकी आज की सिंगर मेहमान की आवाज है। इस गीत को सुनने के बाद तो हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो उन प्रश्नों का आप ही उत्तर दीजिए और कौन कौन से सिंगर
1: कौन कौन से सिंगर्स
0: हैं जिनको आप गाती हैं लाइक करते हैं।
1: वैसे तो सबकी आवाज अच्छी है जैसे कि लता जी, साधना, आशा भोसले, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, एस पी बालसुब्रमण्यम और बहुत है, लेकिन मुझे आशा जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है और वो मेरी फेवरेट भी है थी और उस पे आडे जी का जो म्यूजिक है वो बहुत उनके म्यूजिक भी मैं पसंद करती हूँ, सब म्यूजिक मुझे पसंद करती हूँ।
0: तो हमारी बात हुई थी मुकुंदा से और मुकुंदा जो गीत है उसको हम थोड़ा सा आपकी आवाज में वैसे सुनना चाहेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ ये शीतल की आवाज से मैच करता है।
1: लाइव में क्या?
0: हाँ लाइव जी, थोड़ा सा गा के दो लाइने गा के सुनाइए ताकि पता लगे जी हमारे सुनने वालों को यकीन हो जाए कि हाँ एक वर्सेटाइल सिंगर जो है हमारे आज इस मंच पर है हमारे साथ।
1: ये दशावतार फिल्म है, तमिल में भी हुई थी और तेलुगु में भी हुई थी। कमल हसन इसके लीड हीरो है
0: जी
1: और असीम एक्टर्स है
0: जी।
1: तो मैं उनका जो गाना है वो उस तेलुगु और तमिल भाषा में तो बहुत अच्छा है लेकिन साधना सरगम ने जो गाया है मुकुंदा मुकुंदा

0: वाह आनंद आ गया मुकुंदा, आनंद देने वाला शीतल की आवाज शीतल सी हमने सुनी। इस सुरीले सॉन्ग में क्या कहें समझ में नहीं आता, हमने शब्द हो गए। इतना सुरीला गान ये तो आपके अलावा कौन गा सकता है। क्या कहेंगे शीतल, आप गाने तो गाती हैं, सिंगिंग करती हैं, सिंगिंग की आज की हमारी मेहमान हैं, और सुनने वालों को बता दें कि आज नई आवाज नई पहचान में हमारे संग हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से, बहुत ही सुरीली आवाज लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं। तो सिंगिंग के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके और क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, रीडिंग भी करती हूँ और मुझे खाना बनाने का भी शौक है।
0: क्या क्या बना लेती हैं वैसे आजकल? तो बनाती नहीं है आजकल की महिलाएं,
1: सब,
0: तो
1: सब वेज नॉन वेज सब
0: सब बना लेती हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और गाना कितनी देर गाती हैं दिन में, आप कितना समय देती हैं?
1: नहीं समय मिलता है वैसे गा लेती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा बहुत, तो मतलब माइक में मतलब कराओके मैं थोड़ा सा गाती हूँ अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से केजे यशोदास सिंगर है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो संगीत के इतिहास में सबसे महान गायकों में से वो माना जाता है। बहुत भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है, उनकी मधुर दिव्य आवाज को सम्मान में उन्हें गान गंधर्व मतलब स्वर्गीय आवाज कहते हैं, मराठी में कहते हैं कि देवांचा आवाज, ये उपाधि उन्हें मिली है। बहुत अच्छी तरह से मैंने उनके गाने भी सुने हैं, सदमा का जो गाना है रुमई अखियों से बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है।
0: बहुत ही
1: अपने पराए जो फिल्म है हिंदी, उसमें श्याम रंग रंगारे जो बंगाली थोड़ा सा सॉन्ग है, लेकिन बंगाली म्यूजिक है उसमें
0: जी।
1: वो भी अच्छी लगती है।
0: आइए सुनते हैं
1: तुझे मेरे सुर में,
0: सदमा का ये सुरीला सॉन्ग जो आपने गाया है।

0: बहुत ही सुरीला प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। नई आवाज, नई पहचान, और हमारा मन नहीं करता कि हम इस प्रोग्राम को ब्रेक करें, लेकिन समय जो है वो कहता है कि आखिरी गीत सुन लिया जाए। तो शीतल हमारे साथ हैं। शीतल, सुन ले हम, इजाजत है आपकी इस गीत के लिए?
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग, मार गई मुझे तेरी जुदाई। और उसके बाद शीतल क्या कहेंगी वो इस गीत के बाद हम सुनेंगे।

0: और समय ने अंगड़ाई ले ली है, फिर भी हम शीतल को कहेंगे कि जाते जाते चलते चलते क्या कहेंगी आप?
1: मैं बचपन से गाती हूँ, लेकिन कभी इतने लाइमलाइट में नहीं रही। यूं ही दोस्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच। मैं मुंबई में रहती थी, शादी के बाद पुणे आई। कुछ साल बाद मुझे ये स्टेज शो करने का अवसर मिला, स्टूडियो में गाने का मौका मिला
0: जी।
1: मैंने करों के शो भी किए, चैरिटी शो भी किया, मध्य प्रदेश के रेडियो प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था 2 साल पहले
0: जी।
1: और ये सब करने के लिए मेरे पति ने बहुत मुझे सपोर्ट किया।
0: वेरी गुड।
1: उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू संजय, क्योंकि हर किसी को इतना मोरल सपोर्ट नहीं मिलता घर से।
0: बिल्कुल, और नहीं मिलता तो फिर वो नहीं कर सकता। और
1: नहीं कर सकते सर। उनके सपोर्ट के बिना मैं कर ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल।
1: उनको भी गाना, उनको गाना गाना नहीं आता, लेकिन वो गाना पसंद करते हैं, मेरा गाना सुनते हैं। और मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते भी है
0: कि इसको यहाँ से ठीक
1: करो। बराबर, यहाँ से ठीक करो, वहाँ से ठीक करो, क्योंकि पहला गाना मैं उनको ही सुनाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: वो बोलते मुझे ये सजा क्यों, लेकिन आप ने मुझे चांस दिया तो आप ही मेरा गाना सुनेंगे पहले।
0: ये सजा नहीं है, ये तो सजा नहीं, क्योंकि ये तो मजा है संगीत का।
1: ये प्यार है।
0: ये प्यार भी है और ये संगीत का मजा भी है, तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
1: सर आपको भी धन्यवाद,
0: हमारे को मेरे लिए प्रोग्राम, हमारा धन्यवाद तो हमारे श्रोता देंगे हमें, और आप आई इस मंच पे और हमारे साथ इतनी बातचीत की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया कहेंगे, आभार कहेंगे, नमस्कार कहेंगे और इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद शीतल वापरे, हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से रही, प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं गीता दर्शन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। अभिव्यक्ति का आंचल, और इस क्रम में आज हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश की सोनम उपाध्याय नोमी। सोनम जी जो हैं वो एक अच्छी रचनाकार हैं और कविताएं लिखती हैं, चिंतक है, विचारशील हैं, और बचपन से लेके अब तक जो भी अनुभव आपने अपने विचारों में शब्दों के द्वारा उतारे हैं वो कविताएं बन गईं, और उन्हीं के माध्यम से आज देश विदेश में अपना नाम और अपनी रचनाएं पहुंचा रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर हमारे साथ सोनम उपाध्याय नोमी हैं। जी हाँ सोनम जी, वेलकम है आपका, स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके बारे में जितना हम जानते थे वो तो हमने परोस दिया है

0: हमारे श्रोताओं के समक्ष अब आप बताएं और रूबरू हैं आप हमारे श्रोताओं से।
1: नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत आभार और इतना अच्छा अवसर आज मुझे मिला है कि मैं अपनी भावनाएं आप सभी के सामने अभिव्यक्त कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने मन की भावनाएं, देश के प्रति अपनी भावनाएं, किसी रिश्ते के प्रति आप क्या सोचते हैं उसे व्यक्त करने का। और कविता एक अलग ही तरह का सुकून आत्मा को देती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कविता शब्द है और शब्द एक सुकून जैसा काम करता है। जब कोई भी व्यक्ति हताश महसूस करता है और कुछ शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे कह दिए जाते हैं कि उससे एक सुरक्षा का भाव निर्मित होता है, एक आकांक्षा फिर से पैदा होती है, एक आशा मिलती है किसी व्यक्ति को। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता सबसे अच्छा माध्यम है, उसका सबसे सशक्त माध्यम है। और आज के समय में साहित्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हर व्यक्ति को।
0: तो कविता के बारे में आपने कहा कि अपने को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है कविता रचना। और सोनम हमारे साथ हैं, नाम सोनम है आपका और सोने का भाव तो आजकल बहुत ज्यादा उछाल खा रहे हैं है? तो ये सोनम और उपाध्याय और उसके बाद नौमी, तो इनका क्या सामंजस्य है, जरा हमारे श्रोताओं को इसकी व्याख्या करके बताएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहाँ रहती हैं सोनम? कहाँ रहती हैं?
1: इंदौर रहती हूँ, इंदौर में रहती हूँ
0: जी। भारत का दिल है ना?
1: जी बिल्कुल। और दिल हमेशा भावनाओं से घिरा रहता है, उसमें दिमाग बहुत कम काम करता है और दिल बहुत ही ज्यादा भावुक होता है।
0: तो आज
1: ऐसा लगता है कि शायद
0: आज से हमें भी रख लीजिए और हमारे जयपुर रेडियो को भी रख लीजिए अपने दिल में।
1: बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, जरा सी जगह दीजिएगा जी।
1: हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। और सोनम मेरा नाम है और नौमी मेरी बेटी का नाम है, नौमी का नाम है उसका, घर का नाम नौमी है। मेरी इंस्पिरेशन है वो, तो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, तो मैं उसको एक देवी के रूप में अपने जीवन का हिस्सा मानती हूँ, तो उसी के लिए मैंने अपने नाम के आगे नौमी लगाया है।
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब। ये एक ऐसा उदाहरण है जो अपने आप में अनूठा है। बहुत लोग अपने पति का नाम लगाते हैं या पिता का नाम लगाते हैं, पर आपने उस देवी का जो इस सृष्टि की वृद्धि में आपके साथ बढ़ रही हैं और आपकी देखरेख में बढ़ रही हैं, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस नाम का, कि इस तरह से भी लोग सोचते हैं और उस सोच को सच में अपनी प्रक्रियाओं में कार्यशैली में ढालते हैं। ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। तो सोनम जी, कविता के बारे में आपने बताया, रचनाओं के बारे में बताया, कविता और रचनाओं के अलावा भी आप किसी क्षेत्र में अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं, चित्रकारी में या कहीं लेखन में, चिंतन में, किसी और दिशा में, खेल कूद में, इसके बारे में बताएंगे?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरा बहुत ज्यादा लगाव बचपन से ही रहा है साहित्य को लेके, कला को लेके। हमारे देश का, हमारे देश की जो धरोहर है, जो हमारे देश का इतिहास है, इतना स्वर्णिम इतिहास है, तो जो हमारे पूर्वज हैं इतने ज्यादा वीर रहे, इतने कलाकार हमारे देश में हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे बताने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में कैसी कैसी विभूतियों ने जन्म लिया है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो कलाकार होते हैं वो भगवान के सबसे प्रिय बच्चे होते हैं। मतलब भगवान कभी भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में, लेकिन जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको वो कलाकार बना देते हैं, क्योंकि भगवान भी सृजन करते हैं, सृष्टि का सृजन किया है, हम सबका सृजन किया, और एक कलाकार भी सृजन करता है दिन प्रतिदिन। तो ये सोच है मेरी, और कहीं कभी किसी कोने में किसी हताश व्यक्ति, किसी निराश व्यक्ति को अगर हमारी कविताएं, हमारे शब्द, हमारी रचना के माध्यम से जीवन फिर से जीने की एक दिशा अगर मिल जाए, तो हमारा लिखना अभिभूत हो जाता है, हमारा लिखना सार्थक हो जाता है।

0: बहुत ही सुरीली और सजीव सोच है आपकी, और इसी का परिदृश्य आपकी कविताओं में देखने को मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो हो जाए एक रचना आपकी अपनी जुबानी सोनम।
1: मेरी बहुत उपाध्याय, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बहुत ही प्यारी रचना है और कई लोगों को पसंद आती है, कई स्टेजेस पर मैं हमेशा यही सुनाती हूँ सबसे पहले। तो ये इस तरह से है कि यू ना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, कि यू ना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, और उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब।
1: और आशा नहीं है, धन्यवाद, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, फिर भी मुश्किलों के आगे नयो सिर झुकाते रहिए, और जो तूफान में भी साहिल को और जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, उस माझी से हिम्मत का गीत गुनगुनाते रहिए, उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते आपने ये सजीव सी सजीली सी कविताएं सुनाई, जो जीवन का दर्शन भी है और जीने के ढंग को प्रतिपादित करती है आपकी रचना। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को। अब आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में और जानना चाहेंगे कि आप कौन से रचनाकारों को पसंद करती हैं, किन कवियों को, कवित्रियों को, किन को सबसे ज्यादा लाइक करती हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद के लेखन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
0: यथार्थ लेखन, बिल्कुल।
1: हम इसके अलावा जो निराला जी हैं,
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत
1: बिल्कुल बिल्कुल, समय बिल्कुल कम पड़ जाएगा और जी बिल्कुल। और परसाई जी हुए, हरिवंश राय जी हुए,
0: जी
1: जिनके जितनी मतलब जितने मैं नाम लूं उतने कम है। सब जब भी लेखन मेरे सामने आता है, अभी कुछ नवीन लेखन भी बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात भेजे हुए फरिश्ते हैं सब। जितना पढ़ा जाए उतना डेप्थ, मतलब इतनी गंभीरता, इतनी गहराई कि जब इन्हें पढ़ा जाता है, इनकी रचनाओं को, तो ऐसा लगता है कि आपके सामने सब कुछ चल रहा है, चित्रण बिल्कुल आपके सामने होता है, और वही असली कविता है, मुझे ऐसा लगता है।
0: चलचित्र आपके सामने बहुत, बहुत सही बात आपने कही। और जो भी पढ़ता है ना, जैसे आपने पढ़ी, तो आपके समक्ष एक एक परिकल्पना आपके दिमाग में एक नई सी फिल्म बनेगी, और दूसरा पढ़ेगा उसके दिमाग में उसके सोच उसके शब्दों के अनुकूल दूसरी रचना और दूसरा दृश्य परिदृश्य होगा, और तीसरा पढ़ेगा तो उसी रचना का एक तीसरा परिदृश्य होगा। इसी तरह से निरंतर बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं वो सृजित होती हैं। और निराला जी की आपने बात की, तो निराला जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया, किसले वसना नवल वय लतिका मिली मधु तरु अरी पतिका। यानी लता और तरु जो है, वृक्ष और लता जो आपस में मिले हुए हैं, उसका इतना सुंदर कोमल दृश्य बनता है उस रचना को पढ़ के। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वसंत ऋतु है और इस ऋतु में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपने आप ही अनुकूल हो गया है मौसम के, प्रकृति के। और आपने जिन रचनाकारों का नाम लिया है वो सच में अमूल्य है, और उनकी रचनाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए सच में मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उन रचनाओं को हम हमेशा याद रख सकते हैं और उनको जी सकते हैं, और जिंदा रहने की ताकत उनमें रहती है। तो ये तो रचनाकारों की बात हुई, देश के राष्ट्रवीरों की, राष्ट्रभक्तों की बात भी कर ली ही जाए, क्योंकि आप एक विचारशील हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं लिखती हूँ, जी बिल्कुल मैं लिखती हूँ, और जब भी लिखने बैठती हूँ तो अपने माता पिता, मेरी बेटी, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, अनमोल दोस्ती, और सबसे पहले मुझे अपने वीर सैनिकों की ही याद आती है कि इनसे ज्यादा किसी और के बारे में क्या लिखा जा सकता है। तो बहुत ही मेरी एक भावुक कर देने वाली रचना है, जो मैं जब भी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ अपने जब पुराने वीडियोस, तो मुझे बहुत ही ज्यादा

0: याद तक नहीं होगा उन्हें कि कब परिवार के साथ होली मनाई है, याद तक नहीं होगा कि कब परिवार के साथ होली जलाई है, और परिवार की याद में पल पल कितना जल जाया करते होंगे कभी सोचा है, और अपनी बेटी का खत पढ़कर आंखें नम हो जाया करती होंगी, कागज पे गिरा आंसू सूख जाता होगा, लेकिन पलकों पे अटका आंसू कहाँ छुपाते होंगे कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे।
1: वाह, क्या चित्रण किया है और सोच को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है आपने। सोचते तो सभी हैं, लेकिन आपकी जो रचना है वो हर सुनने वाले को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है, और सच में ये सोचना बहुत जरूरी है। और होली को आपने कहाँ जाके किस तरह से संयुक्त किया है, जोड़ा है और उसको अभिव्यक्त किया है, ये निर्ले ही बिरले ही लोग कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये रही, और सच में यथार्थ का बोध कराने वाली, क्योंकि हम घरों में बैठ के पेन कागज पर कितने भी संवेदनशील हों सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन एक कठोर यथार्थ का सामना हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक, हमारे राष्ट्र के रक्षक करते हैं। और इस ओर आपने सोचा और इसको बयां किया अपनी रचना के माध्यम से, ये बहुत ही खूबसूरत रचना है सच में। आगे बढ़ते हैं, और हमने तो आपको देखा नहीं है, सिर्फ बातों में ही देखा है, और बातों से बहुत सारा जो रूप स्वरूप और अभिव्यक्त होता है वो आईना है, तो कुछ और बताएं अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, और कब से आपने लिखना शुरू किया। श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं सोनम उपाध्याय इंदौर एमपी से।
0: जी बिल्कुल, बचपन से ही लिखती हूँ मैं। माता पिता को बहुत ज्यादा साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान भी था, मम्मी पापा को सुनते देखा घर में, संगीत वाला भी माहौल था, तो धीरे धीरे पता नहीं कब ऐसे चला, नहीं पता कि कब मेरा भी लेखन के प्रति, मैं लिखने लगी, पढ़ने लगी साहित्य, और पेपर कटिंग उस टाइम पे पेपर में रचनाएं आती थी, तो आज तक मेरे पास मैंने संभाल के रखी है वो पेपर कटिंग्स। और जब सबसे पहले मुझे ऐसी मेरे मन में भावना आई कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना शुरू किया, शायद मैं सेवेंथ या एट्थ क्लास में थी उस समय, तो सातवीं आठवीं कक्षा से शुरू कर दिया था लिखना। जी, फिर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है, कुछ वाद विवाद है, तो उसमें थोड़ा कुछ अपनी लाइंस ऐड कर दी, फिर जब युवा उत्सव हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां फिर समय के साथ ऐसा अवसर हमेशा प्राप्त होता गया कि मेरी रचनाएं बाहर आती गई, और फिर लोगों से इतना प्यार मिला, तो असली हकदार जो मेरे क्या बोलूं मैं आपको, मेरे मित्र कह लीजिए, मेरे परिवार वाले कह लीजिए, समाज, तो हमेशा उन्होंने मेरी रचना को सराहा, तो मुझे वो प्रोत्साहन मिला कि मैं कुछ सही कर रही हूँ। और आज भी अगर मैं अपनी रचना नहीं लिखती हूँ कुछ नया, तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं या परिवार वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि नया क्या लिखा है इस बार, तो धीरे धीरे धीरे बढ़ता गया।
1: तो वो पहली रचना जो आपने बड़ी संकुचाते हुए बोली होगी कि सुनकर लोग क्या कहेंगे, वो यदि याद हो तो हम सुनना चाहेंगे।
0: हाँ, बहुत ज्यादा याद नहीं है, पर वो ऐसा था कि एक प्यारा निराला ख्वाब मैंने देखा था, एक ये थी, और इसके पहले मुझे ऐसा याद है कि मैंने माँ के बारे में लिखा था कि जिसे प्रथम बार देखा वो माँ थी, जिसे प्रथम बार छुआ वो माँ थी, ऐसा पूरा कुछ सीरीज है उसमें जी। और फिर उसका कंक्लूजन मैंने ऐसे किया है, जिसे पहली बार महसूस किया वो माँ थी, जिन्होंने पहली बार चलना सिखाया, जिन्होंने पहली बार अपना हाथ बढ़ाया वो माँ थी, और समय के साथ धीरे धीरे आभास हुआ कि वो माँ नहीं, माँ के रूप में ईश्वर की मुझ पे कृपा थी, ईश्वर की मुझ पे दया थी। ये पहली कविता
1: बहुत ही खूबसूरत रचना, वो पहली रचना जो अनुभूत करती है हमारे को ईश्वर के साथ जोड़ती है, इससे बड़ी और इससे घनत्व वाली कविता हो नहीं सकती, जिसमें माँ हो उसमें सब कुछ होता है, पूरी सृष्टि पूरा संसार। तो इसके अलावा आप कोई रचना हमें और सुनाना चाहेंगे?
0: जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को, नारी शक्ति को समर्पित मेरी कविता, मातृशक्ति को समर्पित, कि आप खुद भी अगर सोचेंगे तो आपको कई ऐसी

0: ये आपने जीवन में दिखेंगी, आपकी बहन, माँ, आपकी कई दोस्त, पत्नी, कोई भी, आपकी बेटी की कितनी शक्ति है उनमें कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं, कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं, और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो, और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो जैसे उसके पैरों में कोई छाला ही नहीं कितना जागी है वो, कि कितना जागी है वो तुम्हें रातों रात सुलाने में, कितना भागी है वो, कितना भागी है वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में, और बिखरती रही ताकि तुम्हें जोड़ सके, और किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी माँ का हौसला तोड़ सके और सुबह से जोड़ा बांधा है, सुबह से जोड़ा बांधा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जोड़ा बांधने का जो जो प्रक्रिया है कि वो अपने सारे सपने अपने आप को समेट के ना, मतलब ऐसे जैसे युद्ध पे कोई जाता है अपने आप को पूरा समेट के अपना सर्वस्व परिवार के लिए,
1: अपनी सारी जी उनको बांध लिया,
0: बिल्कुल बिल्कुल बांध लिया है कि सुबह से जूड़ा बांधा है वो, बाल बनाना भूल गई, इतना मुझ में उलझ गई, कहीं आना जाना भूल गई, और बिन काले काजल के बिन उसकी आंखें काली है, और चूल्हे में तपी है वो, तभी आज मनी दिवाली है, और किया ही क्या है मेरे लिए, तुम तनक कर बोल गए, वो उस मंदिर की देवी है जहां तुम दीप जलाना भूल गए।
1: सच में रोने का मन है, सच में इतनी अनुभूत परख जो है आपकी रचना के, आपने सच में बिल्कुल स्पर्श किया है, छू लिया है माँ के दिल को, आपने सच में छू लिया है, और सच में ऐसा अनुभव, ऐसा ऐसी प्रेरणा जो है वो सच में दिल से ही आती है, और दिल से ही जागती है, और दिल से ही बोलती है। बहुत सुरीली सजीली रचना आपने हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाई। आप बात कर रही थी कि संगीत और साहित्य से आपके परिवार का रिश्ता रहा है, तो कहीं आप भी संगीत से जुड़ी कुछ गाती हैं? और
0: हाँ जी, मेरे परदादा जी के पास सारे वाद्य यंत्र हुआ करते थे, तो पिताजी ने मुझे बताया, हमेशा बताते थे वो, कि बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड जिसको कहते हैं हम लोग, कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कला, साहित्य, प्रकृति, प्रभु, हमारी संस्कृति, हमारी ईश्वर में भक्ति जिसको कह लीजिए, आस्था कह लीजिए, तो जो एक सही इंसान जो होता है, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल फूल जिसे कहा जाता है कुछ इमोशनल लोगों को
1: आजकल, ये मुझे
0: हाँ जी बिल्कुल है हर आर्टिस्ट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा इंसान वही है जो भावनाओं से भरा हुआ है, और जो भावना से भरा नहीं है वो पत्थर है। तो सही इंसान होने की पहली शर्त है कि आप में भावनाएं हो, आप उसको कितना ही मैनिपुलेट कर दें आज के समय में, लेकिन भावनाएं आपको ईश्वर से, ईश्वर प्रदत्त है, वो आपकी कला ईश्वर प्रदत्त है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फूल्स हैं, तो बोलते ना कि भोले का भगवान होता है, तो भगवान सबसे पहले भोले लोगों को ही मिलने वाले हैं।
1: बहुत सही बात कही आपने। और कौन से गीत संगीत सुनते हैं आजकल जो चल रहे हैं, पुराने वाले जो गीत हैं उसमें आप?
0: सुकून तो पुराने वाले ही जो बोल है, जो हाँ जी बिल्कुल रूट जिसको बोलते हैं, कि जड़े तो वही है हमारी, शास्त्रीय संगीत में मुझे पसंद है। बाकी पुराने जितने भी सारे गाने हैं हमारे, किशोरदा की आवाज ले लीजिए आप, लता जी ले लीजिए, तो वो तो रफी साहब, तो इनका तो मतलब कोई सानी ही नहीं है।
1: तो कभी कभी बड़ी ही होंगे सारे गाने, थोड़ी सी दो लाइन आप गा के सुनाएंगे हमें?
0: मुझे ऐसा लगता है कि मैं गा अच्छा नहीं सकती हूँ।
1: नहीं, वो तो सबको लगता है, पर वो दो लाइन जो है जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो जरूर हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि आपकी पसंद संगीत में कैसी है, वो भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
0: कोशिश करती हूँ मैं
1: जी,
0: और मैं बहुत इसको गुनगुनाती हूँ जब भी मन होता है मेरा।
1: हाँ,
0: कोई किसी की मुस्कुरा हटो पे हो नसा, किसी का दर्द मिल सके तो ले, उधर बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। जीने का जो दर्शन है, जीने का जो कला है, वो इस गीत के माध्यम से है, और इसीलिए आप एक अच्छी रचनाकार हैं, कवयित्री हैं और संवेदनशील हैं प्रकृति को और उसके आसपास जहां इन पांच तत्वों में हम जीते हैं उनको आप सच में स्पर्श करती हैं, हमारी सांसें उनको छूती हैं और इसीलिए आप इतनी अच्छी रचनाएं लिखती हैं। तो
0: धन्यवाद।
1: एक रचना चलते चलते और हो जाए तो
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके माध्यम से अपनी ये कविता कई दिलों तक पहुंचा पाऊंगी। और आप ये समझ लीजिए कि ये वो कविता है कि ईश्वर आपसे क्या कह रहा है, कि आप कौन है, ये हर व्यक्ति के हृदय तक जाएगी। तो ईश्वर ये कहते हैं कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो। कि तुम कौन हो? कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो। कि तुम जीवन के अंधेरों को चीरता सा प्रकाश हो। कि तुम ज्ञान से, तुम कर्म से, तुम अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण से और तुम अपने हाथों की लकीरों से कई आगे निकल चुका भाग हो। और तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत। तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत। हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, सिर्फ जौहरी ही समझेगा तुम्हारी कीमत। और सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम निज फल की इच्छा त्याग, सिर्फ कर्म ही करते रहना। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारा कर्म है, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना, कर्म करते रहना।
1: अद्भुत अनुपम
0: सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत प्रेरणाप्रद है आपकी ये रचना और सच में सारी रचनाएं और सारी बातचीत भी सुनने वाले का उत्साह, हौसला और ज्ञान में, उसके सुजान में वृद्धि करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में, यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आप बताना चाहें तो आपका वेलकम है।
0: बस यही संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त नहीं, हमें सबके लिए वक्त निकालना चाहिए। और एक कविता ऐसे ही मैंने लिख दी थी, आधी आधी सी याद है मुझे, कि तुम समंदर से भी गर्जा मिलो। सो ऐसा था कि आप अपनी प्योरिटी मत छोड़िए, आप अपनी वास्तविकता मत छोड़िए। कितना धुआं धुआं कि कितना धुआं धुआं, इस धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम। इतने धुएं धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम। और समंदर से भी अगर जा मिलो, समंदर से भी यदि जा मिलो तो भी नदी की पावन मुस्कान रहना तुम। और दिखावट, बनावट, छलावट वाली इस दुनिया में तुम वो बनना कि एक आदमी तुमसे हंसकर गले मिल सके, एक आदमी तुमसे गले मिलकर रो सके। कम से कम इतने तो इंसान रहना तुम, इतने तो इंसान रहना तुम। ऐसी एक कविता है मेरी,
1: बहुत बहुत
0: मुझे याद आ गई।
1: बहुत ही मानवीय धरातल को संभालती ये रचना है और सच में हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हम बेबाक, बेलाग, बेलौंस किसी से मानवीय धरातल पर गले मिल सकें, हक कर सकें उसे और
0: जी,
1: अपने
0: जी।
1: सुख दुख को शेयर कर सकें, तभी तो मानव मानव के लिए है और तभी ये संसार है, ये दुनिया है और ये कायनात है।
0: बिल्कुल जी, जी।
1: बहुत अच्छा लगा। सोनम उपाध्याय नौमी हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का आंचल। हम तो बीच में बताना ही भूल गए कि हमारे श्रोता क्या सुन रहे हैं, किस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद सोनम जी आपका,
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और इस खूबसूरत बातचीत के बाद आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और इस प्रोग्राम में हमारी आज की मेहमान रही सोनम उपाध्याय नोमी, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: स्वागत है दोस्तों आपका जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान के वीकली शो लफ्जों की गुजारिश में। मैं आपकी होस्ट रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ। एक जमाना था बहुत बहुत बहुत युग पहले, जब हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच अपार्थेड से भी कट्टर सेग्रीगेशन था। मिलना नामुमकिन, इजाजत के बिना घर से निकलना नियायती मुश्किल, और इसीलिए बाय चांस भी ओपोजिट जेंडर की नाक हाथ कान आँख कुछ भी दिख जाए मोहब्बत अनिवार्य थी। केस इन पॉइंट, मेरे महबूब तुम्हें मोहब्बत की कसम, सर से बुरखे में ढकी लड़की की आंखें और तेरी मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, वॉज क्वाइट इनफ फॉर लाइफ लॉन्ग इश्मुश। उसके बाद जमाना बदला, सिनेमा बदला, थोड़े ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस और बढ़े। अमेरिका से चाचा जी कुछ इंग्लिश मूवीज के वीएचएस टेप्स जो लाते थे, ग्रीस से लेके घोस्ट से लेके टॉप गन तक सब देख ली, और दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खुल गए। तब तक माँ बाप हल्के प्रोग्रेसिव टाइप हो गए थे, या उनको होना पड़ गया था। तो सडनली इट वॉज ओके टू मीट अ फ्रेंड ऑफ द ओपोजिट सेक्स फॉर कॉफी, स्वीट कॉर्न सूप 1/2 या सड़क वाली चाउमीन वगैरह वगैरह। पर तब भी ये तो तय था, ग्रुप में मिल रहे हो तो अलग बात है, मिक्स जेंडर फ्रेंडशिप काफी नॉर्मल सी बात हो गई थी तब तक। बट अकेले वन ऑन वन अगर मिल रहे हो तो फिर बेबी लोग बाबा लोग उस मुलाकात को कुछ खास मुलाकात कहेंगे। हमारे आज का एपिसोड है मुलाकात किससे कब कहां, ये बताने आ रहे हैं मेरे आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के खजाने से मेरे कोहिनूर। सुनते हैं हमारा आज का पहला नगमा संतोष जी और सीमा जी से।

लता मंगेशकर, खयाम, नक्श लैलपुरी, है ना क्लासिक बुलसाई, रोमांटिक रेट्रो हिट भी, मासूम भी है, विकेट भी है, मेलोडियस भी है, अपबीट भी है, जेंटल भी है, नॉटी भी है। उफ, सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, बिना खुद से झूठ बोले, बिना वो सबसे अच्छा बच्चा वाला हेलो स्विच ऑन करके, बिल्कुल बिना किसी झूठ के, ये बताइए वो कौन सा चेहरा है जिसे आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, वो कौन सा इंसान है जिससे आप सबसे पहले मिलना चाहेंगे, इस जिंदगी के भागम भाग से दूर भाग के। ओए हैंग ऑन, आई डिडंट से शुड मीट, मीट टू मीट, ऑट टू मीट और मस्ट मीट, आई सेड वांट टू मीट। मुझे भी पता है, जैसे ही हम अपने बायो बबल यानी कि इस मास से बिल्कुल दूर हट जाएंगे, अनिवार्य है हमें इन सब से मिलना, चाहे फिर वो क्यों ना हो, काम की खातिर, जिम्मेदारियों की खातिर, आउट ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, कंपल्शन। पर वो है कौन जिनसे सबसे पहले आप मिलना चाहोगे, हो सकता है मिलना मुमकिन भी ना हो या डेफर करनी पड़े दूसरी प्रायोरिटीज के आगे, पर दिल में कौन सा चेहरा है ये तो बताइए। आइए सुनते हैं अगला गीत जय सरकार और पूर्णा की मधुर आवाज में।

हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चलो ड्राइव ना सही, एक फ्लाइट ही सही। अगर एक डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट की दूरी पे भी हो तो हम मिलने का पूरा प्रयास करते हैं। पॉइंट ये है, अगर मिलना मुनासिब है तो अधिकतर लोग वो एफर्ट जरूर करते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर टाइम लाइक दिस व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड बाय आवर ओन मोर्टैलिटी, वी विल डेफिनेटली गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू मीट द वन वी लव।

गाना सुना रहे थे आपको राहुल और गायत्री अपनी मधुर आवाज में। कीजिए कीजिए मिस कीजिए उन्हें जिनसे मिलने की इच्छा है पर क्षमता नहीं। क्या आप उसी सोच शंका शको शुभा में घुसे हुए हैं आप कि तब मिलेंगे ऐसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उनकी जिंदगी कहीं दूर और मेरी कहीं और। वैसे तो बातचीत हालचाल पूछना सब होता ही है दूर से, हैप्पी बर्थडे से हैप्पी दिवाली तक, कभी स्टिकर वाली विश तो कभी मोटिवेशनल फॉरवर्ड। फेसबुक से तो सब पता चल ही जाता है कि उधर सब ठीक ठाक है, उनके हाल अच्छे हैं, खुश हैं, मामला अंडर कंट्रोल है। तो फिर आप क्यों अंडर कंट्रोल है उस मुलाकात के लिए? वर्क फ्रॉम होम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, होम स्कूलिंग, न्यूज फीड, ऑनलाइन चैलेंजेस, कुकिंग क्लीनिंग, 50 मिनट्स वर्कआउट, ईट रिपीट, म्यूजिक एप्स, वेब सीरीज मूवीज, बिंजिंग, गेमिंग एप्स के बीच में भी उस मुलाकात का ख्याल आता है। सुनाने आ रहे हैं हमारा ये अगला गाना श्रीपद और विद्या अपनी सुरीली आवाज़।

ख्याली पुलाव तो पक्के बिरयानी बन चुकी है। मन है कि जा बसा है अनजान के नगर में, कुछ खोजता है पागल खोए हुए डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बिचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। लिखा शैलेंद्र ने, लेकिन कोस आप रहे हैं कि हाउ डज दिस पोएट लिरिसिस्ट डू इट एवरी टाइम, रीच इनटू योर हार्ट एंड क्रश योर इमोशंस इनटू इंक। सुनते हैं हमारा आज का ये आखिरी गाना कविता और अजय जी से।

रात का आज आया कैसे? ऐसा नहीं कि सबका सीक्रेट है या सबके मन में है, पर यह हकीकत है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय हमारे जहन में कई बार ऐसी यादें, ऐसी बातें और ऐसे लोग आते हैं जो उन उम्र नहीं आते, नीचे कहीं मन की गहराई में दबे रहते हैं। और जब हम इतने मसरूफ होते हैं, हर वक्त लोगों की भीड़ में नहीं होते, क्यूबिकल से कैबिन, कैबिन से कॉफी मशीन, लिफ्ट से पार्किंग लॉट, पार्किंग से ट्रैफिक, इन सब एक्टिविटीज ट्रैप में नहीं होते, तो हम निहत्ते होते हैं खुद ही के सामने। कल की मुलाकात का वादा करते हुए आज इजाजत लेती हूँ मैं आपसे रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी मुस्कान जितनी खूबसूरत है उतना ही सुरीला है उनका सफर। उत्तर प्रदेश की नवाबी नगरी लखनऊ से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफर, एक सफल प्रोफेशनल, एक समर्पित गृहिणी और सबसे बढ़कर संगीत से दिल की गहराइयों तक जुड़ी हुई एक प्यारी सी गायिका। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हम आज की विशेष अतिथि मुंबई से मिनाली लाल जी का। मिनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो की स्टूडियो में। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा।
2: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी एंड जगदीश जी, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप लोग के संपर्क में आई, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने आप को, अपने बारे में, अपने संगीत के प्रेम को आपके सामने संपर्क दे सकती हूँ।
1: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बेताब हैं इतनी प्यारी गायिका के गीत और उनके जीवन के सफर के बारे में सुनने के लिए। तो मिनाली जी, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो लखनऊ की गलियों से मुंबई तक का जो आपका खूबसूरत सफर रहा है वो कैसा रहा है? क्या कोई आज भी लखनऊ की कोई ऐसी याद है जो आपके दिल के बेहद करीब हो?
2: लखनऊ से मुंबई तक का सफर मेरे लिए तो एक सीख, संघर्ष और नए अवसरों से भरा रहा। लखनऊ ने मुझे संस्कार, अपनापन और बहुत कुछ सिखाया, जबकि मुंबई ने मुझे बड़े बड़े सपने देखने के लिए एक जगह दिया, उन्हें पूरा करने का एक हौसला दिया, और दोनों शहरों ने मेरी जिंदगी को एक अलग अलग तरीके से समृद्ध किया है। अगर लखनऊ की सबसे प्यारी याद की बात करो तो मुझे वहाँ का अपनापन, परिवार के साथ बिताया मेरा बचपन, मेरे कॉलेज डेज, शाम की गंजिंग की सैर जो वहाँ का बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ हर जगह, हर प्राण में, कहीं भी आप पूछेंगे तो ये गंज वर्ड जो है वो बहुत वहाँ पे फेमस है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और वहाँ की तहजीब आज भी मेरे दिल में बहुत करीब है।
1: जी, लखनऊ के खान पान की भी बहुत तारीफ की जाती है, वहाँ के कबाब और वहाँ के पान, बहुत, और एक वहाँ के शर्मा जी की हेरिटेज दुकान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ के समोसे बड़े फेमस है।
2: लखनऊ में तीन चार चीजें, जो खान पान जिसको आपने अभी मेंशन किया है, मतलब चाट, लखनऊ की फेमस चाट जिसको आप समोसे बोलिए, एक शर्मा की चाट भी है
1: जी,
2: ये आज से नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सॉरी पिछले 50 सालों से चल रही
1: है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: और एक मक्खन मलाई, ये आपने पता नहीं
1: सुना है बहुत सुना।
2: तो ये लखनऊ की, मतलब ये सर्दियों के समय की ही एक बनावट है, जो गर्मी या बारिशों में और किसी सीजन में नहीं मिलेगा, एक और ठंड में, तो इसका मजा अलग है। और बिरयानी तो आप जानते हैं, कबाब और बिरयानी, टुंडे के कबाब, बिरयानी, ये सब तो वहाँ के बहुत ही मशहूर लजीज क्विजींस हैं। तो इसके लिए तो मैं बोलती जाऊंगी तो अंत ही नहीं।
1: तो लखनऊ के खान पान और मुंबई के खान पान में क्या फर्क लगा?
2: डेफिनेटली खान पान में अंतर तो है, मतलब मैं चूंकि लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से, खाना बनाने का मुझे शौक भी है और हम लोग ने इतना कुछ खाया है, सीखा है, तो वो मैं अपना के मुंबई तो ले आई, बट यहाँ पे, यहाँ के खान पान में बहुत कुछ अंतर इसलिए है, बिकॉज सही बात बोलूँ तो मसाले यहाँ का मीडियम, यहाँ का जो तड़के हैं वो सब बहुत फर्क है। आप मतलब हम कुछ भी मीट, मटन, चिकन, कुछ भी हम यहाँ का प्रेपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क दिखेगा, जो हम मसालों का जो फ्लेवर, जो हम लखनवी जिसको वर्ड यूज करते हैं, वो आपको लखनऊ के मसाले से यहाँ बहुत अंतर दिखेगा,
1: बहुत अंतर दिखेगा। जी
2: मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा इसलिए मैं तो प्रेफर ही करती हूँ कि मैं अपने घर का ही बनाया हुआ खाऊं,
1: जी बिल्कुल, क्योंकि
2: मुझे
1: हालांकि हर एक प्रांत का एक अपना स्वाद होता
2: अलग
1: है,
2: रहता है, नो
1: पर
2: डाउट
1: जहां
2: नो
1: पर
2: डाउट।
1: हम बेस्ड होते हैं वहां के हम कुछ मसाले, कुछ यादें, कुछ बनाने के तरीके अपने साथ, हमारे
2: अलग
1: वो
2: ही है।
1: जी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हर जगह हम अपने साथ ले जाते हैं।
2: बिल्कुल
1: बहुत खूब, तो इसी के साथ मीनाली जी हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला प्रश्न रहेगा मिनाली जी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में आप लगभग 13 वर्षों तक आपने एक लीडिंग भूमिका निभाई है, तो उस दौर को, उस दौर जो आपके जीवन को उस दौर ने सबसे बड़ा सबक क्या दिया?
1: मेरे लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में बिताए लगभग 13 वर्ष एक नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण पाठशाला रही। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल टीम का नेतृत्व करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना, लोगों के साथ लेकर चलना, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट में थी और इस पर्टिकुलर विभाग में हर तरीके का इंटरेक्शन रहता है लोगों से
0: जी,
1: और लोगों को बीच में अपने टीम को कैसे विश्वास दिलाना, कैसे टीम वर्क सिखाना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे लिए।
0: जी,
1: एयरलाइंस तो आप जानते हैं कि बेहद ही एक चुनौतीपूर्ण जगह रहता बिल्कुल, है हमेशा
0: बिल्कुल,
1: जहां हर दिन नई नई परिस्थितियां आती थी, लेकिन हम एचआर के होके बहुत डायरेक्ट नहीं आते थे बट हमारा लोगों से संपर्क रहता था जो एयर होस्टेसेस थी या कस्टमर्स रिलेशंस थी, तो

0: इसमें आपका इंटरेक्शन रहता था?
1: सौभाग्य बोलिए, मतलब सौभाग्य से उस मेरे वक्त पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था, बट हमारे एयरलाइंस में उतना कुछ ऐसा हुआ नहीं. यस, एक टेक ओवर हुआ था, एक हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ बाय जेट एयरवेज. तो
0: जी
1: फिर वो जो पूरा ऑन बोर्ड चेंज होना पड़ा लोगों को, हमने फिर से रिक्रूट किया, फिर से उनको हमने डिपार्टमेंट वाइज उनको हमने प्लेस किया. वो
0: जी
1: काम मेरा पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरा ही
0: अच्छा
1: रोल उसमें ज्यादा था.
0: जी
1: इसलिए था क्योंकि मैं पहले से ही लोगों को जानती थी, और लोगों को मैं किस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करके प्लेस करूं, उनको प्रॉपर उनकी तनख्वाह भी बराबर रहे, या उनके रिक्वायरमेंट्स, या उनके वो, मेरा रोल कुछ उसमें ज्यादा ही था.
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो पीरियड मेरा बहुत एक्सटेंसिव पीरियड रहा. अदरवाइज क्रैशेस, कुछ मिसमैनेजमेंट तो छोटे मोटे तो थे, बट दैट वाज
0: दैट
1: नॉट
0: इज
1: इन
0: ऑल अ पार्ट ऑफ
1: कंसिडरेशन,
0: लाइफ,
1: या
0: राइट?
1: उतना
0: इस
1: कंसिडर नहीं किया हमने.
0: जी, बहुत ही रोचक पूर्ण आपके किस्से हैं, और हम वापस इन किस्सों में आएंगे। इससे पहले हम आपका

0: मिनाली जी, एक सफल प्रोफेशनल से पूर्णकालिक गृहिणी बनने का निर्णय किसी के लिए भी आसान नहीं होता
1: जी।
0: इस बदलाव के दौरान आपने स्वयं को कैसे पॉजिटिव बनाए रखा, कैसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखा?
1: सच कहूँ तो ये डिसीशन, ये निर्णय आसान नहीं था। एक लंबे समय तक प्रोफेशनल जीवन के जीने के बाद
0: 13 वर्ष
1: अचानक,
0: आप बता रहे हैं।
1: यस
0: जी,
1: यस,
0: जी।
1: जिसमें से 8 वर्ष मैंने मुंबई में किया और बाकी मैंने लखनऊ से ही स्टार्ट किया था।
0: जी
1: तो ये सफर बहुत ही एकदम सडन, प्रोफेशनल जीवन को जीने के बाद अचानक घर पे और परिवार को समय देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मुझे शुरुआत में मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे काम से जुड़ी थी हुई, क्योंकि हम इतने काम में लीन रहते थे और एचआर

0: काम ही इतना है कि वो एक टोटल इन्वॉल्वमेंट विद पीपल अराउंड, तो वो हमें लोगों के बीच में ही रहता था, तो मेरा समय इतना निकलता था कि मुझे कभी और कुछ सोचने का समय का ध्यान ही नहीं आता था। फिर ऑब्वियसली जब हमारी शादी हुई या हम मैरिज के बाद हम बॉम्बे आए, बच्चे हुए, तो बच्चों के साथ टाइम ज्यादा मिलना जरूरी हो गया, बिकॉज प्रोफेशन ऐसा है कि देखिए काम तो हर के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है,
1: बिल्कुल.
0: और जो झाड़ू तो सबका ही नेचर रहता है, मतलब हम फीमेल्स का हैबिट ही, हम लोग का आदत ही है कि कोई काम पकड़ो तो उसको एकदम
1: बिल्कुल
0: अंजाम दे के ही रहो।
1: बिल्कुल.
0: तो मेरा
1: एक्चुअली
0: चूंकि
1: डबल
0: लखनऊ से,
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना हमारी अगर हम प्रोफेशन
0: टोटली
1: में हैं तो.
0: टोटली,
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: फिर बच्चे छोटे, एंड उसी दौरान मेरे हस्बैंड को भी आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट हो गया, तो ही वाज आउट फॉर ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, उनको
1: ओ
0: बाहर रहना पड़ा, ही वाज इन दुबई। तो
1: अच्छा.
0: फिर जॉब भी, और फिर मेरी एक बुजुर्ग मेरी सासू माँ थी जो मेरे
1: जी
0: साथ
1: जी
0: रहती थी,
1: जी
0: तो फिर उनको देखना, और मेरे बच्चे छोटे ही थे, मतलब मेरा बेटा उस समय 9 साल का था, बेटी तो 5 साल की ही थी, तो
1: जी
0: बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। फिर मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने, चूंकि हम एचआर वाले हैं, हम लोग का रिक्रूटमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो
1: जी
0: मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स बहुत सारे मेरे साथ अटैच थे, तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं आफ्टर, मतलब अगर मैंने सबैटिकल लिया, मैंने छोड़ा बीच में, तो मैं वो कंटिन्यू करूंगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि वो चीजें होते होते डेवलप कुछ महीने चली, बट फिर आगे नहीं हो पाया, तो फिर रह ही गया। और फिर आप जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो एक अलग ही भूमिका हम निभा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल.
0: वो फिर, बट मुझे ऐसे बोलेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे मतलब अच्छे लोगों के साथ रह के जो मैंने सीखा था, तो मैंने अनुशासन भी सीखा था, कैसे निर्णय लेना सीखा था, तो ये मेरा गृहिणी होने पर भी मैंने ये भूमिका बहुत अच्छे से निभाई।
1: जी बिल्कुल.
0: और फिर दोनों को मिलाकर एक बेहतर, एक मैं अपने बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों पे मैंने जितना डाइवर्ट किया टाइम, तो मुझे आज अपने पर इस बात पे फक्र
1: फक्र
0: है कि
1: है.
0: मैं
1: जी जी जी
0: बिल्कुल
1: एक्चुअली जो
0: समझ।
1: हमारे बच्चे जब अच्छे सेटल हो जाते हैं अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए कोई
0: यस
1: नहीं
0: यस
1: होता.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: बहुत
1: तो
0: बड़ी बात
1: एक
0: होती
1: ऐसा
0: है
1: फिर दौर आया था जब कोविड ने हम सबकी
0: जी,
1: जिंदगी तहस नहस कर दी थी, ऊपर से नीचे सब हिल गए थे.
0: पूरे पूरे पूरे।
1: जी तो उस वक्त फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया?
0: देखिए मैं संगीत से तो हमेशा से जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं
1: जी
0: है कि मैं नहीं गाती थी, मेरे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, मतलब इनफैक्ट आई वाज, मेरे को बोला जाता था कि नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल
1: क्या
0: और
1: बात
0: ऐसे
1: है
0: करके
1: क्या बात है.
0: तो बोला जाता था, तो लेकिन फिर पढ़ाई, फिर बहुत कुछ करते करते वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, फिर ग्रेजुएशन आया, फिर हमने शादी हो गई, फिर हम छोटे छोटे, मेरे उस समय भी मैं प्रोग्राम्स करती थी बट ये इस स्केल पे नहीं करती थी। कोविड
1: जी
0: के टाइम पे हम जब इतना लंबा सफर घर में रह गए, बाहर निकल ही नहीं पाए, तो हमें स्टार मेकर और स्म्यूल मिला, वो मेरी एक सिस्टर है, कजन सिस्टर, यूएस में थी,
1: जी
0: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्टार मेकर में, और हम गाते थे साथ में, बट वो धीरे धीरे, वो भी इसलिए कम होने लगा बिकॉज वो, उन लोग का टाइमिंग मैच नहीं होता था मेरे से, वो
1: जी
0: लेट नाइट वाले और हम दिन वाले, तो फिर स्म्यूल आया, स्म्यूल से भी मैंने एक इंटरेक्शन शुरू किया, मेरे सोसाइटी में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो स्म्यूल में हैं, उन
1: जी
0: लोग ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सिखाया, और फिर जब उस सिलसिले से मैं ज्वाइन हुई, गाना शुरू
1: देयर वॉज
0: किया,
1: नो लुकिंग
0: देयर वॉज नो लुकिंग बैक, अब
1: बैक.
0: तक चल ही रहा है, मतलब वो
1: जी
0: अब उसके वजह से मेरा एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट जाग गया, एंड प्रोबेबली मैं ये बोलूंगी कि उससे लोगों ने मेरी, मतलब मेरे को पहचाना, और लोगों ने पहचाना मुंबई में, क्योंकि
1: जी
0: यहाँ पे
1: जी
0: भी मैं आज की डेट में लाइव शोज कंटिन्यूअसली, मेरा ये अभी ये महीना नेक्स्ट मंथ पूरा पैक्ड है, मतलब आई हैव सो मेनी शोज
1: वाह
0: कमिंग अप,
1: वाह.
0: और कराओके शोज तो ऐसे नॉर्मल तो करती ही रहती हूँ,
1: जी
0: बट
1: जी
0: लाइव
1: जी
0: शोज विद म्यूजिशियंस करना ये अभी मेरा बहुत फोटे हो गया है,
1: जी
0: किए
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: बहुत सारे, मैं जनरली लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप डालते नहीं हो पर वीडियोस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ डाल दूँ, बट उसमें थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ बट अदरवाइज मैं, मेरे बहुत सारे मैं शोज अभी तक तो कर चुकी हूँ, मतलब
1: जी
0: एंड आई हैव ग्रोन विद दैट, वो एनवायरमेंट में मैं बहुत अभी आजकल एक्टिव हो गई हूँ,
1: बहुत खूब
0: तो
1: बहुत खूब.
0: यही चल रहा है बस अभी।
1: जी तो इसी के साथ हम आपका एक और खूबसूरत गीत लेते हैं.

0: मिनाली जी, जैसे आपने बताया कि आपको तो लोग पहले से ही नाइटिंगेल का खिताब दे चुके थे और आप पहले से ही स्टेजेस पर गाती आई हैं। कोविड के दिनों में आपने कैरियोके ऐप्स को काफ़ी यूज़ किया और एक तरह से कैरियोके की वजह से कहा जाए तो आपके टैलेंट को पंख लग गए, है ना। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक स्म्यूल या किसी भी कैरियोके सिंगिंग का जो गेट टुगेदर होता है वो लाइव सिंगिंग से बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कोई आपके ऐसी खास याद अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ जो अभी तक आपके दिल के साथ जुड़ी हुई हो और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ?
1: हाँ, मेरा पहला लाइव शो था जिसमें मतलब मैंने स्टूडियो में पहले गाया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि द शो का जो शुरुआत में वंदना करते हैं
0: जी जी जी
1: वो आपको ही करना है। अब वो तो मैंने तो अभी शो स्टार्ट करना ही शुरू किया था, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अभी शो का एक वंदना स्टार्ट करना। फिर वो वंदना भी मतलब मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं था, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए।
0: जी जी
1: फिर वो एक चैलेंज, ऐसा एक दूसरा चैलेंज ये हो गया कि अब ये वंदना को पहले लर्न करो, फिर उसके पूरे सिस्टम में लाना है, क्योंकि मुझे गाना है उसके अंतरे बराबर होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है बट मैंने बहुत बाद में, मैंने मतलब मैंने
0: अच्छा,
1: बहुत
0: तो
1: लेट
0: आपने
1: ही
0: वो
1: सुना
0: अकेले
1: था।
0: गाना था?
1: जी,
0: हाँ जी।
1: तो हिच बहुत हो गया था, डर बहुत था, घबराहट बहुत थी कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़े हरकतें थी थोड़े,
0: जी जी जी जी जी
1: लेकिन मुझे दो बार मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टूडियो में अलग से उन्होंने करवाया मुझे कि नहीं आप पहले इधर गा के देख लीजिए कि आपको कैसा। फिर
0: जी
1: मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आप रात दिन मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि अरे ठीक है वंदना है गाना है गा लेंगे वैसा, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे काफी बार उसको सुनना पड़ा, फिर उसमें वो ट्रैक में भी कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे बहुत सारा चेंजेस करवाना पड़ा, मतलब जो ट्रैक मेकर थे। फिर फाइनली जब आया है निखर के तो देवर अराउंड मेरा उस पर्टिकुलर शो में ऑलमोस्ट 500+ लोग थे,
0: वाह।
1: और जब मैंने स्टार्ट किया जो अलाप करके फिर उसमें अंतरा, तो इतना अप्लॉड मिला मुझे, इतनी वाहवाही मिली उस पर्टिकुलर वंदना से, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। तो आगे जो भी शोज होते थे मुझे बुलाया जाता था कि नहीं पहले वंदना यही गाएंगी तो मुझे
0: दरअसल
1: वो
0: जो
1: अभी तक
0: श्रोताओं का,
1: बैठ गई।
0: हाँ, जो श्रोताओं का जो प्यार मिलता है वो एक कलाकार की
1: बिल्कुल,
0: असली जो खुराक
1: असली
0: होती है
1: पहचान
0: वही
1: है,
0: होती
1: एक्चुअली वही है,
0: है ना।
1: वही बात है।
0: बहुत खूब। तो अगर आपको अपने जीवन को
1: जी
0: किसी एक पुराने सदाबहार गीत के माध्यम से व्यक्त करना हो तो आप
1: हाँ हाँ
0: कौन सा गीत उसके लिए चुनेंगी और क्यों?
1: मैं तो बोलूंगी, देखिए मेरे हिसाब से अगर अगर आप सबसे पहले बोलेंगे तो लगेगा कि जिंदगी में, जिंदगी वाला जो एक शब्द है
0: जी।
1: तो वो जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला जो गीत है,
0: यहाँ कल क्या
1: या
0: हो किसने
1: हाँ
0: जाना।
1: ये है, और प्लस जीवन से भरी तेरी आंखें, मुझे ये लगता है ये दोनों गानों में इतनी गहराई है, मतलब हर चीज दोनों गानों में ये समझा रहा है कि आप लाइफ में आपने क्या सीखा, कैसा सफर गुजर गया क्या गुजरेगा। वो एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो हम कहाँ से किस लेवल से उठ के हम किस लेवल पे आज की डेट पे आए हैं,
0: जी
1: क्योंकि देखिए
0: जी
1: सपनों का तो कोई उम्र होती नहीं है, जीवन
0: नहीं।
1: में जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हम थोड़ा सा समय जो अपने जुनून के लिए निकाल लेते हैं या उसको जिंदा रखते हैं तो वो जो खुशी या वो जो ऊर्जा हमको मिलती है वो, अब गाने तो कोई अनलिमिटेड है, उसके तो कोई सीमा ही नहीं है,
0: जी बिल्कुल। किसी एक गाने को नहीं हम चुन सकते बताने
1: हम
0: के लिए
1: नहीं
0: कि
1: बता
0: हमारे जीवन
1: सकते।
0: का सफर कैसा
1: बिल्कुल
0: रहा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: लेकिन फिर भी ये दो गाने ऐसे लगते हैं मुझे कि ये बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत ही इसमें बहुत मन से भरा हुआ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल किसी का पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं
0: बिल्कुल
1: वही सोचती हूँ कि गाने का तो कोई अंत नहीं है, आप अपने, मैं तो जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं अपने इस शौक को पूरा कर रही हूँ, और भगवान की दया से साईं बाबा की तरफ से मैं, जो कि अब मैं यहाँ रह गई हूँ तो मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, तो
0: जी
1: और गणपति बप्पा मेरे चूंकि
0: जी
1: हम घर पे भी अपने गणपति लाते हैं तो
0: लाते
1: उनकी
0: हैं।
1: कृपा से हम, मेरा जो अपना सफर चल रहा है भगवान करे वैसे ही मेरी उम्मीदें जैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैंने बहुत उम्मीद नहीं रखा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ फिल्म स्टार के रोल पे, वैसा वाला रोल तो नहीं होता है,
0: जी।
1: बट मेरा ये पैशन है जिसको मैंने जारी रखा है, और मैं जितना गा पाऊं अपने पैशन को निभा पाऊं इतना
0: जी
1: ही मेरा
0: मिनाली जी,
1: इच्छा।
0: देखा जाए तो हर कोई अपने अपनी जगह, अपनी अपनी फैमिली में एक नायक या नायिका का ही रोल अदा कर रहा होता
1: डेफिनेटली, बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। तो कार्यक्रम के अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी, कोई प्रेरणादायक शब्द उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं?
1: देखिए, मैं बिल्कुल जरूर बोलूंगी अपने श्रोताओं को कि देखिए, सपनों को मत छोड़िए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, और छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, जैसे मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया है।
0: जी
1: और बस सबसे बड़ी बात है कि एक अपनी तुलना किसी और से मत करिए, मतलब
0: जी ये
1: अगर
0: बहुत
1: हमने
0: जरूरी है।
1: कंपेयर किया तो अपनी यात्रा और हमारी यात्रा और किसी और की यात्रा में बहुत अंतर है, तो इस तुलना को करके जीवन चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो अपनी खुशियों को अपनाइए, यदि यदि आपके मन में अच्छी सच्ची लगन है, विश्वास है, धैर्य है, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत संदेश मिनाली जी, आज
1: थैंक
0: आपने
1: यू।
0: अपनी सादगी, अपनी सकारात्मक सोच और संगीत के प्रति अपने समर्पण से इस बातचीत को बेहद खूबसूरत बना दिया। आपका
1: थैंक
0: बहुत
1: यू,
0: बहुत धन्यवाद कि आपने
1: बहुत
0: अपने
1: बहुत
0: जीवन के इतने
1: शुक्रिया,
0: सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए
1: बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोग सबसे बात
0: जी।
1: करके।
0: सो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कोई चीज हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है तो वह है अपने दिल की आवाज को सुनना। और मिनाली जी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से जगदीश अरोड़ा साहब। वेलकम है जगदीश जी आपका इस प्रोग्राम में। आज कुछ खास करने जा रहे हैं जगदीश जी, कुछ अलग तरह के गीत।